0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: बुधवार 13 मई रेडियो मॉरिशस पर हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं और अभी के लिए आइए हम बढ़ते हैं समाचार की ओर। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज। अदिति से नमस्कार।
3: नमस्कार दिव्या, श्रोताओं को भी नमस्कार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एम्प्लॉयज यूनियन, नौकरी स्थल पर हिंसा, कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों और अनुचित कार्य शर्तों को लेकर चिंता जता रहा है। पोर्ट लुइस में कल लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ ने अस्पतालों में हिंसा के बढ़ते मामलों की कड़ी निंदा की, खासकर हाल में समय की एक टीम पर हुए हमले को लेकर। संघ के अध्यक्ष अमरजीत सितोहल, पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाइयों की समन्वित उपस्थिति के साथ सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। आज से 15 मई तक अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर्ड लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2011, 2014 और 2017 के बाद ये चौथा संस्करण है, जिसमें कई देशों के शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 3 दिनों के इस सम्मेलन के अंतर्गत मॉरिशस शर्तबंद मजदूरी की विरासत और समकालीन दुनिया में उसकी भूमिका पर विचारों के आदान प्रदान और चिंतन का एक केंद्र बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आश्वासन दिया है कि एमवी होंडियस क्रूज जहाज से यात्रियों को निकाले जाने के बाद हंटा वायरस का कोई भी वृहद फैलाव नहीं हुआ है, लेकिन WHO के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस का कहना है कि किसी भी समय हालात बदल सकते हैं, इसलिए सावधान रहना अनिवार्य है। इस वायरस के संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के अनुसार इसके 9 मामलों की पुष्टि हुई है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल।
4: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

आम हालत, हमारे इलाके पर कुछ बादलों का असर पड़ेगा अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। देश के खासकर पूर्वी, दक्षिणी और सेंट प्लाटो वाले इलाकों पर रह रहकर बादल घिराएंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलो

0: लहरें उठेंगी, दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:30 पर सूर्योदय, शाम को 5:42 पर सूर्यास्त होगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मुलाकात करेंगे ठीक 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your weather forecast.
2: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
4: बुधवार 13 मई, घड़ी मिला लीजिए 6:04, रेडियो मॉरिशस पर जो है भोर की बेला इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। सुप्रभात आप सभी को, सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह रेडियो मॉरिशस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोर की बेला इस कार्यक्रम को लेकर हम भी यहाँ पर आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। और नया दिन अपने आप में एक नए जीवन के समान होता है। बीते हुए कल से, अपने अनुभवों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और नए दिन की चलिए शुरुआत करते हैं। जो हुआ अच्छा बुरा उसे एक सीख के रूप में लेते हैं, आने वाले इस नए दिन में हर एक बातों को जोड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए इन्हीं कामनाओं के साथ इस नए दिन का आरंभ हम कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत हम करते हैं भोर की बेला इस प्रोग्राम में। कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो तो अपने आप में अंत भी भला होता है। तो बस एक सकारात्मक शुरुआत यहाँ पर आप सबके साथ मिलकर हम कर रहे हैं भोर की बेला इस कार्यक्रम द्वारा। और आपको बता दें कुछ क्षणों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर और उसके बाद चंद खूबसूरत भावगीत आप सुन पाएंगे भोर की बेला इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। तो चलिए आज की इस भोर की बेला कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम से, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को हम सुनेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी से।
5: आइए सुनिए श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।

आलयाम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय अधिक मास या मल मास। श्रोतागण, यह साल अधिक मास है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास है और जो कि अधिक मास 17 मई से लेकर के 15 जून तक है। इसीलिए अधिक मास किसे कहते हैं या मल मास किसे कहते हैं, अधिक मास में या मल मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं किया जाता है, कुछ इन सब बातों पर मैं आप सब लोगों को दर्शन डालूंगा। प्रति तीसरे वर्ष चंद्र मास में एक मास की वृद्धि हो जाती है, उसे मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास भी कहते हैं क्योंकि वह चंद्र मास के अनुसार 13वां मास हो जाता है। किंतु ज्योतिष शास्त्र

शास्त्र के अनुसार इसकी गणना नहीं की जाती, वर्ष 12 महीने का ही होता है। जिस प्रकार अधिक मास होता है उसी प्रकार से छह मास भी होता है। छह मास वर्ष के चंद्रमास 11 ही होता है और एक महीने के भीतर कोई संक्रांति नहीं पड़ती तब वह अधिक मास होता है जिस महीने में संक्रांति नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक महीने 12 महीना है और सभी 12 महीने में संक्रांति आती है और जब संक्रांति पड़ती है तो उस महीने में अधिक मास, उस मास को अधिक मास नहीं कहा जाता और जिस मास में संक्रांति नहीं उस मास को हम सब लोग अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं और पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और यह साल अधिक मास है, जो कि अधिक मास हर 3 साल में पड़ता है, हर 3 साल के बाद अधिक मास पड़ता है। इसीलिए मंत्रों में कहा गया जब तक मैं 2 संक्रांति पड़ जाती है तब वो 6 मास कहा जाता है, और जिस साल में 2 संक्रांति पड़ जाता है एक महीने में तो उस साल में 6 मास हो जाता है। 6 मास का महत्व अलग है, पुरुषोत्तम मास और अधिक मास का महत्व अलग कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं यह साल हम सब लोग अधिक मास में हैं। असंक्रांति मासो अधिक मासाम स्पिष्ट स्यात्, द्विसंक्रांति मास छयाख्याम कदाश्चित। 6 मास तो बहुत कम पड़ता है, लगभग 140 या 190 वर्ष के बाद यह जो मास आता है उसे हम सब लोग 6 मास कहते हैं। परंतु अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष में पड़ता है। वशिष्ठ सिद्धांत में बहुत सुंदर से उल्लेख है, द्वात्रिम दशांतम भर्येतम मासदीनम सुरस्विस्थाः घटीनाम चतुष्कोणिम पति हव्यमासः। अर्थात विशेष करके 32 महीने 16 दिन और 4 घटी के बाद अधिक मास पाया जाता है। इसे मिलिंच और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास को मलंच मास भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जिसे हम सब लोग अधिक मास कहते हैं। इसके संबंध में हेमाद्रि पुस्तक में कथन है कि मल मास व्रत मनुष्य के संपूर्ण पापों का हरण करने वाला होता है। इसमें एक मुक्त नक्त या उपवास वस्त्र आदि का दान किया जाता है। अधिक मास जिस मास में संक्रांति न पड़ता हो तो उस मास में भगवान विष्णु ने अपना नाम दे रखा है, तब उसी अधिक मास को हम सब लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में संस्कार नहीं किया जाता, जैसे गृह प्रवेश नहीं कर सकते, अधिक मास में नया कार्य प्रारंभ नहीं करते, अधिक मास में विवाह संस्कार नहीं होता है। लेकिन इस मास में अगर आप सब लोग भागवत श्रवण करेंगे तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है। पुराणों का श्रवण करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, दान पूजन करना अति उत्तम फल प्राप्त करता है। इसीलिए प्राचीन काल में नहलूस राजा ने इंद्रपद पाने के मद में पालकी देने के लिए अगस्त्य सहित महर्षियों को नियुक्त कर दिया था। अभ्यक्त न होने के कारण अगस्त्य जी धीरे धीरे चल रहे थे। वह उतावली में तथा
अतः एव सर्प सर्प कह।

कहने लगा, जिसका अर्थ हुआ चलो चलो। इससे असंतुष्ट होकर के अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम सर्प हो जाओ। फलस्वरूप वह सर्प हो गया। अंत में व्यास ऋषि ने आदेश अनुसार मलमास व्रत करने का उसे सर्प योनि से मुक्त मिले। इस प्रकार से व्यास मुनि ने उस सर्प के शाप से मुक्त करने के लिए यह व्रत बताया कि जितने लोग सर्प दूषित रहते हैं किसी शाप से, वो लोग शापित है, तो उन शाप को दूर करने के लिए, शापित से मुक्त होने के लिए मलमास में पूजा करते हैं तो सब प्रकार के रोगों से, दुखों से दूर हो जाता है। विष्णु रूपी सहस्त्र आसु की पूजा तथा प्रार्थना करने से कुरुक्षेत्र आदि में स्नान, गौ पूजन, भूमि स्वर्ण आदि के दान और अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराने के सम्मान फल होता है तथा सब प्रकार के धन धान्य पुत्र और परिवार बढ़ते हैं। इस प्रकार से अधिक मास में जितने लोग दान पुण्य यज्ञ करते हैं, भगवान विष्णु का चरित्र पालन करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मल मास के संबंध में देवी भागवत में लिखा है कि इस महीने में दान पुण्य यथा उपवास आदि जो भी क्रिया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। यदि सामर्थ्य न हो तो देवों, ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा करनी चाहिए। इससे तीर्थ स्थान आदि के सम्मान फल प्राप्त होता है। पुण्य के कामों में व्यय करने से धन क्षीण नहीं होता बल्कि धन बढ़ता है। अन्य लोगों ने भी कहा है, धर्म किए धन का नाश, घटा कहीं गए दास कबीर, कि जितना भी धन आप लुटाएंगे, आप दान करेंगे, उतना धन आपको मिलता है। वरुण सूर्य भावुनस्यम शते रवि गर्भाश्च अर्घ्य हिरण्योतनम दिवाकर मित्र विष्णुनाम चह। इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है, अर्थात चैत आदि 12 महीनों के कर्मशः वरुण सूर्य भानु तपन चंड रवि हिरण्य रेता दिवाकर मित्र और विष्णु, ये 12 आदित्य स्वामी थे। बहुत दिनों तक वह परंपरा चली रही। महीनों के नाम नक्षत्र के संबंध से बने हैं। चंद्र नक्षत्र का स्वामी है, अतः चंद्रमास की प्रधानता बनी रही है। इसका तर्क संगत कारक भी है। चंद्रमा के आधार पर तिथियों की गणना सरल है। चंद्रमा के उदय अस्त से सर्व साधारण भी तिथि का अनुमान लगा सकता है। इस प्रकार से ये अधिक मास पर्व क्योहार चंद्रमास और तिथियों के आधार पर ही प्रचलित हुए। रातभर चंद्रमा को देखकर बिना पूछे भी लोग समझ जाते हैं कि पूर्णिमा है, और रात भर चंद्रमा को न देखकर मालूम हो जाता है कि यह अमावस्या तिथि है। इस प्रकार से पर्व और मास पर बहुत सुंदर से वर्णित किया गया है, किंतु चंद्र संबंधी गणना से सुविधा थी वह दूसरी ओर एक व्यवस्था भी सामने आई। मास की गणना तो चंद्र से होती, किंतु ऋतुओं के समय साथ उसका समंजस नहीं रहा। ऋतुओं का मुख्य आधार सूर्य है और सूर्य संबंधी वर्ष दिनों का होता है और चंद्र वर्ष जो है दिनों का होता है। इस प्रकार

0: परिणाम सह कि बहुत दिनों के बाद मास और ऋतु का संतुलन बिगड़ गया। फलस्वरूप चैत महीने में जो वसंत का मास कहा जाता है, भीष्म गर्मी पड़ी थी और लुधें चलती थी। ज्येष्ठ महीने जो गर्मी का मास है, उसमें मूसलाधार वर्षा होने लगी है। इस प्रकार से चंद्र और सूर्य मास का वर्णन कहा गया है। लेकिन ये कहा जाता है कि जिस साल में अधिक मास आता है और उस अधिक मास में अगर हम सब लोग विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पूजन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का चिंतन करते हैं, भागवत भक्ति गान करते हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, यज्ञ करते हैं, या उस मास में हम सब लोग पुरुषोत्तम मंत्र का उच्चारण करते हैं, सहस्र शिरिखा पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमि गो सर्वत स्पृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
2: तो श्रोताओ, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं।

और कहते हैं ना कि सवेरे सवेरे अपने आप में वातावरण इतना सकारात्मक होता है, इतना पवित्र होता है। और आजकल तो जो है सवेरे उठकर अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने पर बहुत सारी बातें होती हैं। जो लोग जल्दी उठते हैं दिन भर में उन्हें हड़बड़ी नहीं करनी पड़ती है, जो लोग जल्दी जागते हैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि जब हम सवेरे जल्दी उठते हैं तो ऐसे में हमारे पास काफ़ी समय होता है पूरे दिन को प्लान करने के लिए, क्या हम कैसे करेंगे, किस तरह से किस कार्य को हम जो है अहमियत देंगे। तो ये सारी बातें जब हम करते हैं, ऐसे इस तरह से जब हम कार्य करते हैं, तो होता ये है कि पूरा जो भी हमारा सोचा हुआ काम होता है वो समय पर पूरा हो जाता है, कभी जो है किसी काम में गड़बड़ी नहीं होती है और हर एक कार्य जो है अच्छे से संपन्न भी होता है। तो बहुत आवश्यक होता है हम अपने दिन की प्लानिंग कर ले, पहले ही सोच ले कि कौन से कार्य को हमें अहमियत देनी है, किस तरह से हमें दिन में आगे बढ़ना है। और इस तरह से जब हम कार्य को करते हैं तो हर एक कार्य में अपना 100% दे पाते हैं। और जिस भी काम में हम पूरी तरह से 100% दे पाते हैं तो ऐसे काम में ये होता है कि हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो चलिए, नया दिन निकल चुका है, तो ऐसे में आप सभी को जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता मिले। और सफलता पाना उतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि सफलता के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और कहते हैं ना कि जो भी मेहनत हम करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाती है, हर मेहनत का फल जो है वो अवश्य आज नहीं तो कल सभी को मिलता ही है। तो आपको भी आपकी मेहनत का फल अवश्य मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। और चलिए, अभी से लेकर 6:30 बजे तक चंद खूबसूरत गाने जो है आप सुन पाएंगे यहाँ पर भोर की बेला इस कार्यक्रम में। और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, इस खूबसूरत गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: कहते हैं जीवन के इस सफर में हम आगे तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभार किनारा नहीं मिलता, कभी कभार सहारा नहीं मिलता, और बिना किनारे और बिना सहारे के हमें आगे चलते रहना पड़ता है।
0: भरी शुरुआत।
1: तो आप भी जिंदगी की ऐसी दुविधा से अगर गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। कहते हैं ना कि निराशा में भी कहीं ना कहीं आशा छुपी हुई होती है, और समय जो है बदलता है। समय आज अच्छा है तो कल को ये बदलेगा, आज बुरा है तो कल को वो भी बदलेगा। तो बस समय पर भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें, और उस पर भरोसा करें जिसने हमें ये जीवन दिया है। और चलिए इसी के साथ, इस खूबसूरत गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 6:30 बजे के पूरे समाचार की ओर। भोर की बेला, इस कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया, धन्यवाद। इसी गीत के साथ आप सुन पाएंगे 6:30 बजे पूरा समाचार, और हमारी आपकी दोबारा मुलाकात होगी सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में। तो धन्यवाद आपके प्यार भरे साथ के लिए।

0: घरी मिलाइए सुबह की ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन नौकरी स्थल पर हिंसा, कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों और अनुचित कार्य शर्तों को लेकर चिंता जता रहा है। आज से 15 मई तक अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर्ड लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये इसका 4th संस्करण है जिसमें कई देशों के शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। ऋतु विज्ञान केंद्र ने अपना विंटर आउटलुक 2026 आम किया। इसके अनुसार इस साल सर्दियां देर से शुरू होंगी, ज्यादा सूखी रहेंगी और सामान्य से कम ठंड पड़ेगी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका और ईरान के बीच काम कमजोर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल की तरफ से लेबनान पर हमले जारी हैं और दक्षिणी प्रांत में हुए इसराइली रॉकेट में कम से कम 13 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन नौकरी स्थल पर हिंसा, कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों और अनुचित कार्य शर्तों को लेकर चिंता जता रहा है। पोर्ट लुइस में कल लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ ने अस्पतालों में हिंसा के बढ़ते मामलों की कड़ी निंदा की, खासकर हाल में सामी की एक टीम पर हुए हमले को लेकर। संघ के अध्यक्ष अमरजीत सितोहल पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाइयों की समन्वित उपस्थिति के साथ सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही संघ ने लंबे समय से इस क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी, वेतन के भुगतान में देरी और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में योजना के अभाव का भी उल्लेख किया है। संघ के अध्यक्ष ने आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को डिजिटाइज करने और नौजवानों को इस पेशे के प्रति आकर्षित करने के वास्ते वेतन प्रणाली में सुधार लाए जाने पर बल दिया। मकसद है स्वास्थ्य सेवाओं के साथ कर्मचारियों और मरीजों की सुरक्षा भी बेहतर करना। शैली नियबन ने अमरजीत सितोहल के साथ बात की, उनसे उनको सुनते हैं।
1: En dehors de l'hôpital, mais dans tous nos centres hospitaliers, il est important qu'ils mettent un détachement de SMF et de SSU dans les centres hospitaliers parce que la police même peut être agressée. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a plus

0: sur tentative d'évasion de ban détenu dans nos ban l'hôpital et qui est capable d'avoir une conséquence très très grave quand nous gagnons des gens qui finissent à travers la soixantaine, qui travaillent comme sécurité officieuse, nous capables de comprendre qui sont output et ce qu'ils sont capables d'intervenir. Non. Et non, ce qu'ils appellent les caméras de surveillance qui ont des millions de investis dedans mais qui pas apportent les résultats qui sont. Et pour nous, le moyen le plus facile actuellement, c'est de mettre un monitoring team à la station de la police qui trouve juste à côté de Nuban Regional Hospital. L'autre facteur qui amène la violence, c'est une personne perdue ce dossier. Et là, c'est pourquoi nous disons qu'il y a une urgence une fois de plus pour implémenter le e-health au plus vite possible.
1: हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे कभी बेहतर जीवन की तलाश में समंदर पार कर गए थे और अपने पीछे निर्वासन, साहस और दृढ़ता से भरा इतिहास छोड़ गए थे। आज भी शर्तबंद मजदूरी की विरासत दुनिया भर में शोध और चिंतन का को प्रोत्साहित करती है। आज से 15 मई तक आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर्ड लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2011, 2014 और 2017 के बाद ये चौथा संस्करण है जिसमें कई देशों के शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 3 दिनों के इस सम्मेलन के अंतर्गत मॉरिशस शर्तबंद मजदूरी की विरासत और समकालीन दुनिया में उसकी भूमिका पर विचारों के आदान प्रदान और चिंतन का केंद्र बनेगा। अंजलि सिरतन, अभ्युदय।
2: ये लोग भारत, अफ्रीका, चीन और मेडागास्कर जैसे देशों को छोड़कर एक अनजान धरती की ओर लंबी यात्राओं पर निकले थे। गिरमिटिया प्रथा के रजिस्टरों में दर्ज हर नाम के पीछे अपनी जड़ों से बिछड़ने, त्याग और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की कहानी छिपी हुई है। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड इसी सामूहिक स्मृति को फिर से जीवित रखने की दिशा में 13 से 15 मई तक मॉरिशस विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसका शीर्षक है द इंडेंचर्ड लेबर रूट एट द क्रॉस रोड्स, इमेजिनिंग न्यू फ्यूचर्स फॉर द ग्लोबल डायस्पोरा। इस सम्मेलन में दुनिया भर से आए विद्वान, इतिहासकार और विरासत विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह 2011, 2014 और 2017 के बाद होने वाला चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें गिरमिटिया प्रवासियों की पहचान, यादों और उनकी विरासत पर चर्चा, गोलमेज बैठक और फिल्में दिखाई जाएंगी।
3: Les poux focus low indentured labor dans l'île Maurice, dans l'océan Indien et le monde. Nous pouvons avoir scholars, quelques scholars pour venir faire le déplacement depuis pays comme l'Australie, comme Trinidad, comme.
2: Ye conference shartaband mazdooron par dhyan kendrit rahega, khaskar Mauritius, Hind Mahasagar aur duniya mein. Australia, Trinidad, Dakshin Africa tatha anya deshon se visheshagya तथा इतिहासकार इस सम्मेलन में भाग लेने आ रही है। गिरमिटिया प्रथा तथा उनकी चुनौतियों, प्रवासियों की जीवन गाथा आदि पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन के दौरान इंडेंचर्ड लेबर रूट डेटाबेस का उद्घाटन किया जाएगा। ये मॉडर्न रिसर्च टूल शोध कार्य को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। इस दौरान आने वाले वर्षों के लिए इस प्रोजेक्ट की दिशा और मुख्य लक्ष्यों को भी तय किया जाएगा।
3: Et un roadmap pour l'indentured labor route project pour les prochaines 5 à 10 ans. Pour qu'on écoute nous parler avec ce projet-là, Mauritius, la Pravasigat qui peut mener ça.
2: Indentured labor route परियोजना के लिए एक roadmap निर्धारित है। ये जानने के लिए कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये परियोजना कहां तक पहुंची है। मॉरिशस अप्रवासी घाट इस परियोजना का संचालन कर रहा है। 3 दिनों तक मॉरिशस एक ऐसा मंच बना रहेगा जहां गिरमिटिया प्रथा की विरासत और आज की दुनिया में इसके महत्व पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा।
1: जहां पुलिस कर्मियों के हित का मुद्दा सार्वजनिक बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, वहीं सरकार की तरफ से कल खुलासा किया गया कि 63 पुलिस क्वार्टर्स फिलहाल खाली पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी मरम्मत संभव नहीं हो पा रही। देश भर में पाए जाने वाले 608 पुलिस क्वार्टर्स में से 545 में लोग रह रहे हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर दफ्तर की तरफ से प्राप्त जानकारियों के अनुसार फिलहाल इनके नवीनीकरण या नए आवासों के निर्माण की किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय सभा में कल रोड्रिग्स में मौसम संबंधी जानकारियों की उपलब्धता और मौसम विज्ञान उपकरणों की

0: स्थिति का मुद्दा उठाया गया। सांसद फ्रांसिस्को फ्रांसवा के एक सवाल के जवाब में अंतरिम प्रधानमंत्री आर्यान नावामारी ने जनता को आश्वासन दिया कि मौसम और जलवायु संबंधी जानकारियां प्रस्ताव वास्तव में सुलभ हैं। उनके अनुसार ऋतु विज्ञान केंद्र की तरफ से सुबह 4:30 बजे, दिन के 11:30 बजे और शाम 4:30 बजे फ्रेंच भाषा में बुलेटिन जारी किए जाते हैं। साथ ही ये जानकारियां मोबाइल फोन्स और ऑनलाइन भी उपलब्ध होती हैं। उन्होंने बताया कि डेटा कलेक्शन और सर्वेलेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा पीएमक्यूटी सत्र के दौरान देश में सुरक्षा संबंधी मुद्दों और ड्रग्स जब्ती पर भी जानकारियां दी गई। करुणा नालू,
1: प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान पहला प्रश्न रॉड्रिक्स के लिए मौसम और जलवायु संबंधी डेटा की उपलब्धता पर आधारित रहा। आर्यान नावामारी ने रॉड्रिक्स की जनता को सूचित करने के लिए पहले से मौजूद व्यवस्था का उल्लेख किया। गंभीर मौसम परिस्थितियों के लिए एक प्रोटोकॉल भी पाया जाता है।
2: Early warning bulletins related to severe weather conditions such as heavy torrential rainfall, strong winds, heavy swells, tropical cyclones and tsunamis are issued by the MMS for Rodrigues when the island is exposed to such risks.
1: 1 January 2026 से 7 मई तक सड़क दुर्घटनाओं में 51 लोगों की मौत हुई है। बिना इरादे की हत्या के 37 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एक चालक भी शामिल हैं जो नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्राइविंग के लिए वर्तमान में जेल में बंद हैं।
2: It has been decided last week to amend the penalty point system by increasing from 3 to 6 points to 5 to 10 points for those using telephone while driving.
1: अंतरिम प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को हवाई अड्डे पर 16 किलो कैनाबिस और कैनाबिस रेजिन की जब्ती के बारे में भी जानकारी दी। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक फ्रांसीसी नागरिक और 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पुलिस क्वार्टर्स के संबंध में 608 आवासों में से 545 में लोग रह रहे हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नए पुलिस क्वार्टर्स के निर्माण की कोई योजना फिलहाल नहीं है।
0: ऋतु विज्ञान केंद्र ने अपना विंटर आउटलुक 2026 आम किया। इसके अनुसार इस साल सर्दियां देर से शुरू होंगी, ज्यादा सूखी रहेंगी और सामान्य से कम ठंड पड़ेगी। इस जलवायु पूर्वानुमान के अनुसार इस साल ठंड का मौसम मई महीने के आखिर से महसूस किया जाएगा। इन सर्दियों के दौरान मॉरिशस में औसतन से कम बारिश पड़ने, जबकि रॉड्रिग्स में सामान्य औसतन के आसपास वर्षा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही इस बार तेज हवाओं, ऊंची लहरों और सामान्य से ज्यादा तापमान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। सांताना पोस्नो, गीता स्नरन।
3: इस साल सर्दी का मौसम सामान्य से थोड़ी देर से शुरू होने की संभावना है। ठंडे मौसम की सामान्य परिस्थितियां मई महीने के अंत तक स्थापित हो सकती हैं, जबकि मॉरिशस और रॉड्रिग्स में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। बारिश की बात करें तो मॉरिशस में इस सर्दी के मौसम में सामान्य से थोड़ी कम बारिश होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 535 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है, जो मौसमी औसतन का लगभग 80% है। ये मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में होगी। रॉड्रिग्स में वर्षा सामान्य के करीब रहने की संभावना है, जहां लगभग 440 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है, जो औसतन का लगभग 90% है। हालांकि तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा, फिर भी कुछ ठंडे मौसम के दौर संभव हैं। मॉरिशस के कुछ इलाकों में साफ आसमान और हवा न होने की स्थिति में रात का तापमान कभी कभी 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, खासकर सबसे ठंड रातों में। रॉड्रिग्स में ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व दिशा से हवाएं चलेंगी। हालांकि फरवरी जुलाई और अगस्त के दौरान ज्यादा शक्तिशाली उच्च दबाव वाली एंटीसाइक्लोन के कारण कुछ इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज झोंके आने की संभावना है। अंत में 2026 के विंटर आउटलुक में चेतावनी दी गई है कि कभी कभी ऊंची लहरें उठ

0: सकती हैं, जिससे समुद्र बहुत ही खराब हो सकता है और कुछ निचले तटीय क्षेत्रों में अस्थायी बाढ़ आने की आशंका है।
1: ठंड के मौसम के दौरान वातावरण में नमी कम होती है, जिससे कई लोगों को त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे सोरियासिस आदि। ठंड, हवाओं, सूखे और तापमान में बदलाव के कारण कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं। कई बार त्वचा लाल पड़ जाता है, जलन होती है और या तो रैशेस दिखते हैं। समाधान के लिए कुछ उचित आदतें अपनाना जरूरी होता है। सूखी त्वचा से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट करने के वास्ते पानी पीते रहना चाहिए। जेनी यलापानी डॉक्टर अनु कोनायक के साथ बात की, विस्तार गीता सुनारंग के साथ।
0: सोरियासिस त्वचा में होने वाली बीमारी है। त्वचा पर लाल धब्बे दिखने लगते हैं, खुजली होती है, सफेद रंग के धूल जैसे निकलने लगते हैं। ये एक क्रॉनिकल और जेनेटिकल बीमारी है। सर्दियों में ये गंभीर हो जाती है, ज्यादा ठंड होती है और त्वचा ज्यादा सूख जाती है और ज्यादा खुजलाने लगती है। सबसे पहले त्वचा को हाइड्रेट करना चाहिए, खासकर नहाने के बाद। कम समय के लिए पानी के नीचे रहना चाहिए, ज्यादा गर्म पानी में नहीं नहाना चाहिए। समय समय पर दिन के दौरान अगर त्वचा सूख जाती है तो फिर से हाइड्रेट करना चाहिए।
1: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आश्वासन दिया कि एमवी हॉन्डियस क्रूज जहाज से यात्रियों को निकाले जाने के बाद हंटा वायरस का कोई भी वृहद फैलाव दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन WHO के प्रमुख तेद्रोस गेब्रेयेसस का कहना है कि किसी भी समय हालात बदल सकते हैं, इसलिए सावधान रहना अनिवार्य है। इस वायरस के संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के अनुसार इसके 9 मामलों की पुष्टि हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच कायम कमजोर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल की तरफ से लेबनान पर हमले जारी हैं। दक्षिणी प्रांत में एक इसराइली रॉकेट हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 पैरामेडिक्स शामिल हैं, जबकि इसराइली सेना ने इस हमले को अंजाम देने की पुष्टि नहीं की है। आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर कुछ हवाओं और बादलों का असर पड़ेगा अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। दिन के दौरान खासकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे, रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है, जबकि दिन के दौरान समंदर की स्थिति में सुधार आ सकता है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:30 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:42 पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन, नौकरी स्थल पर हिंसा, कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों को लेकर चिंता जता रहा है। आज से 15 मई तक अप्रवासी घाट ट्रस्ट वन मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंटर लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये इसका चौथा संस्करण है जिसमें कई देशों के शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। ऋतु विज्ञान केंद्र ने अपना विंटर आउटलुक 2026 आम किया। इसके अनुसार इस साल सर्दियां देर से शुरू होंगी, ज्यादा सूखी रहेंगी और सामान्य से कम ठंड पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लेबनान में इसराइली रॉकेट हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई। देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में यूसुफ हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Proxima Chassounier. Chalet Road, Montagne Blanche, mais Chalet Road. Montagne Blanche, mais 75 साल के 75 श्री प्रेमचंद कुलमंत, श्री प्रेमचंद कुलमंत जो ललित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं. केयर थी आज दिन के ढाई बजे इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे श्री विपिन वर्मा कुलमंत के मकान शाये रोड मोता ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM. रॉयल रोड पेचीबेलिया में, रॉयल रोड पेचीबेलिया में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की कुमारी लोगुमनी चक्रवानेन, कुमारी लोगुमनी चक्रवानेन जो देवी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं. केयर थी आज दिन के 10:30 बजे, केयर थी आज दिन के 10:30 बजे इनके मकान रॉयल रोड पेचीबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM. रॉयल रोड क्लावेट में, रॉयल रोड क्लावेट में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की कुमारी अनीता कुमारी चटकन, अनीता कुमारी चटकन जो अनीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं. केयर थी आज दिन के 11 बजे, केयर थी आज दिन के 11 बजे के भाई श्री नवीन चटकन के मकान रॉयल रोड क्लावेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्लावेट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. कॉन्डमास रोड मेलरोज मोंटाइन ब्लांश में, कॉन्डमास रोड मेलरोज मोंटाइन ब्लांश में 42 साल की 42 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रेमा हरी, श्रीमती प्रेमा हरी पैदाइश नाम गोकुल जो प्रेमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं. केयर थी आज दिन के 1 बजे, केयर थी आज दिन के 1 बजे इनके पति श्री विशाल हरी के मकान कॉन्डमास रोड मोंटाइन ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेलरोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. नंबर 32 कॉन्डस लेन काथोबोन में, नंबर 32 कॉन्डस लेन काथोबोन में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड श्री वेनी काउलेसा, श्री वेनी काउलेसा जो सुनील नाम से ज़रा जाने जाते थे और पर्यटन मंत्रालय में उच्च अधिकारी थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं. केयर थी आज दिन के 10 बजे, केयर थे आज दिन के 10 बजे के भाई श्री अमित कावलेसा के मकान नंबर 32 कॉन्डस लेन काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 10 AM. सरी इंग्लैंड में, इंग्लैंड में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड श्री सूर्यदेव रीमल, श्री सूर्यदेव रीमल जो सुरेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनका अंतिम संस्कार आज मर्शन समयानुसार दिन के 12 बजे सरी इंग्लैंड में ही किया जाएगा और इनकी अर्थिन की पत्नी श्रीमती तारा रीमल के मकान से उठाई जाएगी. नंबर 31 सेंट फामी सेंट क्वामी, नंबर 31 सेंट फामी सेंट क्वामी 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड श्री गणेश्वर नियोल, श्री गणेश्वर नियोल जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं. केयर थी आज दिन के 10 बजे, केयर थी आज दिन के 10 बजे के भाई श्री मनोज नियोल के मकान नंबर 31 सेंट फामी गली सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाले देपत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 10 AM. पावे रोड पे चिराफे में, पावे रोड पे चिराफे में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड श्री ज्ञानदत्त भोला, श्री ज्ञानदत्त भोला जो ज्ञानदत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं. केयर थी आज दिन के 1:30 बजे, केयर थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती नलिनी भोला के मकान पावे रोड पेची राफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास काल पेची राफे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM. फ्लोरिडा लेन तियारोज में, फ्लोरिडा लेन तियारोज में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री भरत हीरामन, श्री भरत हीरामन जो जगदीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं. केयर थी आज दिन के 11 बजे, केयर थे आज दिन के 11 बजे के मकान फ्लोरिडा लेन त्यागोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बम और शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी.

cremation today at 11 a.m. Sivananda Avenue Floreal me, Sivananda Avenue Floreal me, 90 saal ke, 90 years old, Sri Bhagwat Gokul, Sri Bhagwat Gokul, जो अनिरुद्ध नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनके मकान शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भी कहा कि श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 11 AM। स्टेलियो टेलेमाक एवेन्यू क्रेटिन स्टैनले में, स्टेलियो टेलेमाक एवेन्यू क्रेटिन स्टैनले में 41 साल के 41 years old श्री कुमार रेशनंद संतोकिया, श्री कुमार रेशनंद संतोकिया जो गौस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे, इनके भाई श्री केनी संतोकिया के मकान स्टेलियो टेलेमाक एवेन्यू क्रेटिन स्टैनले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगौद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 1:30 PM। जॉन केनेडी स्ट्रीट न्यूवियामिल थ्रियोले में, जॉन केनेडी स्ट्रीट न्यूवियामिल थ्रियोले में 80 साल की 80 years old श्रीमती बुधन गंगाविसुन, श्री बुधन गंगाविसुन जो हंसराज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व हिंदी के अध्यापक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी पत्नी श्रीमती शीला तकोरी गंगावेसुन के मकान जॉन केनेडी स्ट्रीट न्यूवियामिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनी थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स
1: न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग में जाने के लिए आखिरी टिकट हल या सावंतन के नाम होगा। कल चैंपियनशिप प्लेऑफ सेमीफाइनल में एक्स्ट्रा टाइम में जाकर सावंतन ने मिडल्सब्रो को 2-1 से हराया। फुल टाइम स्कोर 1-1 रहा। फाइनल 23 मई को वेम्बले स्टेडियम में। याद दिला दें, चैंपियनशिप से कोवेंट्री और इप्सविच प्रीमियर लीग में प्रमोट हो चुके हैं। वुल्व्स और बर्नले डिमोट हो चुके हैं। टोटनहम हॉटस्पर या वेस्ट हैम में से एक टीम चैंपियनशिप के कारावास में जाएगी। स्पेन के ला लीगा में कल 3 मैच खेले गए। सेल्टा वीगो 2, लेवेंटे 3, बेटिस 2, एल्चे 1, ओसासुना 1, एटलेटिको मैड्रिड 2। इंडियन सुपर लीग में मोहन बगान और इंटर काशी के बीच मैच ड्रॉ 0-0। आज प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी खेलेगा क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ। मैनचेस्टर सिटी अभी आर्सेनल से 5 अंक पीछे है। आज जीत हुई तो केवल 2 अंकों का गैप होगा, बचेंगे केवल 2 मैच। पेप ग्वार्डियोला ने कहा कि अंत तक लड़ेंगे, आर्सेनल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इटली के कोपा इटालिया में भी आज एक मैच है, इसका फाइनल है, ये होगा लाजियो और इंटर मिलान के बीच। फ्रांस के लीग एम ब्रेस्ट स्ट्रासबूर, लांस पारिस सेंट जर्मेन, अभी इन दोनों के बीच 6 अंकों का फासला है। गोल डिफरेंस पारिस सेंट जर्मेन का बेहतर है। पारिस सेंट जर्मेन के लिए आज चैंपियन बनने की रात हो सकती है। योजे मोरिनो रियल मैड्रिड के एकदम करीब, उसके साथ जोड़ने के लिए तैयार है। फाइनल निगोशिएशंस चल रहे हैं। 13 सालों के बाद द स्पेशल वन फिर से रियल मैड्रिड में का बॉस बन सकता है। अभी मोरिनो बेनफिका में है। प्रीमियर लीग के सीनियर रेफरी हावर्ड वेब ने कहा कि लिवरपूल के खिलाफ सेस्को के हाथ से लगने के बाद गोल स्कोर किया गया, पर वह के पास काफी एविडेंस नहीं था, वह का फैसला गलत रहा।

जहां उसने खुद कहा। इटालियन ओपन टेनिस की बात करें, इटालियन ओपन में अब क्वार्टर फाइनल्स के मैच खेले जाएंगे। कल कास्पर रूड ने मुसेती को हराया, सियस्टिया की जीत ओस्टापेंको पर। फिर होम फेवरेट और वर्ल्ड नंबर वन यानी सीनर भी क्वालिफाई हुआ अपने हमवतन पेलेग्रिनो को हराकर। कोको गोफ ने अंद्रीवा को हराया। मेडवेदेव, रूबलेव, दाउदेरी, काचानोव भी जीत पाए। आज क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। पेगुला का मुकाबला श्वातेक से, कास्पर रूड खेलेगा काचानोव के खिलाफ। वितोलिना, रिबाकिना, जोदा, दाउदेरी यानी सिनर कल खेलेगा रूबलेव के खिलाफ। और सियस्टिया का मुकाबला गोफ से ये कल होगा। और मेडवेदेव का मुकाबला लांडालुस से। ये इटालियन ओपन है। क्रिकेट में आईपीएल के ग्रुप स्टेज में कल गुजरात टाइटंस ने 82 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद को मसल डाला। गुजरात टाइटंस के 168 रनों के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम केवल 86 पर ऑल आउट हुई। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है। और एथलेटिक्स में अफ्रीकन चैंपियनशिप कल से शुरू हुए। शॉर्ट पुट में हमारा हमवतन बेनो बातचीत चौथा स्थान ले पाया, ब्रॉन्ज मेडल से केवल 2 सेंटीमीटर पीछे। 100 मीटर सीरीज में ओफेटोपीज और नोवा बीबी तीसरे स्थान पे आए। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: बुधवार 13 मई घड़ी मिला लीजिए सवेरे के ठीक 7 बज रहे हैं। सुबह का नजराना ये प्रोग्राम लेकर हम एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को, कैसे हैं आप सभी? ऐसे तो सवेरे सवेरे से ही आप हमारा साथ दे रहे हैं और अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, हमें यकीन है और आगे भी आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहेगा। तो चलिए सुबह का नजराना इस प्रोग्राम की शुरुआत साथ में मिलकर करते हैं। कहते हैं ना कि एक दूसरे का साथ देने से जिंदगी का सफर और भी खूबसूरत और भी हसीन हो जाता है। तो चलिए सुबह का नजराना ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, चलेगा अभी से लेकर 9 बजे तक। म्यूजिकल प्रोग्राम है, खूबसूरत गाने तराने, ढेर सारी बातें, आपके डेडिकेशंस, आपके फोन कॉल्स, आपके मैसेजेस, इन दो घंटों के दौरान बहुत कुछ होगा और इसमें आपका साथ हमें मिलता रहे। और बस आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, जो भी मनमुटाव है अपनों के साथ सब दूर हो जाए, जो भी गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाए, आपस में प्रेम हो, अपनापन हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो और जीवन में खुशियों की कमी बिल्कुल ना हो। तो चलिए इन्हीं सभी कामनाओं के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर जमन की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: कार्य उसी का सफल होता है जो समय को विचार कर कार्य करता है। वह खिलाड़ी कभी पराजित नहीं होता जो दाव विचार कर खेलता है।

जी हाँ सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मुकेश साहब की आवाज़ में जो खूबसूरत सा तराना था, और इसी के साथ जो है सुबह का नजराना इस प्रोग्राम की एक बेहतरीन सी शुरुआत हुई है। जी हाँ, यहाँ पर ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। कहते हैं ना कि अच्छे बातों का हमेशा अच्छा फल होता है और बुराई का फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। तो अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं और किसी का दिल न दुखे हमसे, इसकी कोशिश हम करते हैं। और चलिए, यहाँ पर साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताते हैं कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना, आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे। 7:40 से आपकी डेडिकेशंस हम इंक्लूड करने वाले हैं, जिसके लिए आपके मैसेजेस हमें सवेरे से ही मिल रहे हैं, साथ ही फ़ोन कॉल्स भी। तो बस ऐसे ही साथ जुड़े रहिएगा। 8 आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 हम लेकर आएंगे आ खेल खेले हम एक छोटा सा क्विज जो हर वेडनेसडेज को होता है। और फिर 8:30 आप मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में सुन पाएंगे कार्यक्रम परिवार नियोजन। 8:50 पर आप हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे किरण जानकी की प्रस्तुति में, और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 9 आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना। 10 आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। भक्ति धारा इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। 11 होगा समाचार, उसके बाद आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा सैयदा की पेशकश में। दोपहर के 12 विश्मा प्रस्तुत करेगी तेलुगु भाषा में प्रोग्राम सौंदर्य लाहिरी। 12:30 प्रीति की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम। दोपहर के 1 आरसी प्रस्तुत करेगी तमिल भाषा में कार्यक्रम। 2:15 से गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 से रोशनी आपका साथ देगी आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। 3 के समाचारों के बाद आपकी पसंद ये कार्यक्रम जारी रहेगा। दोपहर के 4 शीर्ष प्रस्तुत करेंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम विविधा। 5 फारी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे खेती बाड़ी पर आधारित विशेष कार्यक्रम। 5:15 से रोशन और उषा आपका मनोरंजन करेंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम में। 6 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6:30 हक्का भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डेविड।

7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। पुवाना से 7:30 बजे राजेंद्र की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में प्रोग्राम। 7:50 पर मराठी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे नितिन गीत गंगा। रात के 8:10 पर अनीता की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम। रात के 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। रात के 9 से 11 बजे के बीच प्रताप आप सभी का मनोरंजन करेंगे भोजपुरी तड़का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। रात के 11 बजे से गिनीशा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को। और रात के 12 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की और खूबसूरत गानों का जो सिलसिला है, चलिए इसे आगे ले जाते हैं। दोस्ती फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारी आपकी दोस्ती भी बनी रहे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सवेरे के 7:13 आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए, दो विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी कोरोमोंडल के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सीबी कोरोमोंडल के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है, खासकर कोरोमोंडल के चैपमैन व्यू एवेन्यू, ब्लैक मोली एवेन्यू, एंजल फिश एवेन्यू, ब्लड फिश एवेन्यू, जीनिया एवेन्यू, हिबिस्कस, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 14 मई को सुबह के साढ़े आठ बजे से दोपहर के साढ़े तीन बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही रोशब्रुन के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है रोशब्रुन के, खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक, एवेन्यू रोशब्रुन, एवेन्यू एसके चेडी, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी कल गुरुवार 14 मई को सुबह के नौ बजे से शाम के पाँच बजे के बीच यहाँ पर भी ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी दो विज्ञप्तियाँ सीईबी की ओर से।
0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: Quand les petits bébés, Moticon Prothèse lit compte tout kitsos. Mais Astella donne les mondes digital, mot pas toujours connu au kissan la lipécosé, ou soit qui lipégueté. Heureusement, Moroches Telecom, et Nam IT Protec, une solution pour prothèse aux enfants quand les online. Zodi, quand les le sopo table ou l'os tablette, mot l'esprit tranquille, à cause sécurité aux enfants, peine à prix. Un enfant sans protection sur les réseaux peut être exposé à des dangers bien réels. Cyberbullying, des contenus violents, entre autres. Protégez votre enfant aujourd'hui avec Mighty Protect. Pour plus d'infos, appelez le 8900 ou visitez notre page mighty.mu.
3: Mighty? Mighty, c'est ça!
4: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: Malo la caisse, me tient en pouce. Mal pay mobile, me tient en pouce. Mal restaurant, me tient en pouce.
2: Hé, hey, calmé! Avec le Tri Mighty Money, t'es capable de gagner des millions de roupies in the pocket. Jusqu'à le 10 juillet, tout au paiement et top up te fait à l'eau Mighty Money, donne-toi sens, gagne des millions, 500 000 ou 300 000 roupies cash et plein les autres cadeaux.
3: Allô, qui te dit?
1: Eh, hey, mais avec Mighty, in the pocket!
4: Mighty Money est un service de Cell Plus Mobile Communication Limited qui opère sous licence de la Banque de Maurice. Termes et conditions applicables.
5: Mighty? Mighty CIESA!
0: 819 kHz, ye hai Radio Mauritius. Radio Mauritius.
6: Dil ki bahar, subah ka nazrana, Radio Mauritius par.
7: और चलिए सवेरे सवेरे की बात करें तो सवेरे सवेरे थोड़ा सा जोश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा जोश नहीं होगा, थोड़ी सी उमंग नहीं होगी, थोड़ा सा उत्साह नहीं होगा तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होगी, और दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती तो पूरा दिन अच्छे से नहीं बीतता है, है ना। और चलिए आप लोगों की दिन की शुरुआत अच्छी हो, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए हो, इसके लिए हम हैं ना यहाँ पर आपका साथ देने के लिए, अच्छे अच्छे गाने आपके लिए चलाने के लिए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर। तो चलिए देखते ही देखते सवेरे के 7:23 हो चुके हैं, और जिस रफ्तार में ये गाना आगे बढ़ रहा है उसी रफ्तार के साथ चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते बढ़ते अगर घर से निकल रहे हैं, अपने अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, तो आप रास्तों पर ख़ास ध्यान रखिए, संभल कर गाड़ी चलाएं और गाने का मज़ा उठाते रहें, और ये

अजी दिल को थोड़ा सा संभालिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी में कहीं ना कहीं हमसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो जिस भी काम को करे ठंडे दिमाग से सोच कर करे और प्लानिंग के साथ करे, तो सभी काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी के लिए तो हमारे यहाँ तो इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि जैसे ही एक गाना लगता है उस एक गाने के बीच हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट 2-3 फ़ोन कॉल्स हम अटेंड कर ले, आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन हम ले लें। और आजकल तो बहुत सारे लिसनर्स ऐसे भी है कि मैसेज भेजते हैं, तो बहुत आसान भी हो जाता है आपके लिए भी। और पर बहुत से लोगों के पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी कि फ़ोन एक बार में नहीं लगता है, तो कई बार कोशिश करते रहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस कोशिश के लिए, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। तो चलिए, शादियों का सीज़न है, ऐसे में बहुत सारे जो है डेडिकेशंस नए कपल्स के लिए भी आ रहे हैं, जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं। थोड़ी देर में उनके लिए भी कोई खूबसूरत सा गाना हम ज़रूर चलाएंगे। अभी के लिए चलिए इस अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। सिलसिला फिल्म का ये तराना है लता जी किशोरदा की आवाज़ों में। खूबसूरत सा मौसम छाया हुआ है, हल्की हल्की धूप है, हल्की हल्की ठंड।

चलिए देखते ही देखते सवेरे के 7:33 ऑलरेडी हो चुके हैं। सिलसिला फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता जी और साथियों की आवाज़ों में। कुछ फिल्में ऐसी होती है कि कभी कभार सिर्फ मेन

0: एक्टर और एक्ट्रेसेस पर फोकस होती है। कुछ एक एक गाने ऐसे होते हैं जो उसी पर हमारा ध्यान होता है। ये सब मीडिया का काम होता है। अगर हम सिलसिला फिल्म की बात करें तो ये कहाँ आ गए हम यूँ ही साथ साथ चलते, ये गाना सबके जहन में सबसे पहले आता है, जहाँ पर अमिताभ जी और रेखा जी एक साथ नजर आए थे। ऑब्वियसली एक आइकॉनिक गाना है, कोई भूल नहीं सकता। लेकिन सिलसिला फिल्म का ये जो गाना अभी आपने सुना सरके सरके, ये भी गाना बहुत ही खूबसूरत है। जया बच्चन जी इस गाने में नजर आई थी, अपने सखियों के साथ झूला झूल रही थी, बदलते मौसम को एंजॉय कर रही थी। ऐसे गाने जो नेचर से जुड़े होते हैं, जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, जब भी हम सुनते हैं वो बाहर हमारे भीतर भी आ जाती है। मानते हैं ना इस बात को? तो चलिए, ऐसा ही कोई गाना जो बहुत दिन हो गया आपने नहीं सुना, जो आपको किसी की याद दिलाता है, जिसमें खुशी है। क्योंकि हम मानते हैं कि अगर हम दुख वाले गाने सुनेंगे ना तो अपने दुख से कभी नहीं निकल पाएंगे। हाँ, कभी कभार दुख वाले गाने हमारे दिल को सुकून देते हैं, लेकिन एक समय आता है उस दुख से निकलना भी पड़ता है ना। तो निकलने के लिए कुछ ऐसे गाने भी हो, कुछ ऐसे तराने भी हो जो दिल में एक उम्मीद जगाए, जो दिल में एक एहसास जगाए, फिर से प्यार करने की इच्छा को जगाए। अब प्यार ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति से हो, प्यार अपने काम से हो, प्यार अपनी किसी अच्छी चीज़ से हो, प्यार अपने पेट से हो, प्यार अपने पौधों से हो, फूलों से हो। प्यार तो प्यार होता है जो किसी से भी किया जाता है।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,
2: एक दीवाना शहर में,
3: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
2: दो दीवाने शहर में।

चलिए यहाँ पर इस दीवानगी को हम बरकरार रखते हैं और देखते ही देखते सवेरे के 7:40 यहाँ पर, और अब बारी है आपके डेडिकेशंस की। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सवेरे से इतने सारे फ़ोन कॉल्स और इतने सारे मैसेजेस जो है, इसके लिए धन्यवाद। और चलिए शुरुआत करते हैं, बेसब्री से हमारे लिसनर्स जो है, हमारे श्रोता जो है, इसका इंतज़ार करते हैं कि कब उनका नाम हम जोड़े, कब उनके लिए कोई खूबसूरत सा गाना हम चलाएं। तो सबसे पहले तो जितने भी सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। सभी हमें फ़ोन नहीं करते हैं, सभी हमें मैसेज नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं फिर भी जुड़े रहते हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद आपको। और जो इतने पेशेंस से फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, दिल से शुक्रिया आप सभी का भी। तो चलिए यहाँ पर शीला जी हमारे साथ जुड़ी है, पति साजन के नाम अगला गाना, और गानों को एंजॉय कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रही है कि एक अच्छी शुरुआत होती है अच्छे अच्छे गानों से, तो धन्यवाद। रोजबल से अनीता जी हमारे साथ जुड़ी है, कह रहे सवेरे जो हमने गाना चलाया सजन रे झूठ मत बोलो, उस गाने को सुनकर उनको अपने पति की याद आ गई, कह रही ये गाना उनके पति गाया करते थे। तो चलिए अच्छा लगा जानकर, और कितने गानों से हमारी कितनी यादें जुड़ी होती है ना। तो चलिए ऐसे ही यादों को ताज़ा करते हैं, यही गाना आपके पति सुभाष दुलप के नाम, जिनको आप याद करिए, साथ में आपके बेटे रितेश के लिए और सभी दुलप परिवारों के लिए। और बड़े ही प्यार से यहाँ पर ये जो मैसेज है वो आया है, आपके आते ही मौसम आशिकाना हो गया, अरे वाह चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माला जी आपके इन प्यार भरे शब्दों के लिए, और ये खुशहाली आप तक भी पहुँचे, और ये सुहाना मौसम आपके जीवन में भी हमेशा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और अगला गाना सभी सुमारू फैमिलीज के नाम हम करते हैं, और जिस घर में माँ पिता हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं, बहुत सुंदर पंक्तियाँ है ये हमें भेजी है अनीता जी ने मादालबिया से। बिल्कुल, माता पिता का आशीर्वाद जीवन में सबसे बड़ा जो है एक शगुन होता है अपने आप में, क्योंकि इसके बिना तो हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो है तो हम हैं और वो नहीं तो हम भी नहीं। तो चलिए अगला गाना आपके नाम अनीता जी, करुणा अमृता सभी आपके दोस्तों के लिए, मौदालबिया से जितने भी आपके परिवार हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमी जी 16 आने सच कहा आपने क्या कहा आप बता देती लक्ष्मी जी, हमें पता चलता बहुत बहुत लक्ष्मी जी धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए, बॉम्बू से आप हमारा साथ दे रही है। दीदी कुमारी आज अपना जन्मदिन मना रही है, तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी ओर से, सभी रूप सिंह परिवार, सभी हरिदास परिवार और सभी राम से रावण परिवार की ओर से, और खासकर लक्ष्मी जी आपकी ओर से। ऐसे बहुत दिनों से हमने आपकी हंसी नहीं सुनी है लक्ष्मी जी, क्योंकि आपका फ़ोन आता है तो आपकी आवाज़ के पहले आपकी हंसी आ जाती है, तो इंतज़ार करेंगे कि आप हमें कब कॉल करेंगी। और यहाँ पर विद्या जी हमारे साथ जुड़ी है यूनियन पार्क से, कहती है प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सभी पुराने गाने उनको अच्छे लग रहे हैं जो हम चला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए। और यहाँ पर अगला मैसेज आया है, हेलो सुमी जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर सॉन्ग सजन रे झूठ मत बोलो, आपको भी अच्छा लगा माला जी ये गाना जानकर बड़ी खुशी हुई वाकई में कुछ गानों में मानो कुछ ज़िंदगी का सार छुपा होता है, तो ये गाना भी कुछ ऐसा

सही था। तो माला जरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे रेडियो मॉरिशस हो, रेडियो मनोरंजन हो या टिकटॉक हो, आप सभी जगह हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गाना आप चित्रित्रित के सभी जरी परिवार के नाम हम करते हैं। और इस समय हमारी नर्मदा जी भी हमारे साथ जुड़ी है, ट्रैफिक में फंसी है। तो उम्मीद करते हैं कि गानों का एंजॉय करते करते आप भी अपनी मंजिल पर समय पर पहुँच जाए। तो ये गाना आप सभी के नाम।

जी हाँ, सभी के ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा, दोस्त के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, या फिर कोई साथी के रूप में, जिसके आने के बाद आपके जीवन में बहार आ गई है। तो ऐसे लोग अपने आप में हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं, बहुत ही लकी होते हैं, जिनके सामने हमें ना अपने एहसासों को बोलना पड़ता है, ना कुछ बताना पड़ता है, बिना कहे ही हमारी सारी बातों को समझ जाते हैं। और अगर ऐसे लोग हमारे

लाइफ में है तो हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं, और वहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उन्हें हर तरीके से खुश रखने का प्रयास करें, उनका सम्मान करें, उनका साथ दें, क्योंकि ऐसे लोग जब जीवन से चले जाते हैं तो जीवन बहुत उदास हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर इन गानों के ज़रिए हम उन सभी लोगों को याद कर रहे हैं जो हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से थोड़ी सी खुशी लाते हैं, और ऐसी खुशी जो जिनका एहसास हम जीवन भर करते रहते हैं। चलिए, अभी के लिए तो आप हैं हमारे लिए जो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में मानो चार चांद लग जाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना इंदिरा लौटन जी आपके नाम हम करते हैं, सुंदरपाल सिंह जी के नाम और लंदन के आपके सभी परिवारों के नाम ये गाना हम करेंगे। आप सभी को शुभ दिन, प्रेरणादायक बातें सुनकर हमें बहुत हौसला मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी दागोचिया से हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपके इन शब्दों के लिए। अगला गाना आपके नाम और आपके पूरे परिवार के नाम। आशा जी कोतेज से हमारा साथ दे रही है, आशा जानू एंजॉइंग ऑल द सॉन्ग्स, थैंक यू सो सो मच। सभी को शुभ दिन कह रही है, मामा कुमारी है, नेफ्यू है शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज, सभी जानू फैमिलीज के नाम इस अगले गाने को हम करेंगे। सुमी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनीता जी आप कैसी हैं? चलिए, हमेशा की तरह आप भी साथ दे रही हैं, गाने गुनगुनाते गुनगुनाते दिन तो सबका अच्छे से बीतता ही है, और ज़िंदगी में यकीनन सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इसके चलते ज़िंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, तो हमें भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अगला गाना आपके नाम और अनीता जी और आपके पूरे परिवार के नाम हम करेंगे। और यहाँ पर भाई माहेन हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणाम आपको भी, शुभ दिन आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद माहेन जी आपके इन सुंदर शब्दों के लिए। अगला गाना आपके नाम और सभी जगमोहन परिवार के नाम हम करेंगे। जब चले ठंडी हवा, चलिए कोशिश करेंगे, मौका मिलेगा तो इस गाने को हम ज़रूर चलाएंगे। आप हैं नारायणी जी जो लॉन्ग माउंटेन से हमारे साथ जुड़ी है। ऐसे तो ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अच्छे अच्छे गाने आपके लिए हम ज़रूर चलाएं, जैसे कि ये गाना उन सभी के नाम जो इस समय हमारा साथ दे

अजी कभी कभार आंसू जो है खुशी के भी होते हैं, कभी कभार खुशी में भी आंखें जो है नम हो जाती हैं। और चलिए अभी के लिए यहाँ पर अगला गाना जो है जाता है वीना उजागिया के नाम, इनका जन्मदिन था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वीना जी आपको शोभा जी की ओर से। और आपके बेटे की शादी थी, बेटे विपिन और आपकी बहू पल्लवी, आप दोनों को विपिन और पल्लवी नए जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां और बेस्ट विशेज आई है सभी उजागिया परिवार की ओर से, आपके मामा वीना की ओर से और वाकवा से शोभा जी की ओर से। इस समय लावेनिया से आफिस हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आफिस जी हमारा साथ देने के लिए। इस अगले गाने को आपके नाम भी हम करते हैं। शोभा जी घ्रोंगुप से हमेशा हमारा साथ देती है, तो इस तराने को हम आपके लिए भी करेंगे। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते। साधना जी रिवेदे क्रेओल से हमारे साथ जुड़ी हुई है और किचन में काम करते करते कह रही है कि पुराने गाने एंजॉय कर रही है, चलिए अच्छी बात है। गाना जाता है आपके पति देवानंद के नाम, सभी जीवन फैमिलीज के लिए और जितने भी सुनने वाले साथ दे रहे हैं ये तराना आपकी ओर से उनके लिए भी। और चलिए इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर। मिलते हैं हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। शुक्रिया।

अपन घर ही मिला जा फजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन नौकरी स्थल पर ही हिंसा, कर्मचारी लोग की कमी या सुरक्षा संबंधी समस्या के कारण बिगड़ कार्य परिस्थिति और अनुचित कार्य शर्त के लेके चिंता जतावता। पोर्ट लुइस में काल लगल एगो प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ अस्पताल में हिंसा के बढ़ल मामला की निंदा करल, खासकर हाल में सामी के एगो टीम पर ही होल हमला के लेके संघ के अध्यक्ष अमरजीत सितोहल पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाई लोग के समन्वित उपस्थिति के संगे सुरक्षा मजबूत करे के मांग करलन। एक संगे ही संघ लंबा वक्त से इस क्षेत्र में कर्मचारी लोग की कमी, वेतन के भुगतान में देरी और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में योजना के अभाव के भी उल्लेख करलक। संघ के अध्यक्ष के आधुनिकता के देने कदम बढ़ावे के और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के डिजिटाइज करे के और नौजवान लोग के ई पेशा के प्रति आकर्षित करे खातिर वेतन प्रणाली में सुधार आने खातिर भी बल दिलन। मकसद है स्वास्थ्य सेवा के संगे संगे कर्मचारी लोग और मरीज लोग की सुरक्षा वो बेहतर करे के। हजारों पुरुष, महिला और लड़का लोग एकला बेहतर जीवन की तलाश में समंदर पार कर ले रहलन जा और लोग पाछे निर्वासन, साहस और दृढ़ता से भरल इतिहास छोड़ ले रहलन जा। आज वो शर्तबन मजदूरी के विरासत दुनिया भर में शोध और चिंतन के प्रोत्साहित करेला। आज से 15 मई लिया प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड विश्वविद्यालय में इंडेंचर्ड लेबर रूट पर एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन करता। 2011, 2014 और 2017 के बाद ई एकर चौथा संस्करण है, जेकर में कई गो देश लोग के शोधकर्ता लोग और विशेषज्ञ लोग भाग लिहन जा। 3 दिन के ई सम्मेलन के अंतर्गत मॉरिशस शर्तबन मजदूरी की विरासत और समकालीन दुनिया में ओकर अनुभव और भूमिका परी विचार के आदान प्रदान और चिंतन के को केंद्र बनल रही। जहां पुलिस कर्मी लोग के हित के मुद्दा सार्वजनिक बहस के महत्वपूर्ण विषय बनल बाटे, हुए परी सरकार देने से काल खुलासा करल गल कि 63 गो पुलिस क्वार्टर्स हबी खाली पड़ल बा, कहे कि ओकर मरम्मत संभव नहीं बाटे। देश में जहां परी 608 गो पुलिस क्वार्टर्स बाटे, ओकर में से 545 गो में पुलिस कर्मी लोग के परिवार लोग रहत थवंजा। और हालांकि पुलिस कमिश्नर दफ्तर देने से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल एकर में कोनो नवीनीकरण या नवा आवास के निर्माण की कोनो विचार नहीं करल जाता। और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कीनिया

अम्मी अफ्रीका फोवर्ड 2026 के सम्मेलन में भाग लेवत हुआ हुआ परी काल कई गो राउंड टेबल की अध्यक्षता संभलन काल हुआ परी ब्लू इकोनॉमी परी होल विचार विमर्श में प्रधानमंत्री बयान देलन आर उबोलन की अफ्रीका के देश लोग के बीच साझेदारी मजबूत करे की बखत आगल बा।

0: अफवाह दर्ज न होलबा बकी WHO की प्रमुख बोलेलन कि कोनो भी बखत हालात बदले सके एकर खातिर सावधानी बरत के आवश्यकता बाटी। तय रहल भोजपुरी के समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मनी की खबर सुने जा शाये रोड मोंटाइम ब्लांश में पिछहत्तर बरिस के श्वासन कह जाओ के श्री प्रेमचंद कुलमंत जे ललित नाम से जैसी जान जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के दो बज के आधा उनकर माटी आज दिन के दो बज के आधा उनकर बेटा श्री विपिन वर्मा कुलमंत के घरे शाये थ्रोद मोंटाइम ब्लांश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोंटाइम ब्लांश के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड पेची बेले में 71 बरिस के 71 के कुमारी लोगुमानी चक्रवानन जे देवी नाम से जैसे जान जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 10 बज के आधा उनकर घरे रॉयल रोड पिची बिले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुई कि श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड क्लावेट में 68 बरिस के 74 के कुमारी अनीता कुमारी चतकन जे अनीता नाम से जस्ती जान जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर भाई श्री नवीन चटकन के घरे रॉयल रोड क्लावेट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर क्लावेट के श्मशान भूमि ले जाल जाए। कौंदेमास रोड डमेल रोज मोंटाइम ब्लांश में 42 बरिस के 52 के श्रीमती प्रेमा हरी पैदाशी नाम गोखुल जे प्रेमा नाम से जैसी जान जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पति श्री विशाल हरी के घरे कौंदेमास्क रोड मेलरोज मोंटाइम ब्लांश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेलरोज की श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 32 कौंदस लेन काथोबोन में 70 बरिस के 67 के श्री वेनी कौलेसा जी सुनील नाम से जैसे जान जात रहन और पर्यटन मंत्रालय के पूर्व उच्च अधिकारी रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के दस बजे उनकर भाई श्री अमित कौलेसा के घरे नंबर 32 कौदस लेन कथोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। सरी इंग्लैंड में 73 बरिस के 73 के श्री सूर्यदेव रीमल जे सुरेश नाम से जस्ती जान जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज मॉरिशन समय अनुसार दिन के 12 बजे उनकर पत्नी श्रीमती तारा रिमल के घरे से उठा के हुई परी उनकर अंतिम संस्कार करल जाए। नंबर 31 66 बरिस के 67 के श्री गणेश्वर नियोल जे रमेश नाम से जस्ती जान रात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर भाई श्री मनोज नेवल के घरे नंबर 31 सेंट फामी गली सेंट क्रॉस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही बोले वाली देपत के श्मशान भूमि ले जाल जाए। पावे रोड पे चिराफे में 72 बरिस के 72 के श्री ज्ञान दत्त भोला जे ज्ञान दत्त नाम से जस्ती जान जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती नलिनी भोला के घरे पावे रोड पे चिराफे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोमास्काल पे चिराफे की श्मशान भूमि ले जाल जाए। फ्लोरिडा लिंटेरूज में 76 बरिस के 76 के श्री भरत हीरामन जे जगदीश नाम से जस्ती जान जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरे फ्लोरिडा ले इंतियाहूज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बम और शौके श्मशान भूमि ले जाल जाए। शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल में 90 बरिस के 90 के श्री भगवत गोकुल जे अनिरुद्ध नाम से जस्ती जान जात रहन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घर शिवानंद एवेन्यू फ्लोरियाल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगाहा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। Stelio Telemaca

0: avenue Crétin Stanlémy, qui a l'isbaliski 41 onki Shikumar Rishnand Santokia, Shikumar Rishnand Santokia, Jigos nam se jasi jaan jathralan guzar gal hawan unkar mati aaj din ke ek baj kya tha unkar mati aaj din ke ek baj kya tha unkar bhai Shikeni Santokia ke ghare Stelio Telemak Avenue Crétin Stanlémy se utha ke antim sanskar khatir Kodogot ke shmshan bhumi le jal jai John Kennedy Street, 9000 Triolemi, 80 Bariski, 80 Anke, Shri Budhan Gangavisun, Shri Budhan Gangavisun, Je Hansraj, Namse Jasi Jan Jatralan, Aar Pahile Hindi Ke Adhyapak Rahlan, Guzar Gal Hawan, Unkar Mati, Aaj Din Ke Du Baje, Unkar Mati, Aaj Din Ke Du Baje, Unkar Patni Shmati Sheila, Takori Gangavisun Ke Khare, John Kennedy स्ट्रीट 9000 त्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तेमिनिस त्रियोले के श्मशान भूमि ले जाल जाए शोक में डूबल ई सब परिवारों के संगे हमनी की संवेदना है
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस
2: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर
3: Oh,

चलिए सुबह का नजराना के इस सेकंड आवर में, इस दूसरे घंटे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। और यहाँ पर आपको तो पता ही है, हर बुधवार को सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में एक छोटा सा क्विज लेकर हम आते हैं। कभी कोई पहेली होती है, कभी कोई छोटा सा सवाल होता है, और बड़े ही प्यार से आप इसमें हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो क्विज़ है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप संगीत की दुनिया से प्रेम करते हैं, खासकर गज़ल की बात करें, फिल्मों के गानों की बात करें, तो आज एक ऐसे शख्स की जन्म तिथि है जो ऐसे तो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं, काफ़ी गज़लें गाई हैं, और जो है, और इनके अन्य भाई भी है, वो भी गायकी से जुड़े हुए हैं। सो हमें उस गायक कलाकार का नाम बताएं जिन्होंने बॉलीवुड में तो प्लेबैक सिंगिंग किया ही है और साथ ही उन्होंने काफ़ी गज़लें भी गाई हैं। इनका जो जन्म है आज ही की तारीख 13 मई 1943 को हुआ था, और आज ये हमारे बीच नहीं है। 26 फरवरी 2024 को ये चल बसे थे। हमें इस गायक कलाकार का नाम बताएं जिनकी आज जन्मतिथि है। ऐसे गुजरात में जो है इन्होंने इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और वहीं 60 के सालों में नौकरी की तलाश में ये मुंबई आए थे। और संगीत के लिए इनका पैशन काफ़ी पहले से था। तो चलिए यहाँ पर सवाल पूछते ही जो है यहाँ पर फ़ोन कॉल आना शुरू हो गए हैं, तो

0: चलिए मिलते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार
0: जी, कौन है?
1: जी से आली है।
0: कैसे हैं आली जी?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी बिल्कुल ठीक है। और बताइए, अगर आपने हमारा सवाल ध्यान से सुना है तो जवाब क्या है?
1: मालूम नहीं, जवाब दुरुस्त रहेगा नहीं। जागीत सिंह।
0: क्या?
1: जागीत सिंह,
0: जगजीत सिंह। चलिए, आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है। आपने कोशिश की, ये बड़ी बात है। साथ जुड़े रहिए, बताएंगे कि सही जवाब क्या है।
1: बहुत शुक्रिया।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जिस गायक कलाकार का हम नाम ढूंढ रहे, इनके अन्य भाई भी जो है गायकी में अपना काफ़ी नाम बना चुके हैं, तो हमें इस गायक कलाकार का नाम बताए जिनकी आज जन्मतिथि है। ऐसे इनकी करियर की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला था। और फिल्मी गानों की बात करें तो विश्वास फिल्म जो 1969 में आई थी, आपसे हमको बिछड़े हुए, इस गाने से जो है इनको फिल्मों में गाने का मौका मिला था। इनकी आवाज़ को लोग बहुत ही पसंद किया करते थे। 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने गाना गाया है। हिंदी के अलावा गुजराती, पंजाबी, बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए हैं। 30 से ज़्यादा इन्होंने अपने एल्बम रिलीज किए हैं गज़ल और प्लेबैक सिंगिंग के। दोनों ही क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम बहुत कमाया है। एक छोटा सा हिंट और दे दे। तो चलिए, छोटा सा हिंट ये है कि 80 के सालों में इनके काफ़ी पॉपुलर गाने आए हैं, जैसे कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे हर, और फिर जाबाज़ फिल्म में भी इन्होंने कई एक पॉपुलर गाना गाया है। तो चलिए, उनका नाम हमें बताएं। हेलो नमस्कार।
2: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी, कौन है?
2: हम रमेश सिपोल फौजीसाग से।
0: रमेश जी, कैसे हैं? आपका स्वागत है।
2: हम जानते कहीं अच्छा बोला कि नहीं बहन,
0: बताइए।
2: पंकज उदास।
0: आप बहुत करीब है, पंकज उदास तो नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ये तीन भाई है तो ये इनमें से एक भाई है। तो चलिए, आपने कोशिश की रमेश जी, इसके लिए धन्यवाद,
2: बहुत धन्यवाद।
0: आपको शुभ दिन। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि सही जवाब क्या है। हेलो नमस्ते।
3: हेलो नमस्ते,
0: कौन है जी?
3: मैं इंद्रानी हूँ।
0: कैसी है इंद्रानी जी?
3: बिल्कुल ठीक, आप कैसी
0: हैं? बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या है जवाब?
3: मनहर उदास।
0: चलिए, आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है इंद्रानी जी। मनहर उदास जी का कोई गाना जो आपको बहुत पसंद है?
3: उसके सब गाने बहुत अच्छे हैं।
0: ओके, चलिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए, बताएंगे सही जवाब क्या है। एक और श्रोता से हम मिलते हैं। हेलो नमस्ते।
4: हेलो नमस्ते
0: जी, कौन है?
4: सरिता कासरबोन से।
0: कौन बोल रही है?
4: सरिता कासरबोन से।
0: कैसी है सरिता जी?
4: मैं ठीक हूँ, और आप?
0: हम भी बिल्कुल ठीक है। और बताइए क्या है जवाब सरिता जी?
4: मनहर उदास।
0: ओके, चलिए, आपके जवाब को भी हमने नोट कर लिया है। आप हमेशा साथ देती है सरिता जी, धन्यवाद।
4: धन्यवाद, शुभ
0: दिन। शुभ दिन आपको भी। चलिए, एक और कॉल। हेलो नमस्ते।
5: हेलो नमस्ते समीर जी, मैं कौतूहल से आशा जानू बोल रही हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जानू जी, और बताइए क्या है जवाब?
5: मेरे ख्याल से श्री पंकज उदास जी।
0: चलिए, आपके जवाब को भी हमने नोट कर लिया है, और साथ देते रहिए हमारा। एक और कॉलर की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
6: नमस्ते सुमी जी,
0: कौन है जी?
6: जी मैं देवी हूँ।
0: कैसी है देवी जी?
6: ठीक हूँ।
0: और बताइए क्या है जवाब?
6: तो शायद मनहर उदास जी है।
0: चलिए, आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: उनका गाना एक अभिमान में उन्होंने गाना गाया था, लूटे कोई मन का नगर
0: बन के मेरा साथी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी।
6: ठीक है या नहीं
0: बताते हैं हम आपको, ठीक है या नहीं थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पर एक जवाब आया है इंदिरा जी का। इंदिरा जी, आपका जवाब मिला हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पूछा एक ऐसे गायक का नाम जो आज हमारे बीच नहीं है। तो चलिए, जिस गायक का नाम हमने लिखा, आपने लिखा है, उसका नाम तो हम नहीं लेंगे क्योंकि वो जीवित है अभी भी। सुमी जी, आपका सवाल क्या है? माला जी, मेरा सवाल ये है कि आज एक बहुत ही पॉपुलर गायक जो है अपना जन्म, उनकी जन्मतिथि है आज, वो हमारे बीच नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोगों ने भाग लिया। बिल्कुल सही जवाब है मनहर उदास जी। मनहर उदास जी जो है गायकी की दुनिया में काफ़ी अपना नाम बना चुके हैं। 13 मई, आज ही की तारीख 1943 को इनका जन्म हुआ था, लेकिन आज ये हमारे बीच नहीं है। शायद कुछ लोग कंफ्यूज इसलिए हुए हैं क्योंकि इनके जो भाई है पंकज उदास, वो भी इसी महीने के दौरान उनका देहांत हुआ था 17 मई को, तो शायद इसलिए

दो लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो नहीं हम आज उनका नाम ढूंढ रहे जिनकी जन्मतिथि है आज, और 17 मई को पंकज उदास जी की जन्मतिथि है। तो आप सभी के साथ के लिए धन्यवाद। और मनोहर उदास जी की आवाज़ में ये जो खूबसूरत सा गाना है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, आप सबके नाम हम करते हैं। ये तीन भाई थे, तीनों ने ही गायकी की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है, पंकज उदास, मनोहर उदास और निर्मल उदास जी। तीनों का एक एल्बम भी आया था, तीन मौसम करके, वो एल्बम भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अभी के लिए ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम, और आप सबने कोशिश की इसके लिए धन्यवाद।

0: चलिए, और 8:30 बज चुके हैं और अभी के लिए समय हुआ है हम सुने कार्यक्रम परिवार नियोजन मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मिस्टर भगन, तो आइए उनको सुनते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोताओं, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है परिवार और टेक्नोलॉजी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 के संदर्भ में प्रस्तुत करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिलीज। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है और इस संदर्भ में कई प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 का थीम है परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण, यानी कि फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। वैश्विक असमानताओं के लगातार बढ़ते विस्तार को देखते हुए इस वर्ष का आयोजन इस बात पर प्रकाश डालेगा कि आय, आवश्यक सेवाओं तक पहुँच, डिजिटल कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में असमानताएं परिवारों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और बच्चों की जीवन के संभावनाओं को कैसे आकार दे रही है। लगातार बनी रहने वाली असमानताएं तकनीकी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक रुझानों के साथ मिलकर परिवारों पर बढ़ता दबाव डाल रही है और पीढ़ियों से चली आ रही अभाव के चक्रीय प्रक्रिया को और मजबूत कर रही है। परिवार सामाजिक विकास का केंद्र में है। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां जिनमें परिवार बनते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं, गरीबी के पतन, मानव पूंजी विकास, उत्पादकता और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। पर्याप्त सहायता प्रणालियों के अभाव में छोटे बच्चों वाले परिवारों को अक्सर गरीबी और में गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव बढ़ता है। जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा डिवलप होता जा रहा है और मानव इस तकनीकी उन्नति से गति मिलने में

परेशानी हो रही है, खासकर बच्चों पर असर हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे परिवार और टेक्नोलॉजी पर। परिवार सामाजिक जीवन का केंद्र है और आप अपने सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करना, शिक्षा प्रदान करना और बच्चों और युवाओं को सोशलाइज होने में सहायता करना और जवान और वृद्धों का देखभाल के केंद्र में रहता है। परिवार का एक अद्वितीय भूमिका है बच्चों की देखभाल में। जिन परिवारों में मानवीय मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ प्यार और रिस्पेक्ट को महत्व देते हैं, वहाँ बच्चे सही मार्ग पर अपना रास्ता चुनते हैं। और अगर परिवार में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं, घरेलू हिंसा, सेपरेशन, तलाक, तो इसका बच्चों पर नकारात्मक असर होता है और वे गलत संगत के चपेट में आसानी से फंस जाते हैं। बच्चे सीमेंट की तरह होते हैं, जैसे कि गीले सीमेंट पर जिस तरह के निशान आप छोड़ते हैं, वो निशान पूरी उम्र के लिए मजबूत हो जाते हैं। बच्चा वही करना और बोलना सीखता है जो उसके आसपास हो रहा है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु में बच्चे की नींव ढलती है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप माता पिता होते हुए किस प्रकार का वातावरण बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। परिवारों में टेक्नोलॉजी का सीधा असर देखा जाता है। आजकल के जीवन में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत नई चीज़ सीखते हैं और अपना काम, मीटिंग, वीडियो कॉल इत्यादि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और दूसरी ओर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल गलत परिणाम दिखा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी के बच्चे छोटे उम्र से ही मोबाइल्स का इस्तेमाल आसानी से सीख लेते हैं। बच्चे मोबाइल्स और गेम्स में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और इसके कारण अपने परिवार के सदस्यों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। और कई माता पिता भी अपने खाली समय में मोबाइल और टेक्नोलॉजी में ही होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल या मोबाइल पर चैट करना या टीवी, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देखना, और बच्चों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। कई लोगों द्वारा व्यक्त की गई एक चिंता ये भी है कि कुछ माता पिता टेक्नोलॉजी का प्रयोग बेबी सिटिंग के लिए करते हैं। अगर आप बच्चों पर निगरानी नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के स्कैम्स में फंस सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई बच्चा नखरे करता है तो उसे शांत करने के लिए माता पिता उसको मोबाइल दे देते हैं। ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। जैसे कि एक उदाहरण, आप YouTube पर देखकर एक नया व्यंजन विधि सीख सकते हैं या आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ माता पिता को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है और इन मामलों में बच्चे अपने माता पिता के मार्गदर्शन को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई मामलों में हमने ये देखा है कि बच्चे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं, छोटे उम्र में ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं या किसी व्यक्ति के साथ यौन शोषण के शिकार बन जाते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इत्यादि में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि वे अपने बच्चों पर नज़र रख सके। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत माँ बाप और बच्चों के बीच में बहुत ज़रूरी है। माँ बाप बच्चों से हर तरह की बात करने में शर्माए या हिचकिचाए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे सही ढंग से सही और गलत के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं। अगर बच्चों की किसी तरह की उत्सुकता होती है तो ये ज़रूरी है कि आप उनको पेशेंस के साथ उस विषय में खुलकर बात करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे टेक्नोलॉजी या दोस्तों से जानकारी हासिल करेंगे जो कि मिसगाइडिंग हो सकता है। ये भी देखा जाता है कि अभी ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज या एकल परिवार यानी कि सिंगल पेरेंट फैमिली है और जब माता पिता काम करते हैं तो कुछ बच्चे अकेले रहते हैं और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत हाथ में फंस जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, COVID-19 के लॉकडाउन में ये भी देखा गया था कि बहुत माता पिता घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे।

और बच्चे टेक्नोलॉजी के उपयोग से अपने क्लासेस अटेंड कर रहे थे, और अभी भी एनर्जी क्राइसिस यानी कि ऊर्जा संकट के मद्देनज़र कुछ माता पिता घर पे वर्क फ्रॉम होम करते हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। आपको ये भी पता होगा कि हाल में ही कई बच्चों ने टेक्नोलॉजी के यौन शोषण के शिकार बने थे जब उनके अश्लील फोटोज और वीडियोस टेलीग्राम नामक मोबाइल एप्लीकेशन में पाया गया था। इसका उन बच्चों पर बहुत गलत मनोवैज्ञानिक असर हुआ था। बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अश्लील फोटोज और अपने प्रेमी प्रेमिका या दोस्तों को भेजते हैं, और कुछ लोग इन फोटोज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें कि इंटरनेट पर बच्चे के साथ बहुत कुछ हो सकता है, और कभी कभी ऑनलाइन उनके लिए खतरनाक हो सकता है, और कुछ बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण, सेक्सटिंग, सेक्सटोशन, अश्लील वीडियोस देखना या अश्लील वीडियोस बनाना या स्कैम्स के शिकार बन सकते हैं। कुछ परिवारों में भोजन के समय मीडिया का इस्तेमाल लाभदायी होता है ताकि परिवार के सदस्य ज़्यादा बातचीत करें और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। कुछ परिवारों में सभी साथ टीवी देखते हैं, परिवार के लोगों में ज़्यादा संगठन होता है, पर ध्यान रखिए कि ये जब बच्चा छोटा है तब से ही शुरू करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कुछ जानकारी चाहिए तो माता पिता अपने बच्चों के साथ इंटरनेट पर उस जानकारी को ढूंढ सकते हैं ताकि वे बच्चे को समझा सके। जब बच्चा छोटा है तो माता पिता को बच्चे के मोबाइल या टैबलेट या इंटरनेट में कुछ फिल्टर्स और पेरेंटल कंट्रोल लगाना चाहिए ताकि वे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, और समय समय पर इंटरनेट हिस्ट्री चेक करते रहें ताकि आपको पता चले कि बच्चा अपने मोबाइल टैबलेट लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या कर रहा है, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। और इसका भी ध्यान रखें कि बच्चा सिर्फ निश्चित समय के लिए ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, ना कि पूरे दिन। उसके समय सारणी में एक्सरसाइज, पढ़ाई, पारिवारिक समय इत्यादि शामिल करना चाहिए। परिवार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने खुद का पारिवारिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का उपयोग करें, सीमा निर्धारित करें और बच्चों में प्ले टाइम को प्रोत्साहित करें। स्क्रीन टाइम हमेशा अकेले रहने का समय नहीं होना चाहिए। एक अच्छा रोल मॉडल बने, आमने सामने बातचीत का मूल्य जाने, अपने सबसे कम उम्र वाले बच्चे को डिजिटल यूज सीमित करें। घर पर कुछ टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स बनाएं, जैसे कि खाना खाते समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। टेक्नोलॉजी को इमोशनल पासीफायर के रूप में उपयोग ना करें। बच्चों के पढ़ाई में सहायता के लिए कुछ मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल लाभदायी हो सकता है। आपका किशोर का ऑनलाइन होना ठीक है, पर कुछ सीमा निर्धारित करें। बच्चों को गोपनीयता का महत्व बताएं और ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि सेक्सटिंग, साइबर बुलिंग के खतरों के बारे में बताएं। याद रखें कि बच्चे बच्चे ही रहेंगे, इसीलिए उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे ड्रॉप इन सेंटर जो बच्चों पर यौन शोषण यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, बाल वेश्यावृत्ति या किशोरी गर्भावस्था के शिकार बच्चों की हम सहायता करते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे सेंटर से संपर्क बना सकते हैं, जो कि स्थित है मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन, लारी दे फोर्स, पोर्ट लुइस, या आप हमें इन नंबरों में कॉल कर सकते हैं 2089233-2114101। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।

0: तो चलिए अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार नियोजन मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मिस्टर भगन ने, उनको हम धन्यवाद देते हैं।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: होगा। ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: चलिए यहाँ पर देखते ही देखते सवेरे के 8:50 ऑलरेडी हो चुके हैं और अब बारी है हमारी धरोहर इस प्रोग्राम की। चलिए इसे सुनते हैं हम किरण जानकी जी से।
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। ई सप्ताह हमने लाबुदोने के नाम काफ़ी ले ली सा और बात करात रही सा लाबुदोने के शक्कर प्रतिष्ठान के। तो चला आज माई दो लाबुदोने पर बतियाई जा, देखी जा उनकर कौन भूमिका रहा हमने के देश में। माई दो लाबुदोने मॉरिशस में पहला विकास आने होला गवर्नर रलन। उनकर स्टैच्यू प्लस दम में आप हमेशा देखेला। तो चला देखे कि उनकर योगदान ई देश के विकास में कितना बा। आज तक उनकर बनावल कितने इमारत हमने के देश के राष्ट्रीय धरोहर में भी गिनल जाला। बेथों फ्रांसवा माई दो लाबुदोने जिनकर जन्म 1699 में हो रहा और देहांत 1753 में, उ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एगो फ्रेंच नावल ऑफिसर रलन, मतलब समुद्री ऑफिस और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर रलन। लाबुदोने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में लियोटिनों फिर कैप्टन बनलन और मलाबा कोस्ट पर चढ़ाई करके कब्जा करत रलन, जेकर बाद उ शहर के नाम माए रखा गल। 2 बरिस तक उ पोर्चुगीज वाइसरॉय रलन। 1735 में उ मॉरिशस जोन की उ बखत के इल दे फ्रांस से जानल जात रहल हियाँ गवर्नर बनलन और इल बूबो रेनियन आइलैंड के भी हियाँ के 5 बरिस के उनकर प्रशासन बहुत ही सक्रिय बहुत ही सफल रहल। 1744 में उ मद्रास इंडिया में उ सैनिक अभियान शुरू करलन। पौंडिचेरी के गवर्नर से उनकर द्वंद्व शुरू हो गल और 1746 में उनकर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिश्वत लेवे के आरोप लगावल गल और 3 बरिस तक उनकरा कैद करके रखा गल। 1742 में सेशल्स आर्शिपेलागो के मुख्य टापू के उनकर नाम देवल गल। 1806 में फ्रेंच जनरल देकों मॉरिशस के मेबर्ग नाम माई दो लाबुदोने के श्रद्धांजलि के रूप में दिलन। मापू गांव के करीब रिविया जुआपा जिला में जहां उ रहत रलन हुआ पर उनकर नाम पर शाते दो लाबुदोने के नाम देवल गल और ओके म्यूजियम में आज बदल देवल गल बा और उ डोमेन के डोमेन दो लाबुदोने बोलल जला। पोर्टलुई के प्लस दाम में लाबुदोने की स्टैच्यू 1859 में बनावल गल। क्योपिप में एगो स्कूल के नाम रखा गल बा लिसे दो लाबुदोने 1953 में और हियाँ फ्रांसीसी करिकुलम के आधार पर ही पढ़ाई होवेला। लाबुदोने अपन गवर्नरशिप के तहत मॉरिशस में सड़क के निर्माण करवेलन, पोर्टलुई के इमारत के निर्माण करवेलन, जेकर में सबसे महत्वपूर्ण है मिलिट्री हॉस्पिटल जोन आज भी बंदरगाह के भीरी वैसे ही बा और स्लेवरी म्यूजियम में परिवर्तित हो गल बा। गवर्नमेंट हाउस, पॉम्पलुमुस के बोटानिकल गार्डन, शातो मोंप्लेजिया, पाउडर मिल, बंदरगाह, पोर्टलुई के अलग अलग इलाका में कनाल के निर्माण,

0: और फोर्ट फिर बतरी के निर्माण ये सब लाबुदो ने ही करवाई ले रलन और उ मोजाम्बिक मारागास्कर से 10 लोग के अनलन यहाँ पर रहे होला सेटलर्स लोग भी यहाँ पर रहे होला लोग भी एक गेहूँ चाउर कॉटन कॉफी इंडिगो के सब प्रोतासियों करत रलन सा और पॉम्पलेमूस में जो पहला फैक्ट्री के निर्माण करा गल वो भी उनकर ही द्वारा होलबा और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उलाबुदो ने ही रलन जे पौंडीचेरी से स्किल्ड लेबर्स लोग के मॉरिशस अनलन और यहाँ पर जो 10 लोग रलन सा वो लोग के ई स्किल्ड वर्कर्स लोग जो लोग दक्षिण भारत से अलन सा ये सब 10 बनावा गल लोग के वो लोग प्रशिक्षित करलन सा और बतेलन सा कि कैसे निर्माण कार्य पत्थर से होवेला पत्थर के साथ साथ लाशों के साथ भी कार्यक्रम के ध्यान से सुन लो बहुत धन्यवाद लेंदी के फिर मिलब जा नमस्ते
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर

तो चलिए अभी हम हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को सुन रहे थे किरण जानकी जी से, इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और एक भोजपुरी गीत, और इसी के साथ आज का हमारा सुबह का नजराना प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जाते जाते आप सभी का दिल से धन्यवाद आपके प्यार भरे साथ के लिए, और यूं ही रेडियो मॉरिशस से जुड़े रहिएगा। 9 बजे आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। आपको याद दिला दे, इस प्रोग्राम का जो है सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप देख पाएंगे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी। तो आज की चर्चा इस कार्यक्रम में ज़रूर जुड़िएगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी 10 बजे भक्ति धारा इस प्रोग्राम में। तो तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

रे, का भइल हो? बड़ी दुख बेटा नटलक नहीं हो, तब बहु मरलक नहीं हो।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। तेरह मई और बुधवार का दिन, आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है अदिति। नमस्ते अदिति।
2: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का स्वागत। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कल कई राउंड टेबल चर्चाएं चली। 7 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श चला, जिसमें से एक ब्लू इकोनॉमी रहा। इस राउंड टेबल की सह अध्यक्षता सेशल्स के राष्ट्रपति और मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने संभाली। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में मध्य पूर्व में तनाव की समुद्री यातायात और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीकी महाद्वीप अपने महासागरों की स्थिरता पर निर्भर हैं और ऐसी स्थिरता जो कि उनके अनुसार वर्तमान में इस संघर्ष से हिल रही है। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस द्वारा स्थापित किए जाने वाले सागर द्वीप समूह के समुद्री संरक्षित क्षेत्र और सेशेल्स के साथ मस्कारेंस के एक हिस्से के संयुक्त प्रबंधन का भी उल्लेख किया। दोनों देश मिलकर जैव विविधता और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का सह प्रबंधन करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन नौकरी स्थल पर हिंसा, कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों और अनुचित कार्य शर्तों को लेकर चिंता जता रहा है। पोटली में कल लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ ने अस्पतालों में हिंसा के बढ़ते मामलों की कड़ी निंदा की, खासकर हाल में सामी की एक टीम पर हुए हमले को लेकर। अध्यक्ष अमरजीत सीतोहल पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाइयों की समन्वित उपस्थिति के साथ सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही संघ ने लंबे समय से इस क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी, वेतन के भुगतान में देरी और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में योजना के अभाव का भी उल्लेख किया। हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे कभी बेहतर जीवन की तलाश में समंदर पार कर गए थे और अपने पीछे निर्वासन, साहस और दृढ़ता से भरा इतिहास छोड़ गए थे। आज भी शर्तबंद मजदूरी की विरासत दुनिया भर में शोध और चिंतन को प्रोत्साहित करती हैं। आज से 15 मई तक अप्रवासी घाट स्वन मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये इसका चौथा संस्करण होगा, जिसमें कई देशों के शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका और ईरान के बीच कायम कमजोर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल की तरफ से लेबनान पर हमले जारी हैं। दक्षिणी प्रांत में एक इसराइली रॉकेट हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 पैरामेडिक्स शामिल बताए जाते हैं, जबकि इसराइली सेना ने इस हमले को अंजाम देने की पुष्टि नहीं की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ, ज्ञा दीजिए नमस्कार।
3: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का और MBC 3 पर हमारे सभी दर्शकों का, साथ ही साथ फेसबुक पेज फॉलोअर्स का, आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आ पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं, आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस एक घंटे के सफ़र में जुड़ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बुधवार का दिन है, 13 तारीख, मई महीना, और मौसम के परिवर्तन के साथ कार्यक्रमों में भी बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं जहां पर हम स्वास्थ्य संबंधित बात तो ज़रूर करते हैं, पर साथ ही साथ आज हम बात करेंगे नर्सेज के बारे में, क्योंकि मनाया जा रहा है वर्ल्ड नर्सेज डे, यानी विश्व नर्स दिवस, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। और नर्सेज का कार्य कितना कठिन होता है, कितना चुनौती भरा होता है, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। और आज के इस कार्यक्रम के साथ हमारी अतिथि हैं श्रीमती कविता बोगरिक जी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की नर्सिंग ऑफ सुपरवाइज़र हैं। जी हाँ, नर्सिंग सुपरवाइज़र हैं और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते कविता जी।
2: नमस्ते रत्ना जी,
1: और आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे विश्व नर्स दिवस के अवसर पर, तो आज हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि विश्व नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है।
2: जी हाँ रत्ना जी, हम विश्व नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाती है, क्योंकि इस दिन मॉडर्न नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर, के उपलक्ष्य पर हम ये दिवस मनाती है।

0: हम नर्सेस इस दिन को बहुत बहुत मीनिंगफुल मानते हैं, क्योंकि हमें इस दिन के समर्पण हमें अपने करुणा सेवा और स्वास्थ्य सेवा के अमूल्य योगदान के सम्मान देना होता है।
1: बिल्कुल
0: और मैं यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि वे सेवा के सबसे फाउंडेशन के लिए उसने बहुत कुछ किया है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में। आप जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर टू में 1874 में जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो ज़्यादातर बहुत सोल्जर्स घायल हुए थे। तो सेवा भाव के साथ वो उन्हें अपने सेवा प्रदान कर रहे थे। तो वे उन्हें और लेडीज़ लेडीज़ के लिए, नर्सेज लेडीज़ के लिए, उन्हें लेडीज़ लैब के सेक्रेट में ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित हुए थे। तो वो क्या करती थी उस दिन, जब सोल्जर्स ट्रीटमेंट के बाद सोने लगते थे, तो वे बहुत साइलेंस से अपने लैंप लेकर उन सोल्जर्स को जाकर ऑब्जर्व करती थी। तो उसने बहुत कुछ किया है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में। जैसे कि वो इवॉल्व हुए थे एक ऑक्यूपेशन से, और उसने बहुत जोर डाली है कि ये ऑक्यूपेशन एक प्रोफेशन में बदल जाए। और इसके लिए उन्होंने नर्सिंग काउंसिल को और रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल के दरमियान के दौरान उसने ट्रेनिंग पर बहुत जोर डाली, नर्सेज के ट्रेनिंग में। और जब नर्स ट्रेन हो जाती है, जैसे कि मॉरिशस में हम 3 इयर्स ट्रेनिंग करते हैं, तो उस समय ट्रेनिंग दिया जाता था डिप्लोमा यूएसए में नर्सिंग के लिए। तो क्या हुआ था, ट्रेनिंग के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन मिला नर्सिंग काउंसिल के दौरान। और जब एक ऑक्यूपेशन एक प्रोफेशन में बदलते हैं, तो उनके साथ अकादमिक क्वालिफिकेशन यानी कि ट्रेनिंग होता है,
1: बिल्कुल
0: रजिस्ट्रेशन होता है नर्सिंग काउंसिल में, और उनको एक सैलरी भी देती है।
1: तो देखा जाए तो नर्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा योगदान है मेडिकल साइंस को, क्योंकि मैं समझती हूँ एक डॉक्टर अकेले वो काम नहीं कर
0: नहीं,
1: पाते, इसीलिए उनको एक सहयोग मिलना बहुत ही
0: बहुत ही ज़रूरी है।
1: ज़रूरी है।
0: और मैं आगे कहूँगी कि नर्सेस जो है वे नर्सिंग केयर में, पेशेंट केयर में
1: जी
0: कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करती है। वे डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करके हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी केयर प्रोवाइड करती है। और जैसे आपने अभी कहा है कि इस साल की टीम है, आप जानते हैं हर साल नर्सेस डे पर एक अलग से टीम रखा जाता है
1: जी
0: WHO के दौरान।
1: या
0: तो क्या हुआ, ये इस साल का थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। इस थीम का इस बात पर जोर देता है कि अगर नर्सेस को सही ट्रेनिंग, सपोर्ट और एक सुरक्षित वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और एक हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर सकती है।
1: बिल्कुल, जैसे आप बता रही हैं कि एम्पावर करना है
0: एम्पावर,
1: नर्सेज को, और जिस तरह से लोगों की जान बचाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि रात भर यानी ड्यूटीज़ उनकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, हमें ऐसा लगता है कि भाई 12 घंटे की या 8 घंटे की जो शिफ्ट होती है उसमें आपको काम करना है, लेकिन नर्सेज की जो ड्यूटी है वो केवल वहाँ जाके पेशेंट्स की देखभाल नहीं करना, उनके साथ साथ उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ

0: है, जो उन्हें याद रखनी है, जो उन्हें ठीक तरह से निभानी है, और ऐसे माहौल में नर्सेस को भी वो सम्मान मिलना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए विश्व नर्सेस दिवस मनाया जाता है। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कविता जी से कि कविता जी, स्वास्थ्य की को जैसे स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है नर्सेस को, यानी बैकबोन ऑफ द हेल्थ सिस्टम, तो ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: रत्ना जी, हम नर्सेस के को हेल्थ केयर सिस्टम के बैकबोन में से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि हम नर्सेस 24/7 नर्सेस पेशेंट्स के साथ होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हम कंटिन्यूस नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं
0: जी,
1: और इसके साथ हम डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। हम इंश्योर करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट सेफ्टी, और हमें हेल्थ केयर सिस्टम के सबसे मजबूत सपोर्ट बताया जाता है, इसलिए कि हम जब 24/7 काम करते हैं तो हम दिन रात पेशेंट्स की सेवा में लगे रहती है, और इसके साथ साथ हम केयर कोऑर्डिनेशन करते हैं। हम डे टू डे हॉस्पिटल के फंक्शनिंग में काम में करते हैं, क्योंकि हमें ये एक सिर्फ एक जॉब नहीं होती है,
0: सही
1: है। हम इसके साथ साथ कंपैशनेट केयर भी प्रोवाइड करते हैं, और पेशेंट के फिजिकल नीड के साथ साथ हम उनके इमोशनल नीड्स को भी
0: पूरा करते हैं। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप सोचिए परिवार से जब दूर रहते हैं तो हमें एक कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी उतनी ही ज़्यादा ठीक तरीके से देखभाल करे, संभाल दे, और साथ ही साथ इमोशनली हमको एम्पावर कर सके, साथ ही साथ हमारे शारीरिक रूप से हम जिस तकलीफ से जूझ रहे हैं उसके लिए आप हमें पूरी तरह से हेल्प करें, सहयोग दें। और जैसे नर्सेस का काम होता है कि सभी पेशेंट्स को सही समय पर सही जैसे उनकी देखभाल करना, उनको ठीक तरह से दवाइयाँ देना, उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करना। और जैसे हम कहते हैं कि लगभग देखा जाए तो नर्सेस का काम डॉक्टर से ऑलमोस्ट पैरेलल होता है, पर ये जानना भी ज़रूरी है कि डॉक्टर की भूमिका और नर्स की भूमिका में अंतर क्या होता है।
1: जी हाँ रत्ना जी, हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स और नर्सेस एक बड़े इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है।
0: ट्रू।
1: हम नर्सेस डॉक्टर्स की कोलैबोरेशन करते हैं और केयर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लेकिन दोनों के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती है। जैसे डॉक्टर्स वो डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट प्लान बनाती है, और ट्रीटमेंट प्लान के बाद वे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, और डिस्चार्ज प्लानिंग भी करते हैं। और जहाँ तक नर्सेस के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे मैंने अभी कहा है, हम पेशेंट को कंटिन्यूस केयर मॉनिटरिंग करते हैं 24/7 रात दिन, और इसके अलावा हम डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम सेफ्टी जैसे वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट होती है टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी, हम इस पर ज़्यादा जोर डालते हैं, और ये प्रायोरिटी है कि हम हेल्थ एजुकेशन भी करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल भी करते हैं जिससे कि ज़्यादा रिकवरी होते हैं, और हम हेल्थ एजुकेशन पेशेंट्स को देते हैं, और हम फैमिली थेरेपी भी करते हैं, जैसे जिससे कि जब पेशेंट को डिस्चार्ज होता है तो कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जैसे वो रिलेटिव्स उनके सपोर्ट में रहते हैं, चाहे वो घर में।
0: बिल्कुल, क्योंकि मैं समझती हूँ खाली जो पेशेंट है उनके तक सीमित नहीं होता, उसके साथ ओवरऑल आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि नर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है।
1: नर्सेस के सबसे बड़ी चुनौती में है कि हमें हमें

0: पेशेंट केयर सेफली, टाइमली और इफ़ेक्टिवली प्रदान करना है। इसके अलावा चुनौती ये भी होती है कि हमें बहुत एक, आप जानते हैं ये नर्सिंग प्रोफेशन जो है, इस वर्किंग एनवायरनमेंट में ज़्यादातर बहुत प्रेशर होता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि वर्कलोड बहुत होता है और स्टाफ शॉर्टेज जो होता है उससे प्रेशर बहुत
1: बढ़ जाता है।
0: तो हमें ये सब मैनेज करना पड़ता है चुनौती के एग्जांपल में।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और हमें इमोशनल नीड जैसे एम्पैथी और पूरे ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये चुनौती होती है कि अगर हम इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में और स्टाफ शॉर्टेज इंक्रीज वर्कलोड के साथ क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा ये भी चुनौती होता है कि हमें पेशेंट्स और रिलेटिव्स को भी मैनेज करना पड़ता है। और कई कई बार तो ये भी हुआ है कि वर्कप्लेस वायोलेंस जैसे होता है कभी कभी, हर हॉस्पिटल में होता है। तो हमें ये सब मैनेज करके इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा और भी चुनौती होते हैं, इनके रिजल्ट्स जैसे कि स्टाफ शॉर्टेज होता है, ये इंक्रीज वर्कलोड होता है, तो हमारे नर्स पेशेंट के रेशियो बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम टाइमली सर्विस प्रदान नहीं कर पाती है,
1: जैसे वो एक तरह का तनाव बढ़ जाता है,
0: स्ट्रेस बढ़ जाता है।
1: और ऐसे स्ट्रेस में आपको सब कुछ मैनेज करना है
0: और क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो क्या होता है रत्ना जी, हम नर्सेज में ये कूट कूट कर भरा हुआ है कि हमें क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना
1: आपको है, तैयार किया गया
0: है, हमको ट्रेन किया गया
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: इन वर्षों में
1: सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए,
0: और हमें इस प्रोफेशन में माउंट किया गया है कि हमें क्वालिटी केयर देना ही है।
1: बिल्कुल,
0: चाहे वो शॉर्टेज स्टाफ के एनवायरनमेंट में है, चाहे वर्कलोड बढ़ गया है, हमें तो क्वालिटी केयर देना ही पड़ता है, बिकॉज वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी।
1: सही बात है। और जैसे जहाँ पर आपको पेशेंट्स के साथ डील करना है, हर किस्म की बीमारियों के साथ डील करना है, हर किस्म की इमोशंस के साथ डील करना है।
0: और मैं यहाँ एक चुनौती के एग्जाम्पल मैं ज़्यादा बात करना चाहती हूँ कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम सिर्फ केयर नहीं देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसके साथ साथ हम मानसिक सपोर्ट भी करते हैं,
1: मोरल सपोर्ट देना, मानसिक
0: मोरल इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को ज़्यादातर अधिक लाभदायक बनाते हैं, जिसमें पेशेंट्स की रिकवरी ज़्यादा होती है, उन्हें लेंथी टाइम में रिकवर नहीं करना पड़ती है। तो हम इन चुनौतियों के बावजूद हम क्वालिटी केयर पर ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं।
1: जब आप शॉर्टेज की बात कर रही हैं तो मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, क्या मॉरिशस में नर्सेज की जो मात्रा है वो संतोषजनक है? और अगर नर्सेज की मात्रा इनफ नहीं होती तो स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा पर जैसे उसका कैसा प्रभाव पड़ता है?
0: मैं तो यही कहूँगी कि हमारे मॉरिशस हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सेज की मात्रा उतनी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ज़्यादातर हर हॉस्पिटल में, स्पेशली स्पेशलाइज हॉस्पिटल में और मेंटल हेल्थ केयर सेटिंग्स में ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलता है। और जैसे आपने पूछा है, हाँ, हमारे शॉर्टेज के बावजूद हम हेल्थ केयर प्रोविजन 24/7 करते हैं, रात दिन करते हैं, इसी इंक्रीज वर्कलोड के साथ हम ये मैनेज कर पाते हैं कि हमें क्वालिटी केयर देना चाहिए। और अगर इसके प्रभाव ज़्यादातर

0: नर्सेस के काम में इंटरफियर करती है, तो हमारे पास सपोर्टिव स्टाफ भी है जो हमको असिस्ट करती है कि हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर
1: तो
0: सके।
1: कभी ऐसा भी होता है कि जब नर्सेस की शॉर्टेज हो जाती है तो आप लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है?
0: ज़्यादातर हमें ओवर टाइम करना पड़ता है, लेकिन अगर हम ओवर टाइम के बारे में देखते हैं तो क्या होता है, नर्सेस डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ, क्योंकि हम पेशेंट्स को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते
1: सही
0: हैं,
1: बात, सही बात है,
0: हमें हमें केयर देना है,
1: बिल्कुल।
0: क्वालिटी वाइज देना है, तो नर्सेस की मांग बहुत ज़्यादा होती है। ये विश्व भर में
1: बिल्कुल।
0: मैंने कुछ रिसर्च किया है कि वर्ल्ड वाइज
1: हाँ
0: 6 मिलियन नर्स
1: हाँ
0: की कमी होती है,
1: बिल्कुल, जैसे
0: और हम हर साल
1: जी।
0: इसका लगातार मांग होती हुई है कि हमें नर्सेस को रिक्रूटमेंट करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन ये
1: इसके
0: ट्रेनिंग,
1: बावजूद भी
0: हाँ
1: उतना उतना
0: उतना,
1: सेटिस्फेक्शन नहीं
0: हाँ
1: मिलता,
0: क्योंकि ये ट्रेनिंग ही 3 इयर्स
1: बिल्कुल
0: थ्री
1: बिल्कुल
0: इयर्स में कंप्लीट होता
1: कंप्लीट होता
0: है,
1: है।
0: में कंप्लीट होता है। तो ये कहने का मतलब है कि मैं कहना चाहती हूँ हम नर्सेस को स्टाफ शॉर्टेज और वर्क इंक्रीज वर्कलोड को ना देखते हुए हमें मजबूत रहना चाहिए कि हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकती है, और यह इस कमी के वजह से हमें ज़्यादातर जोर डालना चाहिए ट्रेनिंग पर, रिक्रूटमेंट पर और नर्सेस रिटेंशन पर।
1: और मैं कविता जी आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर्स को ओथ दिया जाता है, ओथ लेने के लिए उनको उनके मेडिकल जब ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है तो उनको ओथ लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो क्या नर्सेस में भी ऐसा होता है कि उनको भी ओथ लेना पड़ता है?
0: हम नर्सेस को ओट्स नहीं लेना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ बहुत डिटेल से आपको जानकारी और पब्लिक को जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारी ट्रेनिंग 3 इयर्स होती है, और इस 3 इयर्स में मानिए कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जब हम नर्सिंग प्रोफेशन में दाखिल होते हैं,
1: जी
0: एप्लीकेशन होते हैं,
1: जी
0: तो हम नर्सिंग स्टूडेंट्स के रूप में ज्वाइन करती है,
1: जी
0: और जैसे कि मैं 19 साल में
1: नर्स बनी,
0: ज्वाइन
1: हाँ
0: मैं नर्सिंग स्टूडेंट से ज्वाइन
1: ओके
0: कर से ज्वाइन हुई थी,
1: हाँ
0: तो इस 3 इयर्स में हमें इस प्रोफेशन के प्रोफेशनल वैल्यूज़ में मोल्ड करती है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर हमारे बच्चे होते हैं 19-20 साल में कॉलेज जब छोड़कर इस प्रोफेशन में दाखिल होती है,
1: जी
0: तो हमारे ओरिएंटेशन एक कॉलेज स्टूडेंट के जैसे होते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: हमें इस प्रोफेशन में क्या एक्सपेक्टेशन होता है, हम प्रोफेशनल वैल्यूज़ को रिप्लेस करती है, केयरिंग वैल्यूज़ को इस स्टूडेंट में कूट कूट कर भरती है,
1: बिल्कुल
0: क्या कि वो ताकि वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके
1: ट्रू,
0: 3 इयर्स के बाद।
1: बिल्कुल सही है।
0: तो ये हम नर्सेस में मैं सोचती हूँ कि विश्व भर के नर्सेस में ये गुण होती है कि हमें एक प्रोफेशनल कैसे
1: तैयार होना
0: इमेज,
1: है, बिल्कुल
0: हमारी प्रोफेशनल इमेज कैसे दिखना
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: बिल्कुल
0: हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज़ हम पर रिफ्लेक्ट करने चाहिए
1: ट्रू,
0: इस सेवा भाव में।
1: बिल्कुल
0: अगर हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होती है तो हम केयरिंग प्रोफेशन में
1: कभी
0: काम
1: नहीं
0: नहीं कर
1: काम कर
0: सकते,
1: सकते, सही
0: क्योंकि हम ह्यूमन लाइव्स
1: को
0: को
1: हैंडल करते हैं,
0: हैंडल करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये ना एक पीस ऑफ पेपर नहीं है कि गलती हो गई तो हम इसे फेंक देते हैं,
1: नहीं, बिल्कुल
0: क्योंकि
1: ये बहुत सेंसिटिव है,
0: ये वेरी वेरी सेंसिटिव है।
1: बिल्कुल
0: तो हम 3 इयर्स लगा लेते हैं कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को कैसे प्रोफेशनल वैल्यूज देते हैं,
1: जी
0: और इसके साथ साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज देते हैं इन 3 इयर्स में, ताकि वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके।
1: बिल्कुल। और जैसे हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स का प्रोफेशन जितना चैलेंजिंग होता है उनसे भी कई ज़्यादा मैं समझती हूँ नर्सेज का प्रोफेशन भी उतना ही चैलेंजिंग, क्योंकि साथ ही साथ उनको डॉक्टर्स

के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर काम करना होता है, इंस्ट्रक्शंस में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और जैसे कविता जी बता रही हैं कि हम इंसान की ज़िंदगी के साथ काम करते हैं, जहाँ पर छोटी भी गलती हुई तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और नर्सिस की ज़िंदगी, नर्सिस का काम हमारी सेवा संस्थाओं में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। और आज का दिन वर्ल्ड नर्सिस डे समर्पित है विश्व की सभी नर्सिस को, क्योंकि आज के दिन को हम याद करते हैं उन महान आत्मा को जिन्होंने इस प्रोफेशन को बनाया है एक बहुत अहम प्रोफेशन, जहां पर अपने सेवा भाव को लेकर आप लोगों की सेवा करते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करते हैं। चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में वर्ल्ड नर्सिस डे पर और चर्चा जारी रखेंगे।

0: रेडियो मॉरिशस पर, और हम आपको याद दिलाते चले, इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। इस वक्त हमारे साथ जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक जुड़े हैं, हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे। इस वक्त हमारी टेक्निकल टीम पर हमारे साथ है फिजान जी, और हमारे साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरूसा, साथ ही साथ हमारी प्रोड्यूसर शीतल जी जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रही हैं। और इसी के साथ, जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती कविता बोगरीत जी, जो कि नर्सिंग सुपरवाइज़र है स्वास्थ्य मंत्रालय से, यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि नर्सेज के लिए, नर्सेज की ड्यूटी में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कविता जी से।
1: जी हाँ रत्ना जी, नर्सेज की ड्यूटीज़ कॉम्प्रिहेंसिव होती है। बहुत सारे रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, फंक्शंस होती हैं। मुख्य तौर पर हम पेशेंट्स को बेसिक नर्सिंग केयर देती है। बेसिक नर्सिंग केयर यानी कि हम हेड टू टू होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ हम कंफर्ट भी देती है। और नेक्स्ट ड्यूटी होती है, हम वाइटल साइंस को लेते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, पल्स, रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग करते हैं, और हम डॉक्टर्स के इम्प्लीमेंट के केयर प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड कलेक्शन होते हैं, इन सब को केयर कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं। और हम एक स्वच्छ एनवायरनमेंट को भी प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जाए। तो जैसे कि बेड स्पेसिंग होती है, और हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाए। और इसके अलावा हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और हम फैमिली थेरापी काउंसलिंग भी करते हैं, और इमोशनल नीड्स के, जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल में साइकोथेरापी भी करते हैं, फैमिली थेरापी भी करते हैं, और हम केयर कोऑर्डिनेशन करके मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ कोलैबोरेशन करके हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं।
0: और कविता जी, आपके प्रोफेशन में सेवा भाव कि क्या अहमियत है, क्योंकि आप जब से बोल रही हैं कि सेवा होना चाहिए, वो अगर फीलिंग नहीं है, आप पैशनेट नहीं हैं इस प्रोफेशन को लेकर, तो आगे चलकर आपको मुश्किलें खड़ी हो सकती है, आपको भी और होने वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी। तो आपके प्रोफेशन में सेवा भाव क्यों आवश्यक है?
1: रत्ना जी, मैं कहूँगी कि जैसे मैं कह चुकी हूँ कि नर्सिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक प्रोफेशन होती है जो पेशेंट केयर और कंफर्ट पर बेस्ड होती है, जिसे हम सब मिलजुल के हम कंपैशनेट केयर बोलते हैं। ये कंपैशनेट केयर क्या होता है? इसकी फाउंडेशन सेवा भाव से होती है। अगर हम में ये केयरिंग फीलिंग नहीं होती है, तो हम पेशेंट को फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूँगी कि सेवा भाव ही नर्सिंग की फाउंडेशन होती है। अगर सेवा भाव नहीं होती है, तो हम पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट दे पाती है, लेकिन केयर और सपोर्ट नहीं दे पाती।
0: बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि होलिस्टिक अप्रोच होता है आपका, तो होलिस्टिक अप्रोच के लिए वो भाव होना बहुत आवश्यक है। ये केवल एक पेशा नहीं है, ये केवल एक काम नहीं है, एक कंपैशनेट प्रोफेशन है, जहाँ पर आपको इमोशनली भी उसका बहुत ध्यान रखना है। पर बहुत सारे लोग समाज में ये सोचते हैं कि नर्स केवल इंजेक्शन लगाती है, तो मैं पूछना चाहूँगी कविता जी, इस सोच पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं कहूँगी रत्ना जी कि ये सोच बिल्कुल गलत और इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम नर्सेज, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हम नर्सेज पेशेंट के केयर में कंटिन्यूसली 24/7 दिन रात काम करती है, उनको सेवा देती है, और ये सिर्फ इंजेक्शन

0: चन लगाना नहीं होती है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हम ट्रीटमेंट के प्लान इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और ट्रीटमेंट के प्लान में क्या होता है कि हमें बेसिक केयर नर्सिंग प्रदान करना होता है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है जो डॉक्टर्स के द्वारे हमें दिया जाता है, और हमें सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि कंपैशनेट केयर में आती है कि मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इस सब कार्य के बाद जैसे कि क्या होता है, हमें ये एम्पैथी से लेकर जानना चाहिए कि जब एक रिलेटिव्स अपने चाहे वो बच्चा होता है चाहे वो बुज़ुर्ग होते हैं अपनी क्लोज रिलेटिव को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होता है?
1: बिल्कुल,
0: वो उन्हें इस मरीज़ को इसकी दर्द, उनके तकलीफ़, उनके डिस्कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए हम फिज़िकल और इमोशनल नीड्स प्रदान करते हैं। और इसके अलावा हमें रिएश्योरेंस रिलेटिव्स को भी देना चाहिए क्योंकि वे एक तरह की होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस फील करके वो देखते हैं कि हम केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल के द्वारे उनके क्लोज रिलेटिव्स को केयर प्रदान करने चाहिए।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक मानसिक तनाव बना हुआ है, एक मानसिक लड़ाई के साथ वो जूझ रहे हैं। तो
0: हमें ये सोचना चाहिए हम नर्सेस को, वो वे कर नहीं पा रहे हैं तो कितने ट्रस्ट के साथ वे अपनी क्लोज संबंधियों को हमारे
1: भरोसे
0: छोड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं भाव के साथ, हमें उनको केयर देना चाहिए। और जैसे आप बोल रहे थे कि सिर्फ इंजेक्शन लगाना रहा, मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अब डॉक्टर्स ने तो ट्रीटमेंट प्लान लिख कर दे दिया हम पर, हमको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि वो तुम्हारे आप नर्सेस के निगरानी में रहेंगे, हमें कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो हमें कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए, आप नॉर्मलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करके हम अगर पेशेंट के स्वास्थ्य में कुछ डिटेरियोरेशन देख रहे हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर्स को
1: इन्फॉर्म
0: करना होता है कि पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट हो रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द पेशेंट को केयर देकर उसकी जान बचाना सकते। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो होते हैं ये हम पर निर्भर होते हैं, वो डॉक्टर पर नहीं होते हैं।
1: तो आपको कंप्लीट केयर उस टाइम पर आपकी जिम्मेदारी होती है, जो भी चेंजेस आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो आपको उनको इन्फॉर्म्ड रखना
0: है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर हम प्रोफेशनल कॉन्शियंस लेके अपने काम पर नहीं जाते हैं तो हम अपने बेस्ट कैपेबिलिटीज पर काम नहीं कर सकते।
1: कविता जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी शिफ्ट चेंजेस होती हैं, मतलब आपके बाद आप मान लीजिए एक मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं जो जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और मान लीजिए आपकी जैसे ही ड्यूटी शिफ्ट होती है और जो नर्स आ रही हैं उनको उनकी कंडीशन के बारे में नहीं पता होता, तो क्या आपको उनको भी ब्रीफ करना होता है उनकी कंडीशंस के बारे में?
0: जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हम, क्योंकि हमें टेकिंग ओवर और हैंडिंग ओवर चार्ज करना पड़ता है। इसके लिए हमें 15 मिनट्स दिया जाता है, जिससे कि हम जो नर्सेस आ रहे हैं या जा रहे हैं हैंडिंग ओवर के दौरान या टेकिंग ओवर चार्ज के दौरान, हमें हर एक मरीज को विस्तार से उनको उनके ऑब्जर्वेशन के उनके कंडीशन में सब कुछ बताना करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ केयर मेंटेन करना पड़ता है। और इस बात पर लेकर मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि

0: अगर लोग सोचते हैं कि नर्सेस सिर्फ इंजेक्शन देते हैं, तो और फिजिकल केयर के अलावा इमोशनल नीड्स भी प्रदान करते हैं, इमोशनल सपोर्ट और रिएश्योरेंस भी प्रदान करते हैं। और मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रोफेशन में, जैसे कि मुझे लगभग 40 साल होने को है इस प्रोफेशन में, तो आप जानते हैं कि वो कितना इमोशनल टैक्सिंग मोमेंट होती है जब हम डाइंग पेशेंट के केयर में होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस मोमेंट में, चाहे वो 1 आवर होती है,
1: कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए,
0: कुछ सेकंड्स के लिए, कौन उसके पास होती है
1: सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एक ऐसी मोमेंट जहां पर आप एक ऐसे हेल्पलेस सिचुएशन से निकल रहे हैं, जहां आप उनको बचाना चाह रहे हैं पर बचा नहीं पाते हैं,
0: बचा नहीं पाते हैं क्योंकि
1: उनकी क्रिटिकल कंडीशन,
0: उनके क्रिटिकल इस जब जब जब ये डाइंग मोमेंट्स होते हैं, डाइंग पेशेंट्स होते हैं, तो हम नर्सेस की ये ड्यूटी होती है, हमारे ड्यूटी ऑफ केयर जिसे कहते हैं, हम उनके साथ होते हैं। उनके पास ज़्यादातर रिलेटिव्स नहीं होते हैं,
1: बिल्कुल
0: उनके संबंधियों नहीं होते हैं, तो हम नर्सेस होते हैं, तो हम नर्सेस उनके साथ अबंधन नहीं करते हैं, उनके पास रहते हैं, उनको सुनते हैं, चाहे वो बोल नहीं पाते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, उन टच टेक्निक करके, उनके हाथ होल्ड हर करके, उनके अंतिम क्षण तक हम उनके साथ होते हैं। तो ये डाइंग केयर जो होती है, ये सिर्फ नर्सेस प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ 24/7 दिन रात होते हैं।
1: इमोशनली आप उनके साथ, जैसे उनको आप देख रहे हैं, हाँ, एक साथ फिजिकली आप उनको वो केयर भी दे रहे हैं, हाँ, और मेंटली आप उनको जैसे एक तरह से सांत्वना दे रहे हैं, उनको रिलैक्स कर रहे हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, जहाँ पर एक तरह फैमिली साथ नहीं है पर
0: हम उनके साथ होते हैं, क्योंकि हमें ये बताते हैं या ये ट्रेनिंग देते हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो, हम पेशेंट को अबंडन नहीं करते हैं उनके अंतिम क्षण तक
1: आप उनका साथ दे रहे हैं। तो कविता जी, मैं पूछना चाहूँगी, क्या कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है हॉस्पिटल्स में नर्सेज के साथ कई बार बहुत ज़्यादा बदसलूकी होती है, बहुत सारे तरीके से बहुत बुरी तरीके से बात की जाती है, तो क्या ये आसान होता है सिचुएशंस को हैंडल करना? क्योंकि कई बार होता है कि आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा है, या कई बार ऐसा होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति है, और हर इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है, मानसिक जो वो कैपेबिलिटी होती है, वो सेम नहीं होती है, तो क्या आसान होता है नर्सेस को इन सभी सिचुएशंस के साथ डील करना?
0: जी हाँ, हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज है, जिस स्किल्स है, जिससे हम इन सिचुएशंस को मैनेज कर पाते हैं। जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स होते हैं कि वो इंटरपर्सनल स्किल्स करते हैं, कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, कि हर सिचुएशन में हम जानते हैं, हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते कि हमारे एनवायरनमेंट बहुत तनाव में गुजरता है, हर दिन एक चैलेंज होता है।
1: सही बात,
0: हर दिन एक चैलेंज होते है, इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं, पब्लिक को मैनेज करना पड़ते हैं, रिलेटिव्स को मैनेज करना पड़ते हैं, तो हमें ये हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करते हैं। अगर हम हमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमें एक काल्म एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होनी चाहिए, हमें चाहे जिस स्थिति भी हो सकता है, कि जैसे कि रिलेटिव्स नाराज हो रहे हैं, कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो हमें काल्म एटीट्यूड अडॉप्ट करके हमें लिसन करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, उनको वो जानकारी देना कि हम है यहाँ पर, उनके प्रॉब्लम्स को लिसन करके, और हम कुछ करेंगे,
1: उनको ये आश्वासन
0: देते हैं कि हम कुछ करेंगे कि उसके सिचुएशन को और ज्यादा
1: कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में तनाव वाली सिचुएशन खड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, आपातकालीन स्थिति के सिचुएशन आ जाती है, तो

0: उन ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करती हैं?
1: यह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, हमें कॉल्म रहना चाहिए, हमें हमें कॉल्म रहना, हमें हमारी टीम को असेंबल करना है, हमें प्रिपेयर होना है हमारी टीम को कैसे हर सिचुएशन, हर इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसे हम क्या कोऑर्डिनेशन करते हैं, और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को भी अलर्ट होना है कि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ हम अपने टीम को जैसे वो एक लीडर होता है हर टीम में इमरजेंसी सिचुएशन करने के, उस लीडर पर सब निर्भर होता है, उसे कॉल्मली इफेक्टिवली और टाइमली केयर देना पड़ता है अगर इंसान को की जान को बचाना पड़ता है। तो इसके साथ साथ स्किल्स होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, कोऑर्डिनेशन स्किल्स होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होता है, और इसके अलावा हमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी मैनेज
0: इस्तेमाल करना है।
1: और मैं यहाँ और ज़्यादा जोर डालूँगी कि हर इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्वालिटी केयर को
0: प्रमोट करना ही
1: होता है अगर हम इंसान की जान बचाना चाहती है।
0: बिल्कुल। तो कविता जी, मेरा अगला प्रश्न यही होगा, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट फिनिश कर लेते हैं, जब अब पेशेंट घर जा रहे हैं, तो उनको दवाई देने से पहले कौन सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है?
1: हमें दवाई देने के लिए एक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे कॉन्शियस माइंड होते हैं कि हमें पेशेंट सेफ्टी को और मेडिकल एरर्स को प्रिवेंट करना चाहिए। तो हम ये कैसे करते हैं, हमें ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमें दवाई देने से पहले हमें फर्स्ट पेशेंट्स के नेम जानना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी नंबर चेक करना पड़ता है, जाने की सही नेम, सही पेशेंट, सही नेम और सही दवा यानि कि मेडिकेशन, उसके एक्सपायरी डेट, उसका नाम जो होता है, अच्छी तरह से चेक करके सही दवा सही टाइम पर देना चाहिए, सही डोज पर देना चाहिए। और इसके अलावा हमें हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करना पड़ता, अगर कोई भी डिफिकल्टी, अगर कोई भी कंफ्यूजन होते हैं, तो हमें जैसे कि फार्मेसी होते हैं, डिस्पेंसर होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट करके तब कंफ्यूजन हटा के 100%, क्योंकि हमें पेशेंट सेफ्टी मेडिकेशनल एरर्स प्रिवेंट करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर गलती होते हैं तो इंसान की पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये हम करते हैं, और दवाई देने से पहले हम काउंटर चेक करते हैं, डबल चेक करते हैं एक नर्सेस के साथ कि अच्छा है, यही देनी चाहिए, और मेडिकेशन की इंटेग्रिटी भी देख चेक करना पड़ता है कि अगर किसी तरह से वो कैसे चीर जाते हैं, ये पेपर जो होते हैं
0: इंटेक्ट होते हैं अपने जो भी दवाइयों के कागजात होते हैं,
1: और फाइनली जस्ट बिफोर गिविंग एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन हमें प्रेस्क्रिप्शन के साथ लेकर
0: चेक
1: करके डबल चेक करके तब हम मेडिकेशन
0: दे सकते हैं।
1: इस तरह से हम इंश्योर करते हैं पेशेंट सेफ्टी और प्रिवेंट करते हैं मेडिकेशन
0: जरूर। कविता जी, हम जरूर जाना चाहेंगे वर्ल्ड नर्सेस डे, जो विश्व नर्सेस दिवस 12 मई को मनाया गया, क्या हमारे मॉरिशस में कोई ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। हमारे इस दिवस पर 12 मई को विभिन्न गतिविधियों को मनाया जाता है, क्यों जो हमारे जो संस्था है हॉस्पिटल्स में पहले होता है नर्सेस डे को मनाया जाता है, और डिफरेंट एसोसिएशंस यूनियंस के दौरान ये भी विभिन्न गतिविधियों जैसे कि एक्टिविटीज़ होते हैं, क्विज होते हैं, इससे कंपटीशन होते हैं, और

0: जो रिटायरमेंट के अप्रोच करते हैं तो उन्हें रिकॉग्निशन सम्मान करके उन्हें अवार्ड देती है और जैसे और संगीत भी आयोजन करते
1: मतलब
0: हैं
1: पूरा उनके लिए उनके सम्मान में एक एंटरटेनमेंट
0: एंटरटेनमेंट भी तो ये ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं एक्टिविटीज़ पर ट्रेनिंग पर वर्कशॉप पर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं और रिकॉग्निशन करते हैं नर्सेस को जिन्होंने कई वर्ष लगा दिया है और रिटायरमेंट
1: अपने अपने पूरे जीवन का मतलब जितना योगदान उन्होंने दिया है सेवा संस्था को इसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। हम लगभग आज के इस कार्यक्रम के समाप्ति तक आ पहुँचे हैं। कविता जी, आप हमारे श्रोताओं को कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे?
0: पहले तो मैं हमारे नर्सेस को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ जो जूनियर नर्सेस है अभी अभी दाखिल हुए हैं हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में कि हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के से इंस्पायर होके क्वालिटी केयर कंपैशनेट केयर प्रोवाइड करना चाहिए। अगर हम 19, 20, 30% भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से इंस्पायर होके क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे प्रोफेशन मीनिंगफुल हो जाते हैं। और मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि हम नर्सेस हम इन नर्सिंग प्रोफेशन के और स्वास्थ्य मंत्रालय में हम बहुत कुछ बहुत कार्य करते हैं। हम पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हम उनके फिजिकल इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स और अर्ली रिकवरी में बहुत मदद करते हैं। तो हमें अपने सोच बदलना चाहिए कि अगर हम नर्सेस को उसके सम्मान करते हैं, उनकी सेवा के लिए योगदान के लिए हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं तो हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए पब्लिक को कि आपकी इलाज आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति भी होती है। तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है आपके लिए और हमारे लिए भी। तो मैं यही कहूँगी कि पब्लिक को बिना कोई हिचकिचाहट जब इलाज के लिए हम हॉस्पिटल के साथ उनकी हेल्प मांग सकते हैं और मेंटल हेल्थ के लिए स्टिग्मा रखना नहीं चाहिए। हमें ज़रूरी से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमें इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए और हम अगर एक स्वस्थ समाज और एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर को सामने रखते हैं तो ये एक स्वस्थ समाज और एक मजबूत समाज की पहचान होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आज के इस कार्यक्रम में, और हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उनको हम हृदय की गहराई से बहुत बहुत सम्मान प्रकट करते हैं। और सच में नर्सेस डे, वर्ल्ड नर्सेस डे जो मनाया गया 12 मई को, इसी पर ये आज का कार्यक्रम आधारित था। हमारी टेक्निकल टीम पर हमारा साथ दिया फैजान जी ने, प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा, और हमारी प्रोड्यूसर रही शीतल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शकों ने, जितने भी श्रोताओं ने हमारा साथ दिया, आप सभी को हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो चलिए आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देकर आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे। अगले कार्यक्रम में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: स्टूडियो में आगे उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कल कई राउंड टेबल चर्चाएं चली। 7 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श चला, जिसमें से एक ब्लू इकोनॉमी रहा। इस राउंड टेबल की सह अध्यक्षता सेनेगल के राष्ट्रपति और मॉरिशन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने संभाली। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने अपने उद्घाटन भाषण में मध्य पूर्व में तनाव की समुद्री यातायात और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीकी महाद्वीप अपने महासागरों की स्थिरता पर निर्भर हैं, और ऐसी स्थिरता जो उनके अनुसार वर्तमान में इस संघर्ष से हिल रही है। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस द्वारा स्थापित किए जाने वाले शागोस द्वीप समूह के समुद्री संरक्षित क्षेत्र और सेशल्स के साथ मास्कारेंस के एक हिस्से के संयुक्त प्रबंधन का भी उल्लेख किया। दोनों देश मिलकर जैव विविधता और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए 10,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन करेंगे। हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे कभी बेहतर जीवन की तलाश में समंदर पार कर गए थे और अपने पीछे निर्वासन, साहस और दृढ़ता से भरा इतिहास छोड़ गए थे। आज भी शर्त बन मजदूरी की विरासत दुनिया भर में शोध और चिंतन को प्रोत्साहित करती है। आज जैसे 15 मई तक आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये इसका चौथा संस्करण है, जिसमें कई देशों के शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 3 दिनों के सम्मेलन के अंतर्गत मॉरिशस शर्त बन मजदूरी की विरासत और समकालीन दुनिया में उसकी भूमिका पर विचारों के आदान प्रदान और चिंतन का केंद्र बनेगा। जहां पुलिस कर्मियों के हित का मुद्दा सार्वजनिक बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, वहीं सरकार की तरफ से कल खुलासा किया गया कि 63 पुलिस क्वार्टर्स फिलहाल खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी मरम्मत संभव नहीं है। देश भर में पाए जाने वाले 608 पुलिस क्वार्टर्स में से 545 में लोग रह रहे हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर दफ्तर की तरफ से प्राप्त जानकारियों के अनुसार फिलहाल इनके नवीनीकरण या नए आवास के निर्माण की किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आश्वासन दिया है कि एमवी होंडियस क्रूज जहाज से यात्रियों को निकाले जाने के बाद हंता वायरस का कोई वृहद फैलाव दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन WHO के प्रमुख का कहना है कि किसी भी समय हालात बदल सकते हैं, इसलिए सावधान रहना अनिवार्य है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 13 मई, घड़ी मिला लीजिए दिन के 10:04 होने को है। भक्ति गीतों के कार्यक्रम भक्ति धारा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सुमिता की ओर से प्रणाम स्वीकार करें, आप सभी का हृदय से अभिवादन, और जहां कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं हमारे साथ भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बता दें कि आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। श्रोताओं, भक्ति गीतों का ये जो कार्यक्रम है, कभी कभार ऐसा होता है कि आजकल हम जीवन में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, है ना। हर एक बात के लिए हमारे पास एक ही जवाब होता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास काम बहुत है। लेकिन समय निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। समय तो एक दिन में सभी को समान रूप से 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन उस 24 घंटे में कितना समय हम किस कार्य को देते हैं, हर एक व्यक्ति पर ये व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है। यानी कि आपके लिए, आपके काम के लिए 8 घंटे हैं, परिवार के लिए कुछ घंटे हैं, अपने लिए कुछ घंटे हैं, अन्य

अपने जो है चीज़ों के लिए कुछ घंटे हैं, तो इस तरह से अपने दिन को हमें जो है बांट लेना चाहिए, अहमियत देनी चाहिए अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को, अपने परिवार को और अपनी सेहत को। परिवार के साथ समय बिताना इसमें सबसे बड़ी बात होती है। समय के साथ हम देखते हैं कि परिवारों में काफ़ी दूरी आ गई है। परिवार के साथ मिलकर एक

परिवार के साथ मिलकर पूजा प्रार्थना करना, परिवार के साथ मिलकर संध्या का पूजा करना, ये सारी बातें हमारे जीवन में यदि धीरे धीरे हम जोड़ने लगते हैं तो एक तरह से हम परिवार से जुड़ते हैं, एक तरह से हम अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखा पाते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि 24 घंटे में कितना समय हम किसे दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। तो चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ आज के इस भक्ति गीत के कार्यक्रम भक्तिधारा का आरंभ हम करते हैं भगवान गणेश का नाम लेते हुए।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: कहते हैं ईश्वर तो हमारे एक पुकार पर चले आते हैं, किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं हमारी सहायता के लिए। हमें ईश्वर को पहचानना होता है और कभी कभार हम ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, है ना, होता है ऐसा। चलिए अभी के लिए 10:15 बज चुके हैं, विनय अंजलि इस कार्यक्रम की ओर हम बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में।
0: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
2: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम विनय अंजलि का शुभारंभ करेंगे मुकेश के गाए हुए एक मधुर गान से। कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। आप इस भजन का रसास्वादन।

श्रोताओं, आज का संदेश आधारित है यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 17वें मंत्र पर। मंत्र इस प्रकार है, ओम तनुपा अग्नेयसि तनुवम में पाहि पाह्यायुर्दा अग्ने श्यायुर्मे देहि वर्चोदा अग्नेयसि वर्चो मे देहि अग्नेयन मे तनुव उनम तन्म आप्रण। इस मंत्र का देवता है अग्नि और ऋषि है तनुपा। आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि ये अग्नि स्वरूप परमात्मन, आपने ही मुझे यह शरीर दिया है, आप ही इसकी रक्षा करने तथा कराने वाले हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस शरीर की रक्षा कीजिए। हे अग्नि, आप ही आयु देने वाले हैं, मुझे आयु दीजिए। हे जान का प्रकाश देने वाले प्रभु, आप अग्नि स्वरूप है, मुझे प्रकाश दीजिए। मुझ में जो कमी है उसकी पूर्ति कीजिए। मेरे अंदर भद्र गुणों को भर दीजिए। श्रोतागण, जैसे अभी हमने बताया कि इस मंत्र का देवता अग्नि है। अग्नि के दो रूप हैं, एक रूप भौतिक है और दूसरा रूप आध्यात्मिक। भौतिक अग्नि से हम काम लेते हैं, दिया जलाते हैं, चूल्हे में ये अग्नि दिखाई देती है,

या भौतिक अग्नि है, और दूसरी अग्नि है आध्यात्मिक, आत्मा और परमात्मा। दोनों अग्नियों से हमें प्रकाश मिलता है, ये अग्नियां हमें प्रकाशित करती हैं। संसार में मनुष्य बहुत कुछ पाना चाहता है, वह चाहता है कि आकाश के सभी तारे तोड़ लाए और अपना घर भर ले। यह कोई बुरी बात भी नहीं है और न यह असंभव ही है। तारे तोड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कठिन से कठिन कामों को करना, तरह तरह के कार्यों को करने के लिए प्रेरणाएं तरह तरह की मिलती हैं, परंतु उन प्रेरणाओं से वही लोग लाभ उठाते हैं जिनमें अग्नि तत्व प्रज्वलित रहता है। ऐसे लोग छलांगें मारकर आकाश को छू लेते हैं, अग्नि के समान हमेशा ऊपर उठते जाते हैं, और जिनकी अग्नि ठंडी हो जाती है वे अधोगति पतन के ही दर्शन करते हैं। श्रोताओ, अग्निदेव परमात्मा कण कण में समाकर जड़ चेतन दोनों को ही उष्णता यानि गर्मी दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। उन्होंने पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, औषधि, वनस्पति, पशु पक्षी, कीट पतंग, मानव दानव सबको अग्नि दी है, जिसने इस अग्नि को ठीक तरह से रखा, प्रकाशमान बनाकर रखा, और जिसने इसे बुझा दिया वह तो ठंडा हो गया, परंतु जिसने नहीं बुझाया वह प्रकाशित होता रहा, बुझा देने वाला कोयला बन गया, अपना अस्तित्व खो बैठा। सर्वसाधारण को यह पता है कि अग्नि तत्व के निकल जाने से शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर मुर्दा बन जाता है। अग्नि के कारण ही यह समय चल रहा है, कालचक्र चल रहा है, परिणाम स्वरूप मनुष्य अपनी आयु का भोग कर रहा है। इस संपूर्ण आयु में चलते चलते मनुष्य अपने लिए क्या नहीं बटोर लेता है। किसी का भंडार सुख से भर जाता है तो किसी का दुख से। इस मंत्र में अग्नि स्वरूप परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे हमें प्रकाश के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दें, ताकि हमारा मानव तन निरोग होकर कार्यरत रहे, काम में लगा रहे। फूलों को चुनने की चाह में चलते चलते यदि मार्ग में पड़े कांटे भी चुभ जाएं, तो मुस्कान के साथ उसका भी स्वागत करने की शरीर में शक्ति बनी रहे। श्रोताओ, इस मंत्र के प्रथम अंश में कहा गया, तनुपा अग्नेयसि तनुम में पाहि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, मेरे शरीर की रक्षा कीजिए। आपका नाम तनुपा है, शरीर की रक्षा करने वाले हैं। शरीर को तनु कहा गया, तनु का अर्थ है फैलना। हम मानव शरीर पाकर तरह तरह के कार्यकलाप करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा तन के समान, शरीर के समान फैल जाना चाहते हैं। मनुष्य एक माली है जो फूलों के बीज बोता है, उन बीजों में फूल निकलने तक न जाने कितनी मेहनत करता है, जब कलियां निकलती हैं तब उनकी रक्षा में लगा रहता है, फिर सुगंधित फूल खिलते हैं। जब कोई किसी फूल को तोड़ना चाहता है तब वह उससे उलझ जाता है, उसे भगाकर दम लेता है। श्रोताओ, जब मृत्यु जीवन रूपी फूल को तोड़ने आती है तब हम उसे ललकार कर भगा देना चाहते हैं। हम कहते हैं, हे मृत्यु, तेरा मार्ग देवयान का मार्ग नहीं है, उन्नति का मार्ग नहीं है, मेरी फुलवारी में क्यों आना चाहती है, मैं तो

अपने अग्नि स्वरूप परमात्मा से आयु पाने की प्रार्थना करता हूँ। तू मेरी फूलों जैसी आयु को क्यों लूट लेना चाहती है? जब तक मेरे अंदर आत्मा रूपी अग्नि विद्यमान है, तू मेरी कोई हानि नहीं कर सकती। श्रोताओं, प्रार्थना की जाती है आयुर्दा अग्नेयसी आयुर्मे देही, अर्थात आयु को हे प्रभु मुझे आप प्रदान कीजिए। आयु रूपी सुंदर सा, सरल सा, सुगंधित सा फूल मेरी जीवन बगिया में खिला दीजिए। श्रोतागण, आयु शब्द का एक विशेष अर्थ है। आ का मतलब है संपूर्ण, सारा। यु का मतलब है गमन करना, चलना, प्राप्त करना आदि। एक श्लोक के एक अंश में कहा गया, जीवन नर भद्र शतानि पश्यति। जीवित अवस्था में मनुष्य अनेक प्रकार के कल्याण की बातों पर विचार करता है। वह जानता है कि जीवन एक संग्राम है, जो इसमें जीतता है वह दुनिया पाता है। कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, यह पृथ्वी वीरों द्वारा ही भोगी जाती है। कमजोर आदमी जल्दी ही पस्त हो जाते हैं, आत्मिक बल ही मनुष्य को आगे ले जाता है। आत्मा अग्नि है, यही अग्नि हमारे शरीर के अंग अंग की रक्षा करती है। यह ईश्वर की तरह सर्वव्यापक बनकर सभी शरीरों में व्याप्त हो रही है, सब में अपना अधिकार जमा कर बैठी है। जब तक यह अग्नि शरीर में विद्यमान है, तब तक मृत्यु इस आयु को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यदि आत्मा में संकल्प की अग्नि जलती रहे तो आदमी कभी निर्बल नहीं होता। जिस तरह यज्ञ की अग्नि को तीव्र करने की घृत की आहुतियां दी जाती है, उसी तरह संकल्प की अग्नि को शुभ कर्मों से प्रज्वलित बनाए रखना चाहिए, तभी यह आयु प्रकाशित होती है। श्रोतागण, आयु को पुंडरीक भी कहते हैं, क्योंकि यह परम पवित्र है। संकल्पाग्नि व्यक्ति को कल्याण पथ का प्रतीक बनाती है। मनुष्यों की दृष्टि में वही आयु सार्थक मानी जाती है, जिसमें शुभ कर्मों की सुगंध होती है। जो आयु देवत्व की ओर ले जाए, उसी की हम कामना करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं अग्नि अर्थात पुंडरीक अर्थात परम पवित्र आयु हमें प्राप्त हो। इस यजुर्वेदीय मंत्र के दूसरे चरण में कहा गया, वर्चो दाग्नेयसी वर्चो में देही। वर्चा का अर्थ है कांति, शोभा, शक्ति, तेज आदि। जिसके अंदर वर्चा होता है वह तेजस्वी होता है, प्रकाशित रहता है। जब तक धरती पर सूर्य का प्रकाश है तब तक दिन है, सूरज के डूबते ही रात आकर दबोच लेती है। जब तक सूर्य में ज्योति है तब तक कोई उसे आंखें नहीं मिला सकता। इसी उपनिषद में कहा गया, तत् त्वं भूषण अपावृणो, हे सूर्य तू अपनी ज्योति को थोड़ा समेट ले। इसी प्रकार मृत्यु रूपी रात हर पल चौकट पर खड़ी रहती है और कहती है, हे आत्मन तू अपनी वर्चस्विता को बटोर ले ताकि मैं तेरे अंदर घुस सकूं। जिस प्राणी के अंदर तेज होता है वह कहता है, हे मृत्यु तू भाग जा, अभी मेरे अंदर तेज है। आत्मा कहती है कि मैं तेजस्वी हूं, मृत्यु की आंखें बहुत कमजोर है, वह आत्मा की अग्नि से आंखें नहीं मिला पाती। जिस तरह अग्नि में हाथ डालने वाला अभागा जल जाता है, वैसे ही आत्मा की अग्नि में मृत्यु जल जाती है। भक्त ने अग्नि रूपी परमात्मा से प्रार्थना की, हे अग्नि आप मुझे वर्चस्विता देकर मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, अपने तेज से

मुझे तेजस्वी बना दीजिए। इस मंत्र की अंतिम कंडिका में कहा गया अग्ने यन्मे तन्वा उनम तन्मा प्रिण, यानी हे परमात्मन मेरे तन में जो कमियां हैं उन्हें आप पूरा कर दीजिए, मन की शक्ति दीजिए, बुद्धि का बल बढ़ा दीजिए, शरीर में ताकत दे दीजिए। वही शरीर सुंदर है जिसमें तेज है, जिसमें कमी हो, किसी अंग में निर्बलता हो, वो अच्छा नहीं होता। आँखों में दिखाई देने की शक्ति ना हो, कान में सुनने की शक्ति ना हो, जीभ से स्वर न निकले, तो वह किस काम की। इस कमी को दूर करने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। यजुर्वेद का यह मंत्र प्राण फूंकने वाला है। इसका निरंतर मनन करने से शरीर मन की शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक और आत्मिक बल बढ़ता है, निराशा की घटा दूर होती है और आशा की किरण दिखाई देती है। जीने की इच्छा होती है, कामनाओं की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं और आत्मारूपी अग्नि को परमात्मा रूपी पुंज से जोड़ देते हैं। इस तरह हम इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। आशा है आपने इससे लाभ उठाया होगा और इस कार्यक्रम में साथ दिया श्री कुमार रामा जी, उनके प्रति हमारा आभार। आपने सुना, धन्यवाद। अंत में आप एक मधुर गीत सुनेंगे और हमें विदा देंगे, फिर मिलेंगे।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति धारा, डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद।

के 10:36 हो रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं, धन्यवाद। श्रोताओं, कहते हैं कि जीवन में जो है हमें कभी कभार ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारे सही गलत के बीच में चुनने में हमारी सहायता करते हैं, जो हमें अच्छे और बुराई की सीख देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनको हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, अचानक से कहीं आ जाते हैं और हमें राह दिखाने लगते हैं, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर के ही भेजे हुए होते हैं या ईश्वर के ही रूप होते हैं जो बस कहीं से आ जाते हैं और हमारी सहायता करने लगते हैं। और ऐसी सारी चीज़ें जब हमारे साथ होती है तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद ही होता है जो हमें किसी न किसी रूप में मिल रहा होता है। तो इसलिए जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं से अगर ईश्वर पर विश्वास है, आस्था है और ईश्वर के प्रति निष्ठा है, तो ईश्वर जो है किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए।

जो हम में नहीं है या जो औरों में है उसे अपने आप में ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अपने आप में संपूर्ण संपन्न बनाया है। सभी में कोई ना कोई अच्छाई है, सभी में कोई ना कोई खूबी है। हमारे भीतर जो गुण है उसे हमें उभारना चाहिए और उसके द्वारा हमें भी अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल हमें औरों से सीखना चाहिए, औरों से प्रेरित होना चाहिए, लेकिन औरों के जैसा बनने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर अवश्य हम चलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में अपने गुणों के लिए जाना जाता है, अपने कर्मों के लिए जाना जाता है।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, कहते हैं जो हो गया उसे सोचकर जीवन में रुको नहीं, जो आने वाला है उसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास करो। कहते हैं हमारा जीवन जो है हर रोज़ एक नए पन्ने के समान होता है जिस पर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। बस मन में आशा होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, तो जीवन में कुछ भी कभी भी असंभव नहीं होता है। और असंभव में भी जो है जीवन की संभावनाएं छुपी होती हैं। तो बस हमें प्रयास करते रहना चाहिए, रास्ते खोजते रहना चाहिए, अंधकार से दूर हटते हुए प्रकाश को ढूंढ ही लेना चाहिए। कभी कभार हमें सहायता के लिए कोई नहीं मिलता है, हमारा हाथ थामने के लिए या हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं मिलता है। उस समय अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, फिर जो भी मार्ग होता है वो कहीं ना कहीं ईश्वर ही दिखाते हैं और उस मार्ग पर हमें सदैव चलाते रहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे गणेश चालीसा की ओर और आज के कार्यक्रम के लगभग अंत तक हम पहुँच गए हैं। इसी के साथ जो है भक्ति धारा यह कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और फिर सैदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को।

0: के अंतर्गत कल कई राउंड टेबल चर्चाएं चली। 7 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श चला, जिनमें से एक ब्लू इकोनॉमी रहा। इस राउंड टेबल की सह अध्यक्षता सेनेगल के राष्ट्रपति और मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम ने संभाली। अपने उद्घाटन भाषण में डॉ नवीन रामगुलाम ने मध्य पूर्व में तनाव के समुद्री यातायात और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप के बीच सहयोग और घनिष्ठ किए जाने की मांग की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन नौकरी स्थल पर हिंसा, कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी चर्चाओं समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों को लेकर चिंता जता रहा है। पोर्ट लुइस में कल लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ ने अस्पतालों में हिंसा के बढ़ते मामलों की कड़ी निंदा की, खासकर हाल में सामू की एक टीम पर हुए हमले को लेकर। संघ के अध्यक्ष अमरजीत सितोहल पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाइयों की समन्वित उपस्थिति के साथ सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही संघ ने लंबे समय से इस क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी, वेतन के भुगतान में देरी और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में योजना के अभाव का भी उल्लेख किया है। संघ के अध्यक्ष ने आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को डिजिटाइज करने और नौजवानों को इस पेशे के प्रति आकर्षित करने के वास्ते वेतन प्रणाली में सुधार लाए जाने पर बल दिया। आज से 15 मई तक प्रवासी घास ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये इसका चौथा संस्करण है। 3 दिनों के अंतर्गत इस सम्मेलन में मॉरिशस शर्तबंद मजदूरी की विरासत और समकालीन दुनिया में उसकी भूमिका पर विचारों के आदान प्रदान और चिंतन का एक केंद्र बना रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, फ्लोरिडा में जंगलों में लगी आग भीषण तरीके से फैल रही है, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। और अभी तक दूसरे दिन के लिए 7,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन पर जंगल जलकर राख हो गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 6 अडोल्फ रोलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में, नंबर 6 अडोल्फ रोलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में 73 साल की 73 इयर्स ओल्ड श्रीमती राधा सूर्या, श्रीमती राधा सूर्या पैदाशी नाम गणेश, जो मानती पवेश योगा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे, के पति श्री विवेक जय सूर्या के मकान नंबर 6 अडोल्फ रोलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोलंबिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 1 PM। रॉयल रोड पर्स डिफ्लैक में, 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री नवींद्र सोनाराम, जो विनोद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12:15 इनके मकान रॉयल रोड पर्स डिफ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीमाउंग पर्स डिफ्लैक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:15। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: दिन के 11:05 आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। जिब्रेल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, जिब्रेल के खासकर कौं बुलेल यहाँ पर और आसपास के गलियों में और इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 14 मई को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति CEB की ओर से।
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों में आपका स्वागत। अदिति आगे स्टूडियो में, नमस्कार।
1: नमस्कार विकास श्रोताओं को भी नमस्कार। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन

और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हों। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनों सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह

और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा और अल्लाह बहुत वुसत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर ना हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहां तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत यानी माल देकर परवाना आजादी की तहरीर चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो, और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी बांदियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना, और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बिचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चराग है और चराग एक किंदील में है और किंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खा आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है, बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।

वो किंदील उन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहां अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और जकात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त। वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी डरते हैं ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता फरमाए और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है।

और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी ना पाए और अल्लाह ही को अपने पास देखे।

या उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे, जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके, और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती।

0: क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है, और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है।
1: सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। खुदा की रहमत का हर जगह असाया है, हर सुख उसकी ज़ात से पाया है, ये सब उसका करम है, हम गुनाहगारों ने अपने रब को मनाया है। हर कोई रहता है उसके साए में, हर शख्स उसके क़ुर्ब में समाया है, जो दिलों के हाल से खूब वाकिफ़ है, ये सब उसकी रहमत का साया है। उसकी बंदगी सब पर लाजिम है, उसका ये फरमान कुरान ने समझाया है।

मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:37 हो चुके हैं। बुध का दिन है और मई की आज 13 तारीख है और माहे ज़िलक़द की आज 24 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए ये हमें अपने पैगामात भेज सकते हैं। हज का मौसम है, जा रहे हैं काफ़ले ए अल्लाह। हज का मौसम है, जा रहे हैं काफ़ले ए अल्लाह। हम पर भी करम कर दे, हो जाए हमारी भी हाजिरी। हम पर भी करम कर दे, हो जाए हमारी भी हाजिरी।

तेरे इन दरबार का मंगता हूँ मदीने वाले, भरते झोली ए अलम नशरा के सीने वाले। मुझको सरकारे मदीना ही अता करते हैं, मेरे गमख्वार हैं रहमत के खजीने वाले। हश्र के पुल से वो बेखौफ गुजर जाएंगे, जामे कौसर तेरे हाथ से पीने वाले। कितने खुशबख्त नसीबों के सिकंदर हैं वो लोग, इश्क़े सरकार में मरने और जीने वाले। कोई कतरा नहीं तूफान की तुगयानी का, कैसे डूबेंगे मोहम्मद के सफीने वाले। मौज़े सामीन, अब जो कलाम आप समाअत फरमाएंगे, इसकी फरमाइश हमसे की है सैंपल से रिहाना और रियाज ने। आइए समाअत फरमाइए।

मौजे समीन इस कलाम की फरमाइश की थी सैंपल से रिहाना और रियाज़ ने तमाम हाजियों के लिए जो के हज पर जा रहे हैं और वो हज की मुबारकबाद भी उन्हें पेश कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम मरहूमीन के लिए भी दुआए मगफिरत की गुजारिश की है। और न्यू गोव की फातिमा हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं। इसके अलावा नुतखदाम से नाजमा महबूब और नासिर ने भी एक कलाम की फरमाइश हमसे की थी। और हमेशा की तरह वाकवा से मुस्लिम चिबाई भी हमारा साथ दे रहे हैं। नोवेल

अल्फोंसे फिनाज हंसाई जयराम अपने मरहूम बेटे समीर जयराम जिनकी दूसरी बरसी है उनके लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं। और वाकवा से जहीरा भी तमाम हाजियों के लिए, हज पर जाने वालों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक सबको हज मबरूर अता फरमाए। इसके अलावा तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश भी कर रही हैं। फौजिया और उनके बच्चे दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं मरहूम गिशाद तुगब अली के लिए। इसके अलावा वो तमाम हज पर जाने वालों के लिए भी ढेर सारी दुआएं भेज रही हैं।

रसिकाई संग नहीं कि अपन अर्ध्या तासाचा कार्यक्रम पुरेपूर आनंद घेत आहात। तर कीप ट्यूनिंग विद अस एक वाजता पर्यंत।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: இது மொரிஷியஸ் வானொலி 2.

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो की घड़ी में 2:30 बज चुके हैं। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। तो चलिए, इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है आपकी पसंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं आप एकदम मस्त में होंगे। और इस समय हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं आपकी पसंद कार्यक्रम को सुनने के लिए। वैसे ये प्रोग्राम चलता है आप ही के सहयोग से। तो चलिए, चंद प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद पुराने गीत, चंद नए गीत, हर तरह के गाने आपके लिए इस कार्यक्रम में। तो चलिए, हमारी तरफ से बहुत ही प्यारा सा गीत, वैसे एक प्यारी सी गज़ल है आपके लिए। भूपिंदर की ज़ुबानी ये प्यारी सी गज़ल जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी सुनने वालों के नाम हम ये प्यारा सा गीत कर रही है।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखेंगे और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप है केश जी ककवोन की रहने वाली, आपकी दो बेटियों के लिए नेहा नितिशा है, आपके दामाद है अरविन, आपके पति है अनंत जी और आपके समस्त परिवारों के लिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत हम चलाने वाले हैं। माला सुमारू जी हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, उनके पति है सूर्यदेव जी, उनके सभी बच्चों के लिए कुछ मॉरिशस में है कुछ कनाडा में है। तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये प्यारा सा गीत जो है फिल्म मेरे हम सफ़र से लिया गया, ये गीत जो है आप महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं, तो चलिए व्हाट्सएप मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय, जी हाँ, इस समय पे माया जी है, आप मोटाय ब्लॉन्च की रहने वाली है। ये अगला गीत जो है आप चलाना चाहती है आपकी बहन प्रेमिका के लिए। जी हाँ, प्रेमिला जी जो है आपकी बहन के नाम और उनके समस्त परिवारों के लिए। तो चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे और फिल्म का नाम है अपनापन। और ये प्यारा सा गीत जाएगा, जी हाँ, ये प्यारा सा गीत जाने वाला है सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय सरिता जी है, दीपिने की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। साथ में है गांव की सुनीता जी, हमेशा हमारे साथ निभाती रहती है। तो ये अगला गीत जो है उनके नाम भी हम करने वाले हैं। और त्रियोले की रहने वाली हमारे साथ जुड़ी रहती है त्रिवेणी जी, उनके पति हैं अनिल जी, और समस्त मोहन परिवार के लिए ये अगला गीत हम सुन पाएंगे। तो चलिए, फिल्म अपनापन का ये सदाबहार गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में श्रोताओं, चलिए हमारे साथ इस समय विद्या जी है यूनियन पार्क की रहने वाली। ये अगला गीत जो है जाने वाला है उनके जीजा प्रेम इंदु के नाम और साथ में उनके सभी परिवारों के लिए। वैसे प्रेम इंदु जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो शुभकामनाएं समस्त परिवारों की तरफ से। खास उनकी पत्नी है इंदिरा, साथ में है बेटी दिव्या, लीना भी है और जीविका, इशिका और बेटा है विक्की, साथ में है बेटा विमल, जयन देव है और समस्त

0: न्यू परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सब लोग जो है न्यू अल्फोंस के रहने वाले हैं। तो चलिए प्रेम इंदु जी के जन्मदिन पर ये प्यारा सा गीत उनके नाम हम करने वाले हैं। तो MBC की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं को, उनकी लंबी उम्र की कामना हम करते हैं। तो चलिए मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इस कार्यक्रम को हम जारी रखने वाले हैं शाम के 4 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर है 4028085, हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251705। तो मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, ये प्रोग्राम आप ही के नाम हम सजा रहे हैं। तो चलिए इस सफ़र को हम आगे ले जाएंगे।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

तो इसी गीत पे हम नाम जोड़ने वाले हैं सुरेखा जी का, जो कि दिबिने की रहने वाली हैं आप, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये प्यारा सा गीत जो है आपके नाम हम करेंगे, और ये गीत जाएगा आपकी सहेली के नाम हिरवंती जी, और आज उनका जन्मदिन है, तो उनके सभी परिवारों की तरफ से, बिहारी परिवार है।

0: श्रोताओं, इस पहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।
1: Radio Masti, the latest news and the greatest mix of music. Radio
2: Masti. 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius.
3: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्या नवमाघी ने याद दिलाया कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए सुधारों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को मजबूत करना है। उन्होंने उन सभी लोगों के प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया जिन्हें दुर्व्यवहार के पीड़ितों का मार्गदर्शन और उनकी सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक और महत्वपूर्ण घोषणा गाविन ग्लोवर ने कल की। उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल तैयार है। ये विधेयक जिसमें स्त्री हत्या के मामलों को भी शामिल किया जाएगा, एक महीने के अंदर अंदर तैयार होगा और संसद में प्रस्तुत किया जाना है। ये घोषणा पोटली नगर पालिका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। कल देर रात इन्फ्लुएंसर अली होयाल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के बाद उनके गिरफ्तारी की गई। कंटेंट क्रिएटर पर भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग के मामलों से लाभ उठाने की कोशिश करने तथा कुछ फायदे हासिल करने का संदेह है। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय कोडमास्क के निवासी अली बुलाकी पहले से ही एक बेहद विवादित शख्सियत रहे हैं। उनका नाम अक्सर पूर्व सरकार के करीबियों के बीच चर्चा में रहता था। उन्होंने इस वीडियो को लेकर भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रसिद्ध मिसिय मुस्तासुडु क्लिप को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें आज सुबह फ्लाक की अदालत में पेश किया गया। आर्टेरियल हाइपरटेंशन दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं और अक्सर इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी ये हृदय संबंधी रोग खासकर स्ट्रोक के प्रमुख कारणों में से हैं। मॉरिशस में लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति इस बीमारी के साथ जी रहा है और युवाओं में भी इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मे मेजरमेंट मंथ के तहत, जो कि एक वैश्विक जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान है, इस बुधवार को बुबा सेंट रोजिल में नगर पालिका में एक अभियान का आयोजन किया गया। विदेश की खबरों में, भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों में गर्मी की लू की चेतावनी जारी की गई है जहां तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आमतौर पर साल के इस अवधि के दौरान इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। वहां के मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 18 मई तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Play,
1: MBC Play,
0: MBCRadio.tv,
1: MBCRadio.tv.
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम है आपकी पसंद। सुपहर की 3:03 हो चुकी है, तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे ये अगला गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय सुदेवी जी है वाकवा की रहने वाली, और ये गीत जाएगा थ्रियर की दीदी ललिता जी के लिए। सभी कुशल परिवार है, आत्माराम भैया है, दीदी सुनीता है, शोभा देवीना मानेंगा के रहने वाले, कृष्णी कृषि कृषिका लक्षिका, रामरतन परिवार है, राम गुलाम परिवार है, कुआगू परिवार है। तो चलिए इन सभी परिवारों के लिए ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म दीवाना से लिया गया, और फिल्म दीवाना का ये प्यारा सा गीत इन सभी लोगों के लिए। साथ में हमारे साथ इस समय माँ गायत्री जी है, आप नुवेल फ्रांस की रहने वाली है, और ये गीत आपके बेटे अजय के लिए भी। तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम जो है हम चलाने वाले हैं शाम के 4 तक का। दोस्त प्यारा सा नज़ाना आपके लिए फिल्म दीवाना से लिया गया, और ये प्यारा सा गीत जो है आप सुन सकेंगे। जी हाँ, ये प्यारा सा गीत आपके नाम जो है मुकेश की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सुन पाएंगे।

0: और ये प्यारा सा गीत जो है हमारे साथ इस समय जुड़े हुए है, और आप हैं लीला जी बौशरी की रहने वाली है, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये प्यारा सा गीत आपके लिए, आपके समस्त परिवारों के लिए भी।
1: दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे आना।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ इस समय। जी हाँ, आप है हरी जी, बोबासा के रहने वाले हैं आप, और ये अगला गीत जाएगा आपके समस्त दोस्तों के लिए और जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी ये अगला गीत हम सुन पाएंगे। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे, और फिल्म जो है बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, और फिल्म का नाम है धड़कन। तो फिल्म धड़कन का ये बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे आप सुन पा रहे हैं। तो कुछ ही घड़ी में ये प्यारा सा गीत आपके नाम हम करने वाले हैं, और गीत को आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाइए हमारे साथ।

और इस गीत पे नाम जोड़ेंगे इस समय हमारे साथ मोराबिया की सुनीता जी जुड़ी हुई है और ये गीत जाएगा समस्त राम सहाय परिवार के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, सपहर के 3:16 हुए हैं। ये अगला गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय सरिता जी है, काथोबोन की रहने वाली है और हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम सुन सकेंगे। फिल्म का नाम है सती सावित्री और इस फिल्म से लिया गया गीत उनके लिए और उनके समस्त परिवारों के लिए।

तो आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और ये अगला गीत जो है किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन पाएंगे श्रोताओं। और ये प्यारा सा गीत जो है जाएगा शोभा जी के लिए। शोभा जी पोपले मुसरिस की रहने वाली है, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए ये प्यारा सा गीत है शोभा जी की पसंद पे, एक खास दोस्त के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय विश्वानी डुमन जी है, वाकवा की रहने वाली, और आपकी पसंद पे ये अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं आपके सभी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा, साथ में आपकी सहेलियां हैं नीला प्रतिभा, शोभा है और गीता गजाधर। तो इन सभी लोगों के नाम जो है प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, और ये प्यारा सा गीत जो है हम सुन सकेंगे इसी फिल्म से लिया गया। तो चलिए गीत की ओर हम भरेंगे, और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं श्रोताओं। हमारा फ़ोन नंबर है 4028085, हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700 5। तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा सा गीत है जो है हम आप सभी सुनने वालों के नाम कर रहे हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में हमारे साथ इस समय क्षमा रघुनंदन जी है, और आप की फरमाइश पे ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं विश्वानी दुखी के लिए। वीना रामफल है, आपके भैया है जयप्रकाश, साथ में है भाभी नम्रता, आपके नेफ्यूज है केशव और युधिष। तो इन सभी लोगों के लिए तीसरी कसम फिल्म से लिया गया गीत मुकेश की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ माँ डाबिया की अनीता जी जुड़ी हुई है, साथ में है करुणा, अमृता, उनके सभी परिवारों के लिए ये अगला गीत आप सुन पाएंगे हेमलता की आवाज़ में।

तो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे श्रोताओं। चलिए हम अगले गाने की ओर बढ़ने वाले हैं। लॉन्ग माउंटेन की शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ये अगला गीत जाएगा उनकी बहन गायत्री के लिए। साथ में है उनका बेटा अजय, और प्यारा सा गीत जो है फिल्म काजल से लिया गया, और समस्त परिवारों के लिए जो कि नोवेल फ्रांस के रहने वाली है।

आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं एक से बढ़कर एक गीत जो है बुलंद है आपके लिए। हमारे साथ इस समय जो है लक्ष्मी जी है और आप बॉम्बू के रहने वाले हैं, तो ये प्यारा सा गीत जो है, ये प्यारा सा गीत जो है उनकी फरमाइश पे हम इस कार्यक्रम में चला रहे हैं। वैसे ये प्यारा सा गीत जाएगा समस्त

0: अगस्त्य उप सिंह परिवार है, हरिदास परिवार है, गामसे गावन परिवार है। तो चलिए लक्ष्मी की तरफ से ये गीत जो है उनकी दीदी कुमारी के जन्मदिन के मौके पर उनकी लंबी उम्र की कामना हम करते हैं और वो हमेशा खुश बनी रहे, तो ये प्यारा सा गीत उनके नाम हम करने वाले हैं। तो श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम चला रहे हैं इस समय रेडियो मॉरिशस पे। ये प्रोग्राम जो है हर रोज़ की भांति आप सुनते रहते हैं। तो चलिए गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है और फिल्म जो है आपको पता ही है, बहुत ही पॉपुलर गीत है। तो चलिए इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं ये प्यारा सा नज़ाना। वैसे जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, अंतिम नजाना आप सभी सुनने वालों के नाम समस्त बंधु परिवार है त्रियोले के रहने वाले। तो चलिए प्यारा संगीत उन सभी परिवारों के लिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैसे सब लोगों की फरमाइश जो है हम पूरे, जितनी भी फरमाइशें हैं जो है हम पूरी नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो चलिए ये अंतिम नजाना सभी लोगों के नाम, दिलीप जी है कोंगमा के रहने वाले, उनके सभी परिवारों के लिए। संगीता है साथ में, योगेश, कृष्णवी, ईशर, मनीषा, अरव, इंदिरा, दानन और साथ में है शिवरानी जी है घोंबा की रहने वाली, ये गीत जाएगा उनकी बहनों के लिए। देव कुमारी है साथ में, कृष्णवी, उनकी छोटी बहन है कुमारी, इन सभी लोगों के नाम ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। तो चलिए मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त हुआ। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। वापस मिल रहे हैं कल सुबह के 6 बजे। तो सब लोगों को हम कहेंगे हमारा प्यार भरा नमस्कार।

तो चलिए श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। लेस्कालिये के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है एसएसओ लेन, एडवांटिस लेन और रोयल लेस्कालिये के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 14 मई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है कौमौसले और कतकोको के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है एनएसएलडी, एनएचडीसी, चर्च लेन, डासन स्ट्रीट, एवेन्यू अजालिया, हाई स्ट्रीट, बिलाव स्ट्रीट, कमेलिया एवेन्यू के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 14 मई 2026 को सुबह 8:45 से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली के सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, तो कुछ घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं आप मराठी भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे। हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार।

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: ईश्वर करे आपकी जिंदगी में हो खुशियों की बहार और आपको मिले अपनों से बहुत ज्यादा प्यार। 5:10 हो गए हैं।

0: नमस्कार और आदाब देवी और सज्जनों, प्यारे प्यारे श्रोताओं, अंताक्षरी प्रोग्राम में आप लोगों का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है AM2 रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। आज हम बिल्कुल अकेले हैं स्टूडियो में। उषा जी आज यहाँ पर नहीं आ पाई, उनकी ओर से हम क्षमा प्रार्थी है। तो चलिए साथियों, आज का जो विषय है बड़ा ही आसान सा विषय हमने रखा है आप लोगों के लिए। जब सुखी होता है हर एक परिवार, जब सुखी होता है हर एक परिवार, तभी सुखी होता है सारा संसार। जी हाँ, ये बड़े जन संत से आने कह गए हैं। अगर प्यार हो अपने परिवार के प्रति तो दुख और गम काहे की। चलिए 15 मई को यानी शुक्रवार को पूरा विश्व भर मनाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो चलिए, हम आपसे चाहते हैं कि आपका जो पहला गाना है वो आधारित रहेगा परिवार पर, या एक प्रेरणादायक गाना भी आप गा सकते हैं, या कुछ ऐसा जो लोगों का उत्साह बढ़ा सके। जैसे अगर परिवार में माता है, पिता है, भाई बहन, दीदी देवर, किसी का भी आप नाम लेकर एक गाना भी गा सकते हैं, या अपनी पसंद का कोई भी बहुत अच्छा सा गाना आप गा सकते हैं। और दूसरा गाना आपको गाना पड़ेगा एक कलाकार पर जिसका जन्मदिवस उसी दिन को है यानी शुक्रवार 15 मई को, और वो द एक डो टीन गर्ल यानी माधुरी दीक्षित। तो यूं हम करेंगे, जो दूसरा गाना आपको गाना पड़ेगा, हम आपको ये बोल बताएंगे, आपको शब्दों का हम उच्चारण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यही गाना है आपको गाना है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कह दो कि तुम हो मेरी, तो ये गाना है कह दो कि तुम, आपको पता चल गया। तो चलिए, पहला गाना आप अपना गाना गाइए आपकी पसंद का, या तो परिवार पर हो या कोई प्रेरणादायक गाना हो आपकी ओर से। नंबर वही है 402-808-5-402-80-80। तो चलिए, जल्द ही जल्द फोन आ गया, चलिए हम मिलते हैं पहले श्रोता से, देखते हैं कि वो लाइन पर है या नहीं। हेलो
1: हेलो रोशन जी, नमस्ते। उषा भी को नमस्ते।
0: नमस्ते नीला जी, आप कैसी हैं, ठीक हैं?
1: हाँ जी, मैं बहुत ठीक हूँ आज।
0: आज उषा जी नहीं आई है, लेकिन तो फिर भी आपको सुन रही होंगी।
1: हाँ जी।
0: अच्छा नीला जी, हाँ बिल्कुल, पहला गाना आप गाइए परिवार पर, हाँ। या आपका कोई भी पसंदीदा गाना हो, प्लीज आप गाइए। गाइए
1: हंसते हंसते

0: सुंदर गाना आपने गाया है। बहुत धन्यवाद आपको नीला जी। चलिए अब हम दूसरा गाना आपको माधुरी दीक्षित पर गाना है और वो गाना इस प्रकार है, आप गौर से सुने। अगर मैं आपसे कहूँ गाना गाने के बोल ऐसा है, आज फिर तुम पे प्यार आया है। कौन सा गाना है ये?
1: आज फिर तुम से प्यार आया है। अच्छी है,
0: अच्छा है गा ये।

0: क्या बात है.
1: Thank you.
0: बहुत अच्छा नीला जी, आप बनती हैं फर्स्ट स्टार ऑफ द वीक, क्या बात है. ओके धन्यवाद, ऐसे ही आप भाग लेती रहें, अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी. ओके बाय.

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते शर्मा जी, आपका स्वागत है एक अंताक्षरी प्रोग्राम में।
1: ठीक है,
0: ठीक हूँ। आप कैसी हैं शर्मा जी?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: ओके, तो नीला जी बन गई हैं।
1: वह मेरे भाई के यहाँ शादी थी इस रविवार को, तो उषा जी वहाँ पर लोकेश में आए थे गाना गाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या
1: तो
0: बात है।
1: तो मैं उससे भेंट किया।
0: अच्छा, बहुत
1: और
0: अच्छा।
1: मैं भी एक गाना गाई।
0: बहुत अच्छा, तो आप ऐसे ही गाते रहें, मुस्कुराती रहें।
1: हाँ।
0: और आपको मौका मिला उषा जी के साथ गाने को। बहुत अच्छा है। तो श्यामा जी, ऐसे ही आप खुश रहें, खुश मिजाज व्यक्ति हमें बहुत ही पसंद है।
1: हाँ।
0: चलिए श्यामा जी, आपका पहला गाना आप गाइए प्लीज़।

0: जी हाँ, तेरे मेरे याराने हो, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया है, बहुत धन्यवाद इसके लिए श्यामा जी। चलिए अब दूसरा गाना माधुरी दीक्षित पर, और आपके लिए एक क्लू हम आपको देते हैं, आपको गाना पहचानना है। ओके सुनिए। नमस्कार नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? अरे ये तो बताइए कि कहाँ थे आप? मैं तो कर रही थी किसी का इंतज़ार। किसका? वो जिससे मैं करती हूँ प्यार। कौन सा गाना है ये, गाइए। बहुत ही आसान है ये गाना, इसी फिल्म से। हाँ गाइए।
1: एक दो तीन चार पाँच।
0: हाँ जी, अच्छा है।

0: इंतजार आजा पिया आई बहार।
1: बिल्कुल गानों की बहार हो रही है यहाँ पर। आप भी बनती है स्टार ऑफ द वीक शमा जी। बहुत अच्छा लगा आपने गाना को ठीक तरह से पकड़ा। ओके बाय
0: बाय
1: बाय।
2: और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार
3: कैसे?

0: जी हाँ, इसी फिल्म से माधुरी दीक्षित को बहुत ही सफलता प्राप्त हुई थी और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। और ये जो डांस आइटम है, एक दो तीन गर्ल इसे हम कहते थे, 1988 की फिल्म तेजाब बहुत ही सुंदर फिल्म थी और उनकी पहली मूवी तो अबोध फिल्म थी, लेकिन हासिल किया उन्होंने लोकप्रियता तेजाब फिल्म से। चलिए अब हम मुलाकात करते हैं अगले श्रोता के साथ। हेलो।
1: प्लीज वेट, योर कॉल हैज बीन पुट इन होल्ड।
0: ओ, ये तो कॉल ऑन होल्ड हो गया।

0: चलिए हम मिलते हैं अगले श्रोता के साथ। हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो। हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते रोशन भाई और उषा बहन।
0: हाँ जी आज उषा बहन नहीं आई है। क्या नाम है आपका भाई जी?
1: शिवमत।
0: शिवमत कहाँ से बात कर रहे हैं भाई जी?
1: सेंट
0: जूलियन दुत्मा से आपका स्वागत है। तो चलिए आप पहला गाना गाइए अपनी पसंद का, या फिर कोई प्रेरणादायक गाना हो तो आप गा सकते हैं प्लीज।
1: जिनके प्यार के आगे इस दुनिया का सर झुक जाता है, अरे ओ जिनके प्यार के आगे इस दुनिया का सर झुक जाता है, उनका नाम पिता है जग में वो बाबुल कहलाता है। जिन उनका नाम पिता है जग में वो बाबुल कहलाता है। धूल तेरे चरणों के माथे पे लगाऊं, अरे ओ माथे पे लगाऊं। जिनका सेवा करने वाला भवसागर चल जाता है, उनका नाम पिता है जग में वो बाबुल कहलाता है।
0: बहुत अच्छा श्रीमद भाई, आपने प्रेरणादायक गाना गाया और ये गाना अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर बहुत जचता है ये गाना। बहुत धन्यवाद इस गाने के लिए। अब हम आपको एक क्लू देते हैं, माधुरी दीक्षित पर एक गाना आपको गाना पड़ेगा और गाना गाने में ये बोल है, प्यार कभी कम नहीं करना। गाइए ये गाना।
1: प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना।
0: अच्छा है, लेकिन गा के बताइए आप तो राग में गाइए प्लीज।
1: प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर

0: बिल्कुल श्रीमद भाई, आपने ठीक पकड़ा। क्या बात है, आप भी बनते हैं स्टार ऑफ द वीक। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे भाई जी। धन्यवाद आपको,
1: बहुत धन्यवाद
0: भाई।

0: बिल्कुल, प्यार कभी अंताक्षरी के प्रति आप कम नहीं करना, सितम कर लेना लेकिन प्यार कम न करना प्लीज। चलिए अब हम मिलते हैं अगले श्रोता के साथ। हेलो,
1: नमस्कार भाई रोशन,
0: नमस्कार भाई हरीश, कैसे हैं
1: माय
0: आप?
1: रिगार्ड्स टू भाई उषा जो नहीं है आज।
0: हाँ जी, ओके, धन्यवाद। उषा बहन नहीं आई हैं आज, लेकिन बहुत धन्यवाद आपने उनके बारे में सोचा। अच्छा हरीश भाई, आप अपना पहला गाना गाइए प्लीज।
1: ऑन फैमिली,
0: फैमिली, ओके।
1: ये बिग बी के फिल्म है जो चोरा मॉरिशस में फिल्माया गया था,
0: अच्छा, मुझे पता
1: तो
0: चल
1: मैं गा
0: गया
1: रहा हूँ।
0: है। गाइए।
1: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के पास थे मरना पड़े तो ए तैयार हम, ए तैयार हम।
0: क्या बात है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। बिल्कुल, हम और अपने श्रोतागण, हम दोनों के बीच में बहुत

0: गहरा प्यार है ना हरीश भाई?
1: बहुत बहुत प्यार है।
0: हाँ जी, ये जो
1: प्रोग्राम के भी प्यार है।
0: बिल्कुल, प्रोग्राम के जरिए ही तो हम आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, है ना? हरीश भाई, ये रहा पहला गाना आपने खूब अच्छा गाया, हम फिल्म से लिया गया। अब आपको ये गाना गाना पड़ेगा जो माधुरी दीक्षित पर फिल्म आया गया था। ओके, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता
1: मैं
0: है
1: तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है।
0: क्या बात है,
1: पागल हो जाऊंगा।
0: क्या बात है। बहुत अच्छा हरीश भाई, और आप भी बनते हैं स्टॉप द वीक। त्रिदेव का गाना गाकर आपने दिल खुश कर दिया। बाय बाय।

0: जी हाँ, निगाहों से घायल हो जाती है माधुरी दीक्षित, और निगाहें तो सनी देओल की थी। चलिए अब हम सुनते हैं अगले श्रोता को। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार रोशन भाई।
0: नमस्कार संगीता बहन, बुआशेरी से बात कर रही हैं आप। कैसी हैं आप?
1: जी हम ठीक है।
0: ओके, वेरी गुड। परिवार सब ठीक, कुशल
1: मंगल? हाँ, एकदम ठीक है। और आप लोगों के पास? आप
0: ठीक है
1: जी? हम जाते हाँ जी, हैं
0: आज नहीं आ पाई हैं वो आज, लेकिन हाँ। कोई बात नहीं,
1: हम उसे याद करते रहते हैं।
0: बिल्कुल अवश्य, ये बात तो बहुत सो काइंड ऑफ यू। चलिए संगीता जी, पहला गाना आपकी ओर से गाइए।
1: सोचना क्या जो भी होगा।

खुशी।

0: बिल्कुल संगीता जी, इसी का तो नाम जिंदगी है। थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा गाइए, थोड़ा गुनगुनाइए, है ना। बहुत ही सुंदर गाना आपने गाया घायल फिल्म से। एक गाना तो अभी सनी देओल का चल रहा है, दूसरा गाना आपने सनी देओल ही पर गाया, क्या बात है। चलिए अब हम माधुरी दीक्षित की ओर बढ़ते हैं और एक गाना हम आपको हम चाहेंगे कि आप गाएं दिल से, और उस गाने के बोल इस प्रकार हैं, तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलकर। कौन सा गाना है?
1: तुमसे

0: बिल्कुल, हम तुम अंताक्षरी के श्रोतागण से कभी हम जुदा न होंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। ऐसे ही आप गाते चले जाएं संगीता जी, और अपना आपकी जो साधना है, रियाज है, वो बराबर होनी चाहिए। धन्यवाद संगीता जी, बाय,
1: शुभ रात्रि।

0: और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया, बड़ा ही सुंदर फिल्म, बड़ी सुंदर फिल्म थी। और जैकी श्रॉफ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था इस फिल्म के लिए। चलिए अब हम बातें करेंगे अगले श्रोता के साथ। हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते बुबासें की मीनाक्षी जी।
1: कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मीनाक्षी जी?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: अच्छा जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। चलिए अब पहला गाना आप प्लीज गाइए, आपकी पसंद का गाइए।

0: करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम।
1: जी मीनाक्षी जी, चाहे खुशी हो या गम,
0: हाँ
1: अंताक्षरी प्रोग्राम के साथ आप कभी नहीं करोगे प्यार कम।
0: हाँ जी
1: बहुत
0: एग्जैक्टली
1: बिल्कुल, मीनाक्षी जी का ये पहला गाना आपको दिलाता है तालियों की गूंज। प्रेरणादायक गाना था, जया बच्चन जी पर आधारित। क्या गाना था, क्या फिल्माया गया था ये, बिल्कुल प्रार्थना की सीन। ऊपर से अमिताभ बच्चन जी अपनी पत्नी को देखते हैं, और
0: क्या बात
1: वहाँ
0: है।
1: ऋतिक रोशन भी बहुत बचपन में थे, और वहाँ से शाहरुख खान आ रहा
0: शाहरुख
1: है।
0: खान आ रहा है हेलीकॉप्टर
1: क्या बात,
0: में।
1: और यहाँ पर मीनाक्षी गा रही है।
0: हाँ जी
1: अच्छा, ये रहा पहला गाना आपकी ओर से। चलिए
0: जी
1: अब माधुरी दीक्षित पर आधारित ये गाना आपको गाना पड़ेगा, और बोल इस प्रकार है। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना। कौन सा गाना हो सकता
0: चांद
1: है?
0: ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर,
1: अच्छा।
0: ओहो प्यार
1: गई
0: कर। आपने
1: आई
0: मुझे हंसा
1: है
0: दिया।
1: साथ में,
0: चांदनी कह रही है
1: है
0: अब तो
1: यही मेरे गली मेरे
0: मेरे
1: घर,
0: घर
1: प्यार
0: प्यार कर।
1: कर।
0: आपने मुझे हंसा
1: हाँ
0: दिया, मैं
1: जी
0: भूल
1: मीनाक्षी
0: गई।
1: जी, मैं आप क्षमा चाहता हूँ,
0: नहीं
1: आपको
0: कोई बात
1: बीच में
0: नहीं,
1: मुझे नहीं टोकना चाहिए था।
0: नहीं कोई
1: सो
0: बात
1: मीन ऑफ मी
0: नहीं,
1: है, सो मीन ऑफ मी। मुझे
0: नो
1: एक बार
0: नो
1: फिर मैं
0: कोई
1: आपसे
0: बात
1: क्षमा
0: नहीं,
1: चाहता हूँ मीनाक्षी जी,
0: नहीं कोई बात
1: लेकिन
0: नहीं
1: मैं
0: ऐसे
1: क्षमा नहीं
0: समझिए।
1: मांगूंगा इसके लिए।
0: हाँ जी
1: यू डिजर्व, यू डिजर्व। थैंक
0: हाँ
1: यू वेरी
0: जी
1: मच मीनाक्षी जी,
0: ओके
1: आई
0: थैंक यू
1: डू
0: बाय बाय।
1: अपोलोजाइज, क्षमा करें मुझे।
0: नो कोई बात नहीं
1: ओके
0: ओके
1: बाय
0: बाय बाय।
1: बाय।

0: बिल्कुल अंताक्षरी प्रोग्राम से प्यार कर, क्या कर रहा है तू? हेलो
1: हेलो रोशन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते सती जी, फ्रॉम रोजबेल।
1: जी हाँ, रोजबेल। हाँ।
0: कैसी हैं आप? ठीक?
1: मैं ठीक हूँ, आप अच्छे हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, हमेशा हम आप लोगों का हाल पूछते हैं क्योंकि हम जानते हैं जब आप अंताक्षरी प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो हमेशा खुश रहती हैं, है ना?
1: लाइन नहीं मिलती थी।
0: क्या करें, लाइन क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि बहुत से लोग फोन करते हैं ना।
1: जी हाँ, हाँ, हाँ।
0: इसी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की इसी तो खासियत है, यही खासियत है ना। चलिए सती जी, बातें कम गाना ज्यादा।
1: एक एक गजल गा सकती हूँ दो लाइन?
0: अच्छा क्यों नहीं, नेके और पूछ पूछ गाइए।

0: क्या बात है, बहुत ही रेया गजल आपने गाया है। और आपकी जो हसरत है, दिल की हसरत हमेशा पूरी हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। सती जी, ये था आपका बहुत ही सुंदर सा गजल, आपने सारे श्रोताओं को सुना दिया, क्या बात है। तो चलिए अब हम आपके लिए एक गाना, हम आपसे चाहते हैं कि आप गाएं माधुरी दीक्षित पर, और बोल इस प्रकार है, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, न जाने कहाँ दिल खो गया। कौन सा गाना है ये?
1: मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, न जाने कहाँ खो गया,
0: न जाने कहाँ दिल खो गया,
1: न जाने कहाँ दिल खो गया।

0: न जाने कहाँ दिल खो गया।
1: क्या बात है सतीश जी, आपने तो तुरंत पकड़ लिया। बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप भाग लेती रहें। धन्यवाद और मिलेंगे अगले सप्ताह। ओके
0: ओके, धन्यवाद, बाय।

0: जी हाँ, इस प्रोग्राम से आपको तो ना नींद आएगी ना चैन आएगी जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता। और दिल फिल्म में आमिर खान के साथ माधुरी दीक्षित की जोड़ी बहुत ही सराहा गया और बहुत ही सुंदर फिल्म थी। चलिए अब हम बातें करेंगे अगले श्रोता के साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार रोशन भाई जी।
0: नमस्कार बहन जी, कौन है आप, क्या नाम है आपका?
1: मैं संगीता मोडल में से मैं पहली बार भाग ले रही हूँ।
0: पहली बार आप भाग ले रही हैं?
1: मैं रेडियो में सुनते सुनते मन लगता है बात
0: भाग लेने
1: गाना
0: को।
1: गाने को, एक छोटा सा गाना।
0: कोई बात नहीं, लेकिन आज का आपको दो गाने गाने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है, ऐसे ही आप भाग लेती रहें। ओके संगीता जी, चलिए आपका पहला गाना।
1: हाँ।

0: बहुत सुंदर सा गाना आपने गाया, प्रेरणादायक गाना, फिल्म मदर इंडिया से लिया गया। बहुत ही धन्यवाद संगीता जी, और आप बहुत अच्छी तरह से गाती हैं। तो चलिए अब हम दूसरा गाना आपको कहेंगे, क्लू हम आपको देंगे, इशारा करेंगे, बोल आपके लिए हम रखेंगे, आप इसे पहचानिए और शुरुआत से आप गाना पड़ेगा आपको। माधुरी दीक्षित पर आधारित है ये गाना, ओके। और ये बोल इस प्रकार है, तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा। कौन सा गाना है ये?
1: मुझे मालूम नहीं है।
0: अरे यार इतना
1: मधुरी दीक्षित का गाना 1 2 3 ये मैं गा सकूंगी,
0: लेकिन वो तो किसी ने गा लिया है।
1: हाँ।
0: यही आज का फॉर्मेट है, आपको पता नहीं ये गाना कौन सा है? तू प्रेमी आहा, मैं प्रेमी आहा, तू राजी आहा, थानेदार वाला गाना। ये तो बहुत ही लोकप्रिय गाना था। कोई बात नहीं संगीता जी,
1: कोई बात नहीं,
0: बहुत धन्यवाद, आपने कोशिश की है, यही हमें चाहिए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार संगीता बहन, बाय।

0: थानेदार वाला गाना। इसी गाने से संजय दत्त कुछ अच्छी तरह से नाचने लगा और वो भी माधुरी दीक्षित को देखकर। क्या उत्साह बढ़ाया होगा संजय दत्त को। चलिए अब हम मिलते हैं अगले श्रोता के साथ। हेलो
1: हेलो रोशन जी।
0: नमस्ते राधा जी प्रमोचिदा
1: जी। नमस्कार। हाँ मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है मौसम।
0: कोई बात नहीं, लेकिन ताक्षरी में खुद ब खुद गला ठीक हो जाता
1: ठीक
0: है
1: हो जाता है। हाँ ये तो सही है।
0: बिल्कुल राधा जी, गाइए अपना पहला गाना।

0: से।
1: बहुत ही प्रेरणादायक गाना आपने गाया है। बिल्कुल, हमारा जो
0: धन्यवाद।
1: शरीर है ये तो नाशवान है ना? बिल्कुल,
0: हाँ
1: जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा जो कर्म हमने किया है यही लोगों को याद रह जाएगा।
0: हाँ ठीक। हाँ जी
1: चलिए, अब दूसरा गाना आपको माधुरी दीक्षित पर गाना है और बोल इस
0: जी
1: प्रकार है। राधा जी, जरा आप गौर से सुने। तू
0: जी
1: शायर है, मैं तेरी शायरी।

0: क्या बात है बहुत अच्छा है राधा जी, नहीं लग रहा है कि आपका गला बैठा हुआ है।
1: शुभ संध्या,
0: शुभ रात्रि आपको भी, बाय।

0: जी हाँ, शायर और शायरी की जो क्या कहें, जो का जो रिश्ता है, ये तो अनोखा रिश्ता है। चलिए अब रिश्ता निभाना चाहिए आप लोगों को। हमारे साथ कौन रिश्ता निभाने आ गया है? हेलो।
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी, मैं कोटे से आशा ठाकुर बोल रही हूँ। जी,
0: हाँ जी, आपका स्वागत है। हमेशा आप रिश्ता निभाती रहती हैं
1: और
0: अंताक्षरी
1: सबसे
0: के साथ।
1: जी तो सबसे पहले मैं आने वाले परिवार दिवस के शुभ अवसर पर अपने पूरे जानू परिवार को, सभी अंताक्षरी परिवार को परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती
0: बहुत
1: हूँ।
0: धन्यवाद आशा जी। हमारा जो अंताक्षरी परिवार है वो हमेशा आबाद रहे। चलिए, इस परिवार में तो आप आ गई हैं, तो
1: जी,
0: आपको गाना पड़ेगा।
1: तो एक प्रेरणादायक गाना गाऊंगी।
0: बिल्कुल, गाइए।
1: हरे

0: बहुत ही सुंदर सा भजन आपने गाया है आशा जी, सोनू निगम जी की आवाज में ये भजन था, है ना
1: जी, माता पिता भाई बहन सब है।
0: बिल्कुल, इसीलिए तो ये जो गाना है, ये जो भजन है, परिवार दिवस पर खूब खूब ही जचता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद इस भजन के लिए। अब आपको हम एक क्या कहें, आपको शब्द बताएंगे, माधुरी दीक्षित का ये गाना आपको गाना पड़ेगा। ओके, और शब्द बड़ा ही आसान है। देखा तुझे तो ऐसा लगा,
1: देखा तुझे

0: क्या बात है। कोयला फिल्म का गाना आपने गाया है, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान पर फिल्म आ गया। बहुत ही धन्यवाद आशा जी, ऐसे आप भाग लेती रहे। ओके बाय बाय,
1: शुभ संध्या।

0: मरने की बात कौन कर रहा है यहाँ पर? जियो और क्या कहें, गाओ और जियो। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी। ठीक
0: नमस्ते। हाईलैंड्स की देवी जी, कैसी हैं आप?
1: है।
0: अच्छा, देवी माँ गई हैं।
1: हाँ
0: अच्छा, गाइए
1: जी।
0: पहला गाना, प्लीज गाइए।
1: ए दिल लाई है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम झलक उठा खुशी का कुमार क्या कहना।
0: बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया, फिल्म क्या कहना। अब आपको गाने के बोल सुनाएंगे माधुरी दीक्षित पर आधारित, और बहुत ही आसान सा है। सुन बेलिया, शुक्रिया मेहरबानी, गाइए।
1: सुन बेलिया
0: गाइए,
1: शुक्रिया मेहरबानी। आगे
0: अच्छा है,
1: गाना
0: गाइए।
1: आगे याद नहीं आ
0: तू
1: रही।
0: कहे तो
1: तो
0: नाम तेरे,

0: बहुत ही ठीक तरह से पकड़ा। 100 डेज फिल्म का गाना है जैकी श्रॉफ और माधुरी पर। बाय बाय
1: बाय,
0: शुभ संध्या।
2: तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी।
0: आप लोगों के नाम जवानी नहीं, पूरा अंताक्षरी प्रोग्राम। हेलो
1: हेलो, नमस्ते। अभी से मैं लाइन लाइन नहीं मिल रही।
0: क्या करें, सभी का यही हाल है सरिता जी।
1: कैसे हो आप?
0: मैं ठीक तो हूँ, बड़ा चंगा हूँ। आप कैसे हैं? कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: आप तो कह रहे थे कि आपकी लाइन नहीं लग रही है, तो कैसे ठीक हो सकती हैं आप?
1: अभी से 5 बजे से लाइन लगाने की कोशिश। मैंने खाना पका लिया, मकाओनी पका लिया,
0: ये सब आपने कर लिया अंताक्षरी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए।
1: हाँ।
0: इत्मीनान से, क्या बात है।
1: बहुत इंतजार करती हूँ कब बुधवार आएंगे।
0: मेरे पास तो शब्द नहीं है सरिता जी, धन्यवाद करने के लिए। इतना प्यार, इतना प्यार।
1: आप लोगों को भी धन्यवाद, हमारी प्रोग्राम हमारी एंटरटेन करती है।
0: क्यों नहीं, हमारा तो काम है आप लोगों का मन बहलाना।
1: जी
0: चलिए सरिता जी, अब आप अपना पहला गाना प्लीज गाइए।
1: जी

0: तेरी उंगलियों से जा
1: जाओ छे कोई तो हटो है ना लाके इसी तरह वीर।

0: मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा चुझे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया।
1: ये गाना मुझे पसंद है, जो जो गाना मुझे पसंद है वो मैं गाती हूँ।
0: अच्छा है, जी भर के गाइए। और दम लगा के है, शाफी का नाम है ना, और आपने सचमुच दम लगा के गाया है। चलिए अब देखते हैं, माधुरी दीक्षित पर आधारित ये गाना है, हम पे किसने हरा रंग डाला। कौन सा गाना है ये?
1: हम पे किसने रंग डाला,
0: गाइए।
1: हम पे किसने हरा रंग डाला,
0: अच्छा है।
1: खुशी ने हमारे हमें मारे डाला, अल्लाह मारे डाला।
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देवदास का गाना
1: जी।
0: बहुत ही आपने ठीक तरह से पकड़ा है, और बधाई हो आपको सरिता जी।
1: धन्यवाद आपको।
0: देर से मगर दुरुस्त सही। ओके, बाय बाय।
1: शुभ संध्या आपको।
0: शुभ संध्या आपको भी।

0: जी हाँ, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, कौन आया है हरे रंग के साथ, चलिए देखते हैं। हेलो,
1: नमस्ते रोशन जी।
0: शोभा जी फ्रॉम बाकुआ।
1: जी हाँ।
0: सचमुच आपने हरा रंग पहना है आज?
1: नहीं नहीं बिल्कुल
0: ओ
1: नहीं।
0: कोई बात नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे शोभा जी।
1: जी हाँ पता है।
0: चलिए आप अपना पहला गाना प्रस्तुत कीजिए।
1: ओके। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
0: बहुत अच्छा गाना आपने गाया है, हम हैं राही प्यार के का गाना। ओके, अब ये गाना आपको गाना पड़ेगा। शब्द इस प्रकार है, माधुरी दीक्षित पर ही है ये गाना। जिंदगी के खेल में कौन ये जाने अब होना है क्या।
1: जिंदगी के खेल में
0: ये तो एक जिंदगी
1: एक इस्तीफा की है।
0: हाँ, ये गाना नहीं है।
1: हाँ।
0: हमने कहा जिंदगी के खेल में कौन ये जाने कब होना है क्या।
1: जिंदगी इस्तीफा की है।
0: नहीं जी, ये गाना
1: कोई
0: नहीं है। ये गाना है खेल फिल्म का गाना, अनिल कपूर माधुरी दीक्षित।

0: जी हाँ, इस खेल में कौन जाने क्या होने वाला है, सब ईश्वर पर छोड़ दें, समय सबसे बड़ा बलवान है, आप केवल अपना कार्य करते रहें। हेलो
1: हेलो रोशन जी,
0: सुबीर सेन
1: सुबीर कह रहे
0: भाई,
1: हो? ऐसी
0: कैसे हैं आप
1: ठीक है
0: सुबीर?
1: आप?
0: मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? ठीक,
1: हाँ ठीक है।
0: ओके। सुबीर सेन भाई, प्लीज अपना पहला गाना गाइए।
1: ओके
0: रेडियो से
1: देख
0: थोड़ा आप
1: जा।

0: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: सचमुच सुबीर सेन भाई, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ है
0: आपके साथ है, ठीक
1: तो
0: है
1: आप कोई दुख नहीं होगा, है ना।
0: जी हाँ, जी
1: चलिए,
0: हाँ
1: ये पहला गाना बहुत ही अच्छा लगा। अब दूसरा गाना आपको माधुरी दीक्षित पर गाना होगा, और शब्द इस प्रकार है, किस्मत से हमको मिले हो। कैसे छोड़ेंगे ये हाथ, बिल्कुल न छोड़ेंगे। याद आया आपको?
0: नहीं रोशन जी,
1: किस्मत से तुम हमको मिले हो, ये गाना आप तो जानते हैं ना।
0: हाँ मैंने सुना लेकिन
1: हाँ, कोई
0: नहीं
1: बात
0: सुना
1: नहीं, लेकिन आपने
0: जी।
1: कोशिश की है।
0: जी हाँ,
1: ओके सुबीर
0: ओके
1: सेन भाई,
0: ओके
1: धन्यवाद
0: थैंक यू,
1: आपको। बाय
0: ओके
1: बाय।
0: बाय बाय।

0: जी हाँ, हाथों में हाथ तो बात बढ़ती है आगे, है ना। चलिए अब हम मुलाकात करेंगे अगले श्रोता के साथ। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते रोशन जी।
0: तू तू तू तू तू तारा। रोजिल से तारा जी का स्वागत करते हैं हम। चलिए पहला गाना गाइए, बहुत कम समय रह गया है। गाइए।
1: आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे
0: क्या बात है। ज्वेल थीफ और देवानंद का गाना आपने गाया है, श्री देवानंद जी का। चलिए अब माधुरी दीक्षित पर आधारित ये गाना है और बोल इस प्रकार है। क्या कहूँ तुमसे कितना प्यार है तुम्हें, क्या कहूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कौन सा गाना है?
1: इतना प्यार करते हैं हम। नहीं आते हैं।
0: नहीं याद आ रहा आपको?
1: नहीं,
0: क्या कहें तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश की है तारा जी, बहुत धन्यवाद आपको। बाय
1: बाय।

0: चलिए एक आखिरी श्रोता से हम मिल लेते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते अनीता जी, मौदाबिया से। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक?
1: लाइन नहीं मिलता है।
0: हाँ,
1: मैं
0: बहुत
1: थोड़ा गला खराब है।
0: ओह ओह ओह, सो सॉरी अबाउट दैट। चलिए पहला गाना गाइए प्लीज। गाइए।

0: सनम।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया, कयामत से कयामत तक फिल्म से लिया गया। अच्छा, माधुरी दीक्षित पर ये गाना है और इसके बोल इस प्रकार है, दीदी तेरा देवर दीवाना। कौन सा गाना है ये?
0: दीदी तेरा देवर दी।

क्या बात है अनिता जी, और आपने झट से पकड़ लिया और आप भी बन गई स्टार ऑफ द वीक। धन्यवाद अनिता जी, ऐसे आप भाग लेती रहें। ओके बाय बाय बाय। जी हाँ, हम आपके हैं कौन फिल्म का गाना है लता जी की आवाज़ में माधुरी दीक्षित पर आधारित, और इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म फेयर की तरफ से। और इसी के साथ आज का जो प्रोग्राम है समाप्त हो गया। जिन लोगों ने भाग लिया बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों की लाइन नहीं लगी सो सर बावदात मुझे क्षमा करें, क्या करें, समय के अभाव के कारण सभी का फ़ोन हम नहीं उठा पाए, लेकिन अगले सप्ताह आप अवश्य ट्राई करें, कोशिश करें, अवश्य आपकी लाइन लग जाएगी। इसी बात पर हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे समाचार, रेडियो मॉरिशस AM2 की लहरों पर आप जुड़े रहें, और हमेशा कहिए कि MBC रेडियो की जय, जो बोले सो अभय। ऐसे आप रेडियो सेट के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आप लोगों को। और जाते जाते माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन जी और गोविंदा जी पर आधारित ये गाना।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, शाम के 6 बजे हैं।

0: सभी को नमस्कार। 23 मई की तारीख बुधवार का दिन, स्वागत आप सभी का 6 बजे के समाचारों में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नैरोबी में प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट संबंधों पर की चर्चा। अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 समिट का समापन, कई अहम क्षणों के साथ हुआ। मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर अत्याचार की स्थिति में वेटो अधिकार को सीमित करने वाली फ्रांस मेक्सिको की पहल का किया समर्थन। अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए संशोधन का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को और मजबूत करना है। उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इस बात का ऐलान आरियान नवा माही ने पोटली में किया। विदेश में पश्चिम एशिया संकट, बढ़ते तेल कीमतों और विदेश मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ने सोना चांदी पर आयात शुल्क को बढ़ाया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की ये खबर मुख्य है। नैरोबी में आज सुबह प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने स्टेट हाउस में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मॉरिशस केन्या के बीच उत्कृष्ट संबंधों पर चर्चा की, खासकर राजनयिक और व्यापारिक सहयोग को लेकर। उन्होंने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के निष्कर्षों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विलियम रुटो ने इलाकाई सहयोग को और मजबूत करने तथा क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम नैरोबी स्थित स्टेट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ खास मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के सकारात्मक परिणामों तथा मॉरिशस और केन्या के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की।
2: We had a great meeting with the Prime Minister. We appreciate his coming to Nairobi. We appreciate his ideas and insights and his contribution to the success of this Africa Forward Summit. And it provides an opportunity for us to prosecute our position, joint position of Mauritius, Kenya and the rest of the continent, to contextualize our relationship with the rest of the world so that we are better understood. And we can drive our interests using the Africa Union working together, because the situation at the moment requires solidarity.
1: Dr. Nabil Ram Gulam ke anusar Kenya kai kshetron mein Mauritius ka ek mahatvapurna saajhedar hai, khas roop se vyapar kshetra mein. Unhone dono deshon ke beech khas sambandhon ko bhi rekhankit kiya.
3: I want to thank President William Ruto, because he's made a wonderful conference. It was very, very positive. As the president said, we need this solidarity. It was a very successful conference, and we're moving forward from this. I reminded President Ruto that I first came to Kenya to meet President Jomo Kenyatta with my father, Sir Steve Sagawa. And he sent Tom Mbuya,
2: yes,
3: who was a constitutional lawyer,
2: yes,
3: to help us draft our constitution before independence.
1: बैठक में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के बाद जारी नैरोबी घोषणा के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उन विभिन्न परियोजनाओं और साझेदारियों को अमल में लाने पर ध्यान दिया गया, जिनकी घोषणा अफ्रीकी महाद्वीप की मजबूती और समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से की गई।
0: कोंगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सासू एंग्वेसो जुलाई महीने में औपचारिक मिशन पर मॉरिशस आएंगे। इस दौरे को लेकर आज दोपहर बाद नैरोबी में प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम और कोंगो के उप प्रधानमंत्री शोंशाक बुया के बीच चर्चा हुई। मुख्य रूप से कोंगो में आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए मॉरिशस की सहायता तथा मॉरिशस के लिए हाइड्रोकार्बन आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले दिन के दौरान सरकारी नेता ने लुईस मुशिकीवाबो से भेंट की। चर्चा हिंद महासागर क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी फ्रांकोफोनी के सदस्य

0: से देशों के विकास और प्रगति पर केंद्रित रही। नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 समिट का समापन कई अहम क्षणों के साथ हुआ। इस दौरान मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर अत्याचार की स्थिति में वीटो अधिकार को सीमित करने वाली फ्रांस और मेक्सिको की पहल का समर्थन किया। इस कदम का स्वागत फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने किया। वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने समुद्री देशों के अलायंस के गठन का आह्वान किया, साथ ही अफ्रीका के विकास को तेज करने के लिए 23 बिलियन यूरो के निवेश जुटाए जाने की घोषणा की गई। समापन समारोह अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, ब्लू इकोनॉमी और अफ्रीकी समृद्धि जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में आप सुन पाएंगे।
1: मंगलवार की रात नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 का समापन समारोह चला। कई राष्ट्र एवं सरकारी नेता उपस्थित रहे, जिनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल रहे। उनके वहां पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने उनके साथ मैत्रीपूर्ण माहौल में भेंट की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम को इस बात के लिए आभार प्रकट किया कि उन्होंने बंद कमरे में लगे एक प्लीनरी सत्र के दौरान फ्रांसीसी मैक्सिकन पहल के साथ जुटने के मॉरिशस का फैसला लिया है, जिसके तहत राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद के सदस्यों से ये मांग की गई है कि सामूहिक अपराधों के मामलों के लिए वेटो के उनके अधिकार प्रयोग का स्वेच्छा से निलंबित किया जा सके। राष्ट्रपति माक्रों ने कहा, हम सामूहिक रूप से संगठित भी हुए हैं और अपने बयान में सभी सदस्यों का समर्थन है और हम मॉरिशस के प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करते हैं जो इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। इसका मकसद है राष्ट्रसंघ में सामूहिक अपराधों के मामलों के संबंध में वीटो का हक इस्तेमाल करने की बात समाप्त करना। शिखर बैठक के दौरान डॉक्टर नवीन राम गुलाम के ब्लू इकोनॉमी पर केंद्रित संबोधन का अच्छी तरह स्वागत किया गया। फ्रांस के आउटर आइलैंड एवं मत्स्य उद्योग मंत्री कैथरीन शाबो ने ओशियन राष्ट्र अलायंस कायम किए जाने की मॉरिशियन प्रधानमंत्री की अपील के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमारा सामूहिक भविष्य सागर के साथ है, इसका संरक्षण करना है, शानदार तरीके से आर्थिक विकास करने की संभावनाएं हैं। मॉरिशस समुद्री राष्ट्र है, बहुत कुछ बांट सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी राय भी दी है, सागरीय राष्ट्र गठबंधन एक साथ मिलकर कई विषयों पर विचार कर सकते हैं। इस महाद्वीपीय सम्मेलन की बदौलत अफ्रीका के विकास के लिए 23 बिलियन यूरो के निवेश की उपलब्धता तय हो पाई है। शिखर बैठक की मेजबानी करने वाले केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि संस्करण अफ्रीका की समृद्धि और मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। उन्होंने कहा, हमारे सामने जो कार्य है वो है हर एक वचन को हकीकत में तब्दील करना, बातचीत को लागू करना और अफ्रीका के लोगों के लिए महत्वाकांक्षा को ठोस प्रगति में परिवर्तित करना, क्योंकि अफ्रीका इस बात का इंतजार नहीं कर रहा कि भविष्य में उसे आमंत्रित किया जाए, बल्कि अफ्रीका अपने मित्रों के साथ मिलकर अभी ही भविष्य संवार रहा है। इसके अलावा अफ्रीका में ठेकेदारी सफलता सुनिश्चित करने के वास्ते 5 प्रमुख चुनौतियों पर भी जोर दिया गया। शिक्षा, ऊर्जा, मूल ढांचा, नौकरी और भारी पब्लिक एवं प्राइवेट निवेश।
0: अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री ने सेनेगल के राष्ट्रपति के साथ ब्लू इकोनॉमी पर एक सत्र की सह अध्यक्षता की। इस चर्चा में अफ्रीका और कई देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी केवल एक रणनीतिक प्राथमिकता नहीं बल्कि एक अस्तित्व से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
2: L'océan n'est plus un décor géographique. C'est une infrastructure vitale de souveraineté, de sécurité alimentaire, de transition énergétique et de puissance économique. Nous vivons une époque de transformation profonde. Les équilibres économiques, géopolitiques et environnementaux sont en mutation. Avec les tensions accrues que nous voyons,
3: महासागर एक भौगोलिक सजावट नहीं, ये एक अहम ढांचा है संप्रभुता के लिए, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और आर्थिक महाशक्ति के लिए।

हम एक गहरे परिवर्तनशील युग में जी रहे हैं। आर्थिक संतुलन, भू राजनीतिक और पर्यावरणीय संतुलन बदल रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव देख सकते हैं। इस युद्ध ने समंदर को तनाव का केंद्र बना दिया। समुद्री परिवहन ठप हो गया है। हजारों जहाजों की गतिविधियां रुक गई हैं। हमारे यहाँ अफ्रीका

0: भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारे कॉन्टिनेंट के आधार पर संदर्भ समान नहीं। इस बीच हम सभी उसकी स्थिरता से फायदा उठाते हैं, लेकिन आज मध्य पूर्व युद्ध मौजूदा संकट से इसकी स्थिरता भी प्रभावित है। मॉरिशस के पास 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो उसकी भूमिगत क्षेत्र से कहीं ज्यादा है। जमीनी तौर पर छोटा राष्ट्र, लेकिन समुद्री तौर पर विशाल। जून 2025 में फ्रांस ने महासागर पर राष्ट्रसंघ के तीसरे कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की, साथ में सोमे अफ्रीक पोलोसियन लगाया गया। तब से हमारी प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति माक्रों की मांग की बदौलत बायोडायवर्सिटी पर BBNG जनवरी 2026 से लागू है।
1: Et suite à l'appel du président Macron lors de la conférence sur l'océan, l'accord sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, aussi connu comme le traité BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, est entré en vigueur en janvier 2026. Il nous revient désormais de mettre le traité en application en conformité avec nos législations nationales. Mais soyons clairs. Pas d'économie bleue durable sans océan vivant. La gouvernance est donc la condition sine qua non.
2: अंतरिम प्रधानमंत्री यागियान नावामारी ने कहा कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए संशोधन का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को मजबूत बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों की देखरेख और सहायता से जुड़े सभी लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं अटर्नी जनरल गावी ग्लोवर ने घोषणा की कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल तैयार हैं। उन्होंने बताया कि क्रिमिनल कोड में भी संशोधन किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के मामलों को भी शामिल किया जाएगा। इन बातों का ऐलान फामोमर्स द्वारा पोटवी नगर पालिका में आयोजित घरेलू हिंसा पर के एक सिंपोजियम के दौरान किया गया। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
3: 4 organes abattus, affectés, les reins, les cœurs, thyroïdes et caillots de sang dans la tête. Et 4 fois dans l'amour. Mon parcours de 26 ans de vie conjugale avec mon époux, qui est malade, on appelle pervers narcissique.
0: Rachel, Sylviane, Rishmi et Zafira, 4 महिलाएं, 4 कहानियां जो घरेलू हिंसा और परित्याग की पीड़ा से जुड़ी हैं। गंभीर और ध्यानपूर्वक सुनने वाली सभा के सामने उन्होंने अपने दिल दहला देने वाले अनुभव साझा किए। इन गवाहियों ने सीधे तौर पर आगियान नावामारी और गाविन ग्लोवर को झकझोर दिया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों की सुरक्षा और मजबूत किया जाना चाहिए, खासकर चिल्ड्रंस बिल में प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, साथ ही उन लोगों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए जो दुर्व्यवहार के पीड़ितों की सहायता करते हैं।
4: Moi, je trouve femmes policières qui plus qui agir plus mauvais qui ben zoom. Alors, quelquefois, je suis aussi un problème dans cette case. Bon, pas connu, mais il y a une raison. Mais je pense que pour toutes ces bonnes raisons-là, nous avons besoin d'une formation appropriée à tous ces bonnes personnes qui pour besoin appliquer la loi. Et il y a aussi un changement que nous besoin faire dans le Children's Act.
0: वहीं अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने घोषणा की कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। अब महिलाओं की हत्या के मामलों को भी पेनल कोड में शामिल किया जाएगा।
5: Il y a une loi très importante parce que accroché à ça, nous pouvons faire un amendement au criminal code pour qui nous introduire l'offense de féminicide. Et aussi marital rape. Donc, je pensais qu'il fallait faire ça en même temps pour que ça, ça, c'est con.

0: complémentaires.
1: इसी संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आशा का संदेश देना और पीड़ितों को चुप्पी तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: Ensemble, ça va nous partager là pour une fondation Charter on Family Abandonment, un document qui nous pousse soumettre gouvernement pour demande reconnaissance, protection et réforme.
1: सभा में पोर्टवी के बिशप मोंसिनियर जोरोन, अन्य धार्मिक प्रतिनिधि, ओम्बट्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के सदस्य तथा पुलिस बल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने घरेलू हिंसा और परित्याग के खिलाफ सामूहिक रूप से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अली हुयास को कल देर रात गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी FCC की जांच के तहत की गई। कंटेंट क्रिएटर अली बुलाकी पर आरोप हैं कि उन्होंने करप्शन और इन्फ्लुएंस ट्रैफिकिंग से जुड़े मामलों में कुछ लाभ हासिल किए और करने की कोशिश की। कौंदमास के रहने वाले अली रॉयल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित और विवादित शख्सियत रहे हैं। पिछले सरकार के दौरान उसने दावा किया था कि चर्चित मिसी मुस्ता स्टूडियो क्लिप्स तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, जिसे अदालत फ्लक की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उसकी रिहाई पर आपत्ति व्यक्त की और उसे वापस हिरासत में लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अलग अलग श्रमिक संगठनों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों के मामलों को लेकर चिंता जताई। कल और आज आयोजित प्रेस सम्मेलनों में उन्होंने सरकार से अपील की कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जाए। देश की खबरों में जो आज सुर्खियों में, उनमें पश्चिम एशिया संकट, बढ़ती तेल कीमतों और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ने सोना, चांदी और प्लैटिनम पर आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। अब सोना और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़कर 15% कर दिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से एक वर्ष तक सोने की खरीद से बचने की अपील की, ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: भारत सरकार ने सोना और चांदी आयात करने पर लगने वाले शुल्क में बड़ा इजाफा किया है। अब इन कीमती धातुओं पर 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और 5% कृषि मूलढांचा और विकास सेस लगाया जाएगा। कुल आयात शुल्क बढ़कर 15% हो गया है। प्लैटिनम पर भी शुल्क बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और समुद्री व्यापार मार्गों में अस्थिरता बढ़ी है। भारत जो दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयातकों में शामिल है, ऊंची तेल कीमतों और आपूर्ति संकट से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और गैर जरूरी आयात को कम करने की कोशिश कर रही है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद से बचने की अपील की है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना विदेशों से आयात करता है, लेकिन हाल के महीनों में शेयर बाजार से कमजोर रिटर्न और सोने की बढ़ती कीमतों के बीच निवेश के तौर पर सोने की मांग तेजी से बढ़ी है। उद्योग जगत का मानना है कि इस फैसले से सोने और चांदी की मांग में गिरावट आ सकती है और लोग हल्के वजन के गहनों की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि कारोबारियों ने चेतावनी भी दी है कि ऊंचे आयात शुल्क के कारण सोने की तस्करी फिर बढ़ सकती है। सरकार का कहना है कि देश के विदेशी मुद्रा को कच्चे तेल, खाद्य, रक्षा, औद्योगिक कच्चे माल और महत्वपूर्ण टेक्निक जैसे आवश्यक आयातों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
3: जानिए मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश होगी। ऊंचाइयों पर दिन के दौरान भी बारिश होती रहेगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 18 से 20, अधिकतम 24 से 26, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 28 से 30। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। महात्मा गांधी रोड पिछे गाफले में अट्ठासी साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांति भोलू पैदा श्रीनाम रामदेव और जो बेबे के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है और थी। कल दिन के 2:30 बजे उनके बेटे विक्की भोलू के मकान महात्मा गांधी रोड पर चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कपमालो हो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:30 PM बुआशेरी रोड मोका में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद ओकुल जो ज्ञानदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान बुआशेरी रोड मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM प्रोविडेंस रोड पोस्ट डे फ्लैक में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री धुरंद्रनाथ जीवन जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके बेटे अनिकेत जीवन के मकान प्रोविडेंस रोड पोस्ट डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीमोंग पोस्ट डे फ्लैक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM ऋषि दयानंद रोड थ्वाबुचिक में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयवंती ओबिलक पैदाशनामो केस और जो माला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति देवनारायण मोहन ओबिलक के मकान ऋषि दयानंद रोड थ्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM कालीमाई रोड बौलो में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की कुमारी भूमावती गोहवादू जो दमन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और पहले टेंपल रोड बेलव्यू मोगैल रहा करती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भतीजे दिनेश शंकर गोहवादू के मकान कालीमाई रोड बौलो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितरों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM सुल्फेरिनो नंबर दो वाकवा में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनमंती फोगू पैदाशनाम भंतवा और जो धनमंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके दामाद उमेश दसोया के मकान सुल्फेरिनो नंबर दो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालांस सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM Avenue Azalé, Moselman Saint-Jean-Quatre-Bornes में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्ण सुबनोत जो इंदौर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान एवेन्यू अजाले

मोसिल मोसेंजों कथरों बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11:30 AM। रॉ रोड लिस्कालिये में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री परमानंद उच्चाना जो रामोतीह के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे संजीव उच्चाना के मकान रारोड लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लासोक जीन लिस्कालिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। लातापी रोड भेजे वे अजय में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती लोटन पेदाशी नाम जगरूप और जो तारा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान लातापी रोड भेजे वे अजय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। कौलाबू तेरूज में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती नोहर पैदाशी नाम रघुनाथ और जो मोहब्बी क्वाफ़ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे धर्मसदेव नोहर के मकान कौलाबू तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों तेरूज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। रॉ रोड पोस्ट फ्लैक में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री नवीन्द्र सोनाराम जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:15 उनके मकान रॉ रोड पुस्तफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीमोंग पुस्तफ्लाक की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11:15 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

सीबी की तरफ से विज्ञप्तियां। सीबी रोशब्रून के रहने वालों को रोशब्रून एवेन्यू एस का छेदी और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 14 मई को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही कोहमोदल के रहने वालों को कोहमोदल चैपमैन व्यू एवेन्यू ब्लैक मली एवेन्यू एंजल फिश एवेन्यू ब्लड फ्लैश एवेन्यू जिनिया एवेन्यू बिस्कुस को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 14 मई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सीबी जुबॉय के रहने वालों को कप कॉम्बुलेल और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 14 मई को सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सीबी रिस्कली के रहने वालों को SSR लेन एडवांसिस लेन और खुद रॉयल एस्कालिये के एक भाग को सूचित किया जाता है कि 14 मई को गुरुवार सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती

लाई जाएगी। और आखिरी पायुत के रहने वालों को पायुत गागुलेन के एक भाग को, रुई ला बोंते के एक भाग को, लोटस लेन, इबिस्कुस लेन 3 के आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 14 मई को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी अपनी सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: 听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。
1: 喂，我是曹格啦，曹格啦。

0: चलिए प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: सभी श्रोतागण का प्यार भरा नमन तथा भक्तिमय कार्यक्रम यानी भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम अभी रेडियो मॉरिशस की लहरों द्वारा प्रसारित हो रहा है। भक्तगण, भगवान कहते हैं कि यदि

भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर से भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसमें प्रश्न उठता है कि वैराग्य की तलवार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे।

भक्तजन मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वह वहां से

प्रियजन, कुछ ध्यान देने वाली बातें इस प्रकार हैं कि काजल से अधिक काला कलंक है, आकाश से ऊंचा पिता है, पृथ्वी से भारी माता है, पवन से भी अधिक तीव्र गति मन की होती है, संख्या में तिनकों से अधिक चिंता होती है, जगत को अज्ञान ने ढक रखा है, वह व्यक्ति सुखी है जो ऋणी ना हो, तथा धर्म ना करना आलस्य है, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है।

भक्तगण, हिंदू धर्म में शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए सीता राम कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, भवानी शंकर कहते हैं। इन सभी युग्म नामों में महिलाओं का नाम पहले लिया गया है क्योंकि स्त्री शक्ति का प्रतीक है और उनके नाम पहले लेने से पुण्य अधिक मिलता है। इसलिए पहले माँ को प्रणाम करके फिर पिता को प्रणाम किया जाता है। ये वेद की भी परंपरा है। अतः वेद में लिखा गया है मातृदेवो भवः, उसके पश्चात है पितृदेवो भवः और बाद में है आचार्य देवो भवः।

श्रोताओं, कई श्लोकों अथवा धार्मिक बातों में हम स्थित प्रज्ञ शब्द सुनते हैं, किंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि जो दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और ना ही जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। तो इन्हीं विचारों के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

वो प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए वो कभी नहीं आएंगे, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़रत फरमाए, आमीन। सही अल-बुखारी की रवायत है, नबी आखिरी उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाने इलाही है, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से मौत को पसंद नहीं करता और मुझको भी उसे तकलीफ़ देना बुरा लगता है। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ। तकनीकी मदद के लिए रामा साहब का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: संग चलो घड़ी मिला लाई बखत रात के ठीक 9 बजल बा तू सुनवर रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 95.

0: 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.
4: भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
5: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
6: सब संगत लोग प्रताप सिंह से तालुक से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। ये तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रात की 9:03 और अभी से लेकर रात के 11 बजे तो हर पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। थोड़ा मन करता है कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमैया काज जहो देवी जहो विद साय और चला शुरू कर लेना चाहिए भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के को बहुत ही जबरदस्त गीत के साथ नंदकेश्वर शंकर के गावल अजब गजब के लोग भाई दुनिया में।

0: आज दुनिया में अजब गजब के लोग बात दुख में कोई साथ नहीं देवेला, सुख के साथ ही सबके बड़े दुख में जो साथ देवेला वही सच्चा संगत्या कहलावेला। और बेशक ये प्रोग्राम मनोरंजन भी है और शिक्षाप्रद भी और ढेर मना चीज तरह से बांटते जैसे भी। और अब बात करें सर सिगरेट पर, इतना हमेशा से जाना सर कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीबा तो शरीर के हानि पहुँचेला, कैंसर सकेला हो जाए सिगरेट पीला से, दिल की बीमारी होला, सांस की दिक्कत होला, एडिक्शन हो जाला सिगरेट से, दांत और स्किन पर असर पड़ेला। और सिगरेट पीबा तो शरीर स्टामिना कम होला और जो सिगरेट है ये सकेला मर्द के नपुंसक भी बना दे। इतना गहरा असर बा एक में सिगरेट में कुछ चीज की बोले सर निकोटीन तो बहुत ही खतरनाक पदार्थ है और जान के अनजान नहीं बनिया हमने की काम तो लोग के बोले कि अभी तो लोग पर निर्भर है। इस सिगरेट जो ना बहुत खराब चीज है। अगला गीत भोजपुरी हमर माँ है, खूबसूरत गीत तो चलावती इस राजकुमार चिंतामणि की आवाज़ में, गीत चली संजय हरिचंद के उसके पत्नी संध्या विधि हविश का सब हरिचंद परिवार के लिए पिताओं से गीत चलावती से रतन निहाल के नाम, रहरन गांव भी पत्नी करुणा पापा विजय और सब निहाल परिवार के नाम। और हे गीत संगीता मीरन के नाम चलावती से है गीत संगीता मीरन की ओर से रीता सीतालू के नाम।
1: भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हम

सगत्या लोग इतना सब को जाना कि भोजन हमने के शरीर खातिर बहुत महत्वपूर्ण है, पर रात के भोजन की बात करब सर, रात के भोजन चेला हल्का रह के पौष्टिक और आसानी से पचाने वाला भोजन, बहुत ज़्यादा तेल मसाला हैवी खाना नहीं, चेला एगो हल्का फुल्का डिनर जैसे कि दाल रोटी सब्जी सूप या खिचड़ी या और कुछ पकड़े हुआ रात के खाए खातिर, तो अगर में ज़्यादा तेल या जेपी से सब नहीं दे दिया कर तोहर चेहरे को बैलेंस डाइट दीना खाए के जो में प्रोटीन विटामिन और फाइबर के संतुलन चेना रहेगी, और सुते से पहले 2-3 घंटा पहले भोजन कर लिया, रात के भारी भरकम भोजन नहीं कर लिया, जैसे भात नहीं खाए के या रोटी नान सब नहीं खाए के, लाइट मान ल थसुन सब्जी भाजी बने ला भाजी बुनने हुआ एक पिथी बुट गोश्त बा थरासुन लासुप और एक बुल सलाद काफ़ी बा। अब जब कहे कि रात के वजह से हल्का फुल्का भोजन करके कहे कि रात की जब हमने के शरीर सुतेला तो कालोगी नहीं जरावेला, वह खातिर वजह से रात के चेला हल्का फुल्का भोजन करके ऊपर से अलावा एक वो है कि हमने की डाइजेशन अच्छा तरह से होला और रात के सकबा अच्छी तरह से सुते तूफे नहीं हुई बा, और जब भोजन कर ले तो तेजी जाके नहीं सुतिया एक घंटा या एक घंटा आधा लेता सुन लामाश करिया, फिर एक भोजन करला के बाद एक घंटा लामा उसके बाद तब जाइया सुते खाइबा के जब पच जाए तब। और ऐसे में चलाओ सा अगला गीत, और है गीत है अनिता जी के नाम अपन फ्ली कॉम्प्लेक्स से, और है गीत चली रोशन, है गीत चली माधुरी खातिर और रोशन भाई खातिर मीरा खातिर भी है गीत चली, तो गीत है किशोर खिमिया के गावल है गीत चलावती संजय बिहारी की ओर से सब परिवार के नाम।

0: मांग के सिंदूर बड़े शोभिल। और जब सिंदूर की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति में मांग के सिंदूर के विवाह के को महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाला। वैवाहित महिला लोग अपन मांग में सिंदूर डालेला अपन सुहाग के लंबी आयु के लिए। और सिंदूर के महत्व है विवाह के एगो प्रतीक है। ये बतावेला कि वो महिला सिरी बातें नहीं है, वो शादीशुदा है। प्रेम और समर्पण के प्रतीक है सिंदूर। सांस्कृतिक परंपरा हिंदी रीति रिवाज और परंपरा में सिंदूर के विशेष स्थान बा। और शुभता का चिन्ह के सौभाग्य और मंगल के प्रतीक मानल जला। जो महिला अपन मांग में भर मांग सिंदूर डालेला और श्रृंगार के को हिस्सा है। सिंदूर महिला के पारंपरिक श्रृंगार के सुंदर बनावेला। और एगो शादीशुदा महिला जब अपन मांग में सिंदूर डालेला तो वो अपन मन में बोलेला कि हम जैसे सिंदूर डालते हैं हमारे मांग में हमर घरवाला की आयु भी उतना ही लंबा हुई। ये खातिर सिंदूर के बहुत ही महत्व है हिंदू धर्म संस्कृति और परंपरा में। अब जनला ना रात के 9:25 और अगला गीत कंट्रोलर बाबू मुकेश रामेश्वर के गावल गीत है। गीत चार दिस बनमाली सासी बनमाली जी के नाम कर पत्नी बेटा बेटी दामाद और सब बनमाली परिवार के नाम सासी बनमाली के नाम आई प्यारा संगीत कंट्रोलर बाबू।
1: ठहर जा मौसी ठहर जा, उतरे द मौसी उतरे द, जगह नहीं बा मौसी विश्वा में जगह नहीं बा।
2: ले ल बाबू ले ल, तू घंटा से खड़ा है, खरे खरे ले ल।

रात के 9:34 और तू सुना तो एमबीसी रेडियो रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस भोजपुरी तर का प्रोग्राम और बोली ला सकी रोज की काम तो रहेगा पर काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी चेहरा कह के लिखो जो है को मशीन नहीं है तो चेहरा के थोड़ा सा आराम भी देख के दिन भर काम करवा रात के आराम करिए अच्छा अच्छा गीत सुनिए अच्छा अच्छा प्रोग्राम सुनिए एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर और अगला गीत सास बहू तुलसी सास बहू की कहानी सुनाओ तो अभिमन्यु हरिपोल माहन रहेगी तो चंपा जी की नाम चंपा रामगतिया देवी राम गतिया उर्कुल की घरोला लेकर सब रामगतिया परिवार के नाम चले एक साथ सुने सास बहू तुलसी की कहानी

मसाला हल्दी जीरा ये सब की जब बात कही रहा था तो हमने की याद आवा था कि जब फ्रेंच लोग आ रहा हमने की टापू में तो हमने की टापू के नाम दलन सा इल दे फ्रांस कोलोनाइजेशन करा था लन सा तो पियर पुआव आ रहा ला फ्रांसे तो ऊ जिपुआ बने रहा तो जितना भी जेपीस में हमने की देश में इस्तेमाल कही रहा था कोलोनाइजेशन के पीरियड में आ रहा और ये सबसे आज हमने की देश में इतना जेपीस बा रात के 9:50 तू सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और प्रोग्राम भोजपुरी का अगला गीत हाथों में हाथ किशोर की मियाँ की गावल गीत और है गीत सुदेवी जी के नाम चलावती से बहुत प्यार से सुदेवी हवन वाकवा से गीत चलाता त्रियोरे की दीदी ललिता कुशल और परिवार आत्मा राम चाचा खातिर सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के कृष्णी कृषय कृषिका लक्षिका और सब राम रतन परिवार के नाम और है गीत चली संगीता की ओर से दादी

0: भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
2: 94.6 MHz रेडियो मनोरंजन आज 19 किलोहर्ट्ज रेडियो मॉरिशस इन दोनों चैनल पर चलता प्रोग्राम भोजपुरी तड़का अजय प्रताप सिंह सीतालू के साथ रात के 11 बजे ले आज है बुधवार की रात 13 मई 2026। हाँ, ठंडा के मौसम में बुझाता प्रवेश कर ले नहीं सका है कि ऑफिशियली कैंस में यानी कि और दो दिन में ऑफिशियली विंटर में हिल जाप सफर बुझाता ठंडा के मौसम है। गर्भ कह के दिन के पानी पानी कर ले रहे और फजीर के बगैर 6 बजे इतना अंधार जैसे बुझा रात बा सूरज उगेला 6:30 के बाद और शाम के 5:30 ही अंधेरा छा जा रहा चारों ओर। एक मतलब है सर्दी के मौसम चलाल बा अपन त्रिको जैकेट टुकेट पोलो ये सब किन लियर जो जगह ठंडा करेला तो वहाँ चाहे जरा प्रिकॉशन ले कि जैसे कि फॉरेस्ट साइड बा क्योपी बा मोका लाफलोगा गाँव बा ये सब जगह में बड़ी ठंडा गिरी रहा हूँ कि नहीं। तो रात के 10:05 होता है और अगला गीत नानी लोकनी जाय की बा है गीत चला हुआ था इस खासम खास सरिता जी के नाम सरिता जी हवन कैटोबोन से और फिर मैनेज कर ले हवन कर सब परिवार खातिर सरिता गीत तोहर खातिर तोहर सब परिवार के नाम है गीत चलाती से सब अध्यापक और स्टूडेंट्स लोग के नाम जो रात के वक्त हमने सुना था और जिधर कोई नाइट शिफ्ट करता है जैसे कि मेट्रो सर्विसेज में पुलिस पोस्ट में और कॉल सेंटर में और जहाँ कहीं भी रात के काम होता है जैसे क्लिनिक बा हॉस्पिटल बा थे मना जगह में विराल जिन जिन में काम होता है बेकरी में तो जितना कोई हम किसी होता काम करते हुआ सर काम करवा लोग बहुत कुछ बोलाते हैं मेहनत लगन से काम करते रहे यार अभी थे कोई नाइट शिफ्ट करता है कल फजीले काम करें सर 6 बजे रही तो सबको खतरे लग लगे नानी लोकनी जाए कि बाब नानी लोकनी जाए कि नहीं चलो एक साथ सुने

हर देश अपन खाना से जाना जाला, पाकिस्तान जाना जाला कर बिरयानी से, और इटली जाना जाला कर पिज्जा से, और मॉरिशस जाना जाला कर चिपूरी सेट कागी से। हम यहाँ चिपूरी बनेला, फागाता बनेला ना, और रोटी जब बनेला, रोटी की बात बताती सर, जैसे ओची बनेला सर, तो आटा पानी और तेल नमक से बनेला, और रोची जैसे बने सर, या पराठा जैसे बने सर, वो मसाला के तकारी से खाएगी बड़ी मजा बा, हाँ कि नहीं। तो आगे हमने के नानी दादी लोग के ज़माना में ये सब वही सब नहीं रहल, चूल्हा रहल, तो एगो परिवार में 10 को लेकर रहल, ओकर में माँ बाप साथ में 12 को जना। अब जब रोटी पकी या पराठा पकी तो 4 को नहीं पकी, थौत काहों 30-40 पराठा पकी रोज के। तो आज के महिला के बल्ब से थौत काहों पराठा पकाई गई तो पकाइन सर बाप बोले तो बेलना से मारे लगे कि प्रणी प्रताप जी कहाँ समय मिलेगा पकाए के हो, ऐ अभी के महिला लोग काम करेला। पर अगर थोड़ा मन करे खाए के पुरुष लोग तो अपन हाथ से पका लिया भैया, खाए के जेब भौजी से बोले पका दे रोटी तो बोल रही अंकेले।

ने भाई यहाँ पाची क्यों गई हो कि नहीं तो छा जाने की तरह सुन दे बुझे कि ना का कर बब कबो भौजियो पकड़ते पकड़ते थक जाला है तो तो हमने के भाई लोग जी इनके सुना था तो सीखे थोड़ा सुन पकाए के होची पकाता ये सब यूट्यूब में बतावा ले आंसर है कैसे पकाए।

कभी कभी सकबर कुछ हफके दे दी फौजी के, फौजी काम से आते गर्मा गर्म पकाता तकारी पका दे बा तकरिया पकाता में डाल के दे दिया एक और एक गर्मा गर्म चाय की प्याली तो भौजी खुशी हो जाए। तभी राजेश को गावतोन अखी नानी रोटियाँ पका देगी, रोटियाँ पका दे तो जितना कोई खुश है होची फाता खाए के गीत तो लोग नाम खासम खास विनय भाई के नाम विनय अवंत योले से और है गीत चलावते इस आफेज के नाम आफेज अवंत सैम्पिया से और है गीत चलावते इस विमला के नाम विमला वन थाबुजिक से निशान सिंह चुबा से निशान सिंह चुबा हूँ थाबुजिक से कर पत्नी बेटी पतो बेटा निशान सिंह चुबा थाबुजिक से कर बेटी दामाद बेटा पत्नी और सब चुबा परिवार के नाम चाचा आत्माराम है गीत थोड़ो खातिर अगे नानी रोटी व पका दा।

अब चली लुगारू के गीत, लुगारू घर के पाछे लुगारू मचान पर। तो लुगारू की कहानी शुरू होल कैसे, चला थोड़ा सुनाओ जा। तो एगो तूफान आ रहा को नाम रहा होलांडा, ई मॉरिशस के जबरदस्त तूफान रहा। या रहा फरवरी 1994 में कातोज में तूफान आ रहा, और है तूफान जब आ रहा तो काफ़ी तबाही मचल रहा। 10 फरवरी 1994 में मॉरिशस में प्रहार करे रहा। इस तूफान के गुजरला से हवा के रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से रहा। बहुत घर टूट गया रहा और बिजली टेलीफोन सेवा सब ठप पर रहा। गन्ने के खेत तो सब नुकसान भर, कृषि के भी खूब नुकसान पहुँचल रहा। पोर्टिस में तेज हवा झोंकों के साथ बह रहा। तो है होलांडा के तूफान के बाद मॉरिशस में एक महीनाली ब्लैकआउट रहा, यानी कि बिजली नहीं रहा। तो एगो गाँव रहा लाल माटी, तब सुना था कि आई जब ब्लैकआउट रहा तो वहाँ लुगारू होता। लुगारू कौन चीज सुना रहा है का जिन कहानी सच है कि वो आधा इंसान और आधा जानवर रह, और वो सकेला कोनो भी फोम लेके गर्मी घर में हिल जाए और आदमी लोग के डरावे। तो उन दिनों सब कोई अपन द्वारी में प्यन दैन प्लौत तलन से लुगारू घर के पाछे तभी ही गीतवा निकल रहा है लुगारू। राधन राम साहा गीतवा के लिए वन भोजपुरी बाजा बाजे ग्रुप बॉयस गीतवा निकल लुगारू। तो चल आज की रात गीतवा सुनब जा लुगारू, और ये गीत चलावती सर खासम खास रंभाजी के नाम, आप हम लास्वी से अजय और पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से, और दुगो बेटा बाल गोपाल खातिर सुदेश जसवा है गीत और खातिर, तुम माता जी राजकुमारी जिमी दुखिया गीत सब दुखिया परिवार के नाम, और राज मन्ना है गीत और खातिर लुगारू।

बुलाल जला की एगो छोकरी अगर श्रृंगार करी सज धज के आई तो उसके एक्ट्रेस के मार दी। आजकल तो हमनी के छोकरी लोग पढ़ा लिखल बा और खुशी रहन से शादी उदी में जाए के खूब सज धज के एक्ट्रेस सीखा। करीना कपूर लिखा, बियोलन से बिपाशा बासु लिखा, तो जरूर हमने के जो खूबसूरत लड़की लोग बा और जोड़ी से आबियो के जालन से तो सुंदर परी लिखा लौकेल से जब शादी में तक मौके करिया है। हमने के जैसे छोकरी लोग हसीना लोग बा खूब जोड़ी से जैसे एक्ट्रेस तो काबिये होलन से हमने के टी वी सीरियल जैसे अनुपमा बा सास भी कभी बहू थी या एक रिश्ता तो से जस्ती जोली छोकरी हमने के देश में बारिश जोली से आबिये होलन से हो कि नहीं। ताई इसने छोकरियों के देख देख के गिरीश रूपचंद गीत लिख रख बा सुंदर परी तो सब सुंदर परी सब हमने की बटरफ्लाई लड्डू लोग के नाम है गीत है चलावती से बहुत बहुत प्यार के साथ।

सुंदर परी और गीत सुनन चितंकी के नाम ओकर सब परिवार खातिर बहुत प्यार के साथ भाई धनी वन कुलिनी से गीत हो खातिर और हे गीत चलावती से सब सुंदर परी के नाम जन की सुनत जन खुशी से खूब आबियो के चमक दमक के जारन से काम करे या शादी में या निवेश में जो छोकरी खूब खुशी आबियो के है गीत ओलो खातिर सुंदर परी चले एक साथ सुने।

0: भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमर कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: स्ट्रेस से भरल संसार में स्ट्रेस से दूर रहे खातिर हमने कि चाह रोज के हंसे के जोर जोर से हंसे के एक अपनी बढ़िया से लॉफ्टर थेरेपी तो एगो ऐसा गीत चलाओ आप सब। एक गीतवा सुनबर तो हंसते रह जीबा। बेटवा उजर कैसे हो गल नीरज गुप मधु कहानी सुनावा था। बपुआ सांवर बा मयुआ सांवर बा तो लैकवा कैसे उजर निकल गल ये तो हमने जानते कैसे लैकवा आपसे निकल गल। चलो एक साथ सुने और गीतवा सुनाब सर हंसब सर जोर जोर से ताकि हमने के सब स्ट्रेस दूर हो जाए। और है गीत चलाते सर स्वीति और स्वीनी खातिर जो बहुत प्यार से हमने सुना था। चलो एक साथ सुने नीरज गुप मधु की कहानी बेटवा उजर कैसे निकल गल हो। आहा।

Oh,

Oh,

आशा करते हैं तू भी खूब हंस रहा हमने किसी के गीतवा सुन के। बाप सांवर माँ सांवर लेकर कैसे उजर निकल गए भैया।

रात के पौने 11 बजे तक अड़तीस जो भोजपुरी तरकार प्रोग्राम हमने के संगी संगी। और जब हमने संगीत की बात कर रहा था नृत्य भी आवेला नाच जो नाच है नृत्य हमने के जीवन के बहुत ही हमने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। ये केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि कला है संस्कृति और भावना के व्यक्त करेला नाच। नृत्य करने नाच करला से शरीर स्वस्थ चुस्त रहेला और ईगो व्यायाम भी है। देख के जुम्बा बोलेला नृत्य के और करीला सभी जुम्बा ई शरीर में ऊर्जा लावेला। और जब हमने डांस करीला से नृत्य कर नाचीला से तब मन और मूड एकदम सेट रहेला। तनाव और चिंता से बचे खातिर चाहेला कोनो न कोनो प्रकार के नृत्य करेगी। भारतीय संस्कृति में नृत्य के विशेष स्थान बा। भरतनाट्यम कथक ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य हमारे हम की परंपरा के है। आजकल तो पॉप डांस बा टेक्नो डांस बा डिस्को डांस भी बा। तो रमन करी कोनो भी डांस सीखेगी तो सकबा यूट्यूब पर सीखे। और नृत्य है जो नाच जो डांस है वो हमने की आत्मविश्वास बढ़ावेला। मंच पर प्रस्तुत जब जाला से प्रस्तुति करे सब दर्द भय के निकाल के तो हमने मन खोल के दिल खोल के नाचीला सा। जब थोड़ा भी कोनो तनाव रही तनाव भगाए खातिर अपन रेडियो दलिया जोर से और हमने के संगे नचिया सब स्ट्रेस दूर भाग जाए। नच दे जल्द होवेला कुनाल हीरीलाल के साथ।

रात की 10:50 हुआ था और 10 मिनट में ही प्रोग्राम समाप्त हो जाए भोजपुरी टट का। ये प्रोग्राम चले लिंदी से लेकर दिमाग ले MBC रेडियो, रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 से 11 बजे ले तो लोग के मनोरंजन खातिर खा के जाने से उनकी देश में ढेर कोई भोजपुरी भाषा बोलेगा, लिखेलन से ही भाषा में गीत लिखाला, कहानी, उपन्यास, नाटक भी और यानी हम की जो भोजपुरी भाषा ये हमने के धरोहर है, हमने के धर्म संस्कृति के एगो अंग है। और जब भोजपुरी गीत चले तो गमठ ही गमठ होला कि याद भा आगे के ज़माना में जब सामजी से शादी हुई तो सुख के गीत गवाए तो सामजी के हल्दी और फिर गमट के रात सब कोई अपन अमोनियम ताबला लेके आइन से और रात के खूब गमट हो सामजी की रात के 6:30 से लेके रात के 12 बजे ले गमट ही गमट। और आज के गमट को आज भी गमट होला शादी उदी में जेब तो सामजी के रात के दिमास की सुख के गीत गवाए कि गमट सामजी के हल्दी के बाद की गमट और दिमाग के जब दूरी चला तब गमट और लेंदी के चौथारी हो गए तब गमट। हम तो रोज गमट करी रहे भैया, चाहे ना गमट करे कि गमट कर बता तो और मूड अच्छा रही और तू प्रसन्नचित रह हमेशा खुश रह। ललिता गजाधर गीत गावत हवन आज के गमट और है गीत चाहती से सब संगतियालों के नाम जो खुशी रहा हमरे रेखा गमट करे कि और आप हवन वेद साहब फिर विशाल और है गीत शालिनी की ओर से कर घर वाला विशाल और दुगो बेटी और सब हीरो परिवार के लिए जो इन वाकवा रहे सुलमा दुखित हवन मीबक से और बिट्टी हन्ना नबीहा और सब दुखित परिवार के लिए वीना कुपुसामी है गीत तोहरों का तीत और घरोला तोहर बेटा पतो बेटी और सब कुपुसामी परिवार के नाम विश्वानी बाबूलाल हवन लाखोजा से गीत तोहर का तीत तोहर घरोला तोहर लेकालो का तीत सब बाबूलाल परिवार के नाम। और हम की आवाज़ दुनिया में जहाँ तक पहुँचता कोनो कोनो देश में फजीरो गलबा गुड मॉर्निंग कहूँ कहूँ पर शाम के वक्त बता गुड इवनिंग और यहाँ पर ही रात बात गुड नाइट बोलते ही सर। तो चल एक साथ सुने गीत आज की गमट कैसे गमट हुआ था एक साथ कमरवा डोला आपसे गमट में

सुकन लीलो माथुर राम तोह बिजवंती के गावल गमत करे जायला आई गीता के संगे भोजपुरी तरका प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से हबीलियम के साथ दिला जा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। तो लोग SMS तो लोग के फोन करते बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रात के 11 बजे सुन बजा गिनीशा से प्रोग्राम सुने पल और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने की। तो लोग मुलाकात हुई कल बिफे के सांझ के 4 से 5 बजे रेडियो मनोरंजन पर दिल से मिले दिल प्रोग्राम में। तक कल तक हमने की इजाजत दे और जय प्रताप सिंह सितारों की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि। लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: गिनिशा फिर से आ गई है आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। सो गुड इवनिंग जी, नमस्कार और हमारा प्रणाम। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, उम्मीद करते हैं आप ठीक हो। वैसे आज फिर सजेगी एक सुहानी म्यूजिकल महफिल, जहां पुराने बॉलीवुड गाने देंगे दिल को सुकून और चेहरे को मुस्कान। सुनहरे पल, एक शो जो सिर्फ सुना नहीं करते, महसूस किया जाता है। हियर वी गो, ये खास कर आपके नाम।

गाने के पीछे होती है एक याद, मानो या ना मानो, हर गाने के पीछे होती है एक याद, एक एहसास, एक कहानी। और उन्हीं खूबसूरत कहानियों को फिर से जीने के लिए सुनिए सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

पुराने बॉलीवुड के गाने और वो दौर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना, पुराने बॉलीवुड गाने और वो दौर जब म्यूजिक सीधा दिल से निकल कर दिल तक पहुंचता था। तो चलिए फिर से जीते हैं वो सुनहरे लम्हे, सुनहरे पल के साथ सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, और उम्मीद करते हैं कि अगला गाना सीधे आपके दिल तक हम पहुंचाएंगे।

कैसा लगा ये खूबसूरत सा सफर जो हम आपके लिए लेकर आते हैं हमेशा रेडियो मॉरिशस पर रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, काम पे हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो अगला नगमा खासकर हमारी तरफ से आपके नाम। तो चलिए दोस्तों, ये अगला गाना गिनिशा की तरफ से स्पेशली हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे एंड टू ऑल दोज हु ट्रूली मैडली डीपली इन लव। अरे यादों के साथ ही सही, लेकिन प्यार तो है ना जी। तो चलिए ये अगला नगमा खासकर आप एंजॉय कीजिए और वो भी दिल से।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम टू गिव मी इजाजत जाने के लिए। तभी तो हम फिर से वापस आएंगे। ऑफ कोर्स मेरी जान, जाएंगे तब भी तो आएंगे, फिर भी हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आप बस यूं ही मुस्कुराते रहे एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग लव, और बस सुनहरे पल में हमारा साथ यूं ही देते रहे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो